বামতে তুমি মা শক্তি, হৃদয়ে তুমি মা ভক্তি, তোমারে

FM बैंड 101.8 MHz पर आपने ट्यून किया है आकाशवाणी जैसलमेर का गोल्डन सिटी चैनल। आज बुधवार है, शक संवत 1948 के वैशाख माह की 30वीं तिथि, तदनुसार 20 मई सन 2026। इस समय दिन के 11:58 होने को है। अब हमारी आज की ये प्रसारण सभा आरंभ होती है।

हम बोल रहे हैं रेडियो गोल्डन सिटी से। हमारे प्रसारण एफएम बैंड 101.8 मेगाहर्ट्ज़ पर उपलब्ध हैं। इस समय दिन के 12 बजे हैं। आइए सुनते हैं कार्यक्रम फिल्म संगीत। श्रोताओं, आइए सुनते हैं फिल्म संगीत कार्यक्रम का पहला गीत लता मंगेशकर की आवाज में। फिल्म का नाम है दो रास्ते।

तुझसे दुहाई।

मंजिलों से बढ़ा जा रहा हूँ। कौन है जो सपनों में आया, कौन है जो दिल में समाया, जो झुक गया आसमां भी इश्क मेरा रंग लाया।

0: मुड़मुड़के न देख मुड़मुड़के मुड़मुड़के न देख मुड़मुड़के मुड़मुड़के न देख मुड़मुड़के मुड़मुड़के न देख मुड़मुड़के जिंदगानी के सफर में तू अकेला ही नहीं है, हम भी तेरे हम सफर है।
1: जिंदगानी के सफर में तू अकेला ही नहीं है, हम भी तेरे हम सफर है। मुड़मुड़के न देख मुड़मुड़के।

0: नैनों से नैना जो मिला के देखे, मौसम के साथ मुस्कुरा के देखे, दुनिया उसी की है जो आगे देखे।
1: नैनों से नैना जो मिला के देखे, मौसम के साथ

0: मुड़मुड़के ना देख मुड़मुड़के मुड़मुड़के ना देख मुड़मुड़के मुड़मुड़के ना देख मुड़मुड़के मुड़मुड़के ना देख मुड़मुड़के जिंदगानी के सफर में तू अकेला ही नहीं है, हम भी तेरे हम सफर है।
1: जिंदगानी के सफर में तू अकेला ही नहीं है, हम भी तेरे हम सफर में।

श्रोताओं, इन्हीं गीतों के साथ हमारा फिल्म संगीत का ये कार्यक्रम अब यहीं समाप्त होता है। यह आकाशवाणी जैसलमेर का गोल्डन सिटी चैनल है। इस समय दोपहर के 12:30 हुए हैं। आइए सुनते हैं NCERT द्वारा प्रायोजित कार्यक्रम उमंग।

0: la la la la la la la la la la la la la la la la la la
1: CIET प्रस्तुत करता है
2: उमंग उमंग उमंग उमंग।
3: सभी श्रोताओं को विमलेश का नमस्कार। उमंग कार्यक्रम में आप सबका हार्दिक स्वागत है
1: और अजीत का भी नमस्कार और जोहार। अब प्रस्तुत है हमेशा की तरह एक सुंदर विचार जो हमें भेजा है कस्बा बराड़ा जिला अंबाला हरियाणा से रवि कुमार राहुल, रंजीत कौर, जयप्रकाश राहुल, प्रियंका, नूर, नमन, सिमरत, गुरकिरत राहुल और गुरशब्द सिंह जी ने। लिखते हैं,
3: जिंदगी जीने के लिए अनेक तरीके हो सकते हैं, मगर सर्वश्रेष्ठ तरीका वही है जिससे स्वयं को सकारात्मक और रचनात्मक संतुष्टि मिले और दूसरे को उससे कोई नई दिशा।
1: बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका इतने सुंदर विचार के लिए। जी हाँ श्रोताओं, जो काम करना हमें अच्छा लगे वो हमें जरूर करना चाहिए। तो श्रोताओं आइए अब सुनते हैं उमंग कार्यक्रम में संदेश भेजने वाले श्रोताओं के नाम और उनके संदेश।
3: ग्राम टेका बजरंग चौक वार्ड नंबर 2 छत्तीसगढ़ से लकी ऋषि नवरंग
1: और खुर्जा उत्तर प्रदेश से तिलक राज अरोड़ा, प्रकाश अरोड़ा, चंदन अरोड़ा और अंकुश अरोड़ा जी ने लिखा है। सर अजीत जी और मैडम विमलेश जी सप्रेम नमस्ते जी।
3: नमस्ते जी।
1: अगला संदेश हमें मिला है स्वार रोड मुरसेना से गुलफशाह इदरीसी, जीनत अमान इदरीसी, नाजिया शाजिया, भाई मोहम्मद नादिर, मोहम्मद साजिद, छोटू नाहिद और पापा हबीब अहमद इदरीसी जी।
3: प्रोग्राम पेश करने वालों को हमारी ओर से आदर और सम्मान। सर और मैम, हमें उमंग प्रोग्राम बहुत ही अच्छा लगता है। इस प्रोग्राम से हमें बहुत सारी नई नई जानकारियाँ मिलती हैं।
1: बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी श्रोताओं का संदेश भेजने के लिए। आपसे निवेदन है इसी तरह से संपर्क बनाए रखिए, संदेश भेजते रहिए और हाँ, मात्र सुविचार भेजकर और प्रश्नों के उत्तर भेजकर ही संतुष्ट न हो जाइए। हमारे कार्यक्रमों पर प्रतिक्रिया भी जरूर दीजिए। तो अब बारी है पिछले सप्ताह पूछे गए प्रश्नों के उत्तरों की। हमारा पहला प्रश्न था, दक्षिण भारत में भी बहुत से प्राचीन गुरुकुल हैं, उनमें से कुछ प्रसिद्ध गुरुकुलों के नाम बताइए।
3: इसका उत्तर है साथियों, श्रृंगेरी शारदा पीठम और कांची कामाकोटी पीठम मुख्य रूप से दक्षिण भारत के प्रसिद्ध गुरुकुल हैं।
1: और अब सुनिए हमारा दूसरा प्रश्न। हमारा दूसरा प्रश्न था, पृथ्वी के सबसे छोटे महासागर का नाम बताइए।
3: श्रोताओं, इसका सही उत्तर है पृथ्वी।

0: के सबसे छोटे महासागर का नाम है आर्कटिक महासागर। क्षेत्रफल की दृष्टि से ये सबसे छोटा महासागर है।
1: हमारा तीसरा प्रश्न था, समुद्र के पानी में नमक किन किन स्रोतों से आता है?
0: इसका उत्तर भी जान लेते हैं साथियों। समुद्र के पानी में नमक लाने का सबसे बड़ा स्रोत है नदियाँ, जो चट्टानों, मिट्टियों, पर्वतों से खनिज के घोल के साथ साथ नमक को भी ले आती हैं, जो खनिजों के साथ ही मिला होता है।
1: और अब हमारा अगला प्रश्न सुनिए, जो हमने पूछा था, समुद्रों को प्रदूषित होने से बचाने के लिए हम क्या क्या कर सकते हैं?
0: इसका उत्तर है श्रोताओं, समुद्रों को प्रदूषित होने से बचाने का सबसे पहला उपाय है नदियों को प्रदूषित होने से बचाना, क्योंकि अधिकांश नदियां समुद्रों में ही गिरती हैं और अपने साथ प्रदूषित कूड़ा कचरा ले आती हैं। दूसरा उपाय है, हम समुद्रों में कचरा, खासकर प्लास्टिक न फेंकें, इससे भी समुद्र प्रदूषित होता है।
1: और हमारा अंतिम प्रश्न था, समुद्र के सबसे गहरे स्थान का नाम बताइए और ये भी बताइए कि ये कहाँ पर है।
0: जी हाँ, इसका उत्तर भी जान लेते हैं साथियों। समुद्र के सबसे गहरे स्थान का नाम है चैलेंजर डीप, जो प्रशांत महासागर के मारियाना ट्रेंच में फिलीपींस के पास स्थित है।
1: तो श्रोता मित्रों, ये थे हमारे पिछले सप्ताह पूछे गए प्रश्नों के उत्तर। यदि आपने हमारी प्रश्नोत्तरी में भाग लिया तो आपका आभार,
0: और यदि नहीं लिया तो हम आपको प्रोत्साहित करेंगे कि आप न सिर्फ भाग लें लेकिन दूसरों को भी, विशेषकर विद्यार्थियों को भाग लेने के लिए प्रोत्साहित करें।
1: तो आइए अब सुनते हैं आज का प्रश्न। हमारा आज का प्रश्न है, आकार में समुद्र के सबसे बड़े जीव का नाम बताइए। प्रश्न एक बार फिर से सुन लीजिए,
0: आकार में समुद्र के सबसे बड़े जीव का नाम बताइए।
1: और भेज दीजिए अपना उत्तर 8800440559 पर, जो हमारा IBRS नंबर है। और साथ ही साथ आप हमारे ईमेल के पते पर भी अपना संदेश भेज सकते हैं। हमारे ईमेल का पता है audio@ciet.nic.in।
0: इंस्टा, फेसबुक, एक्स और लिंक्डइन पर भी आप CIET NCERT को फॉलो कर सकते हैं।
1: तो अब बारी है श्रोताओं आज के शैक्षिक कार्यक्रमों की। आइए सुनते हैं आज का पहला कार्यक्रम, जिसका शीर्षक है
0: माई बाइसाइकिल। ये कार्यक्रम कक्षा 2 की अंग्रेजी की पाठ्य पुस्तक की कविता का संगीत रूपांतर है। कार्यक्रम के द्वारा बच्चों को सड़क पर सावधानी से चलने की सलाह दी गई है, और जब वे सड़क पार करें तो पहले ध्यान से आसपास देखें।
2: हेलो चिल्ड्रन, हाउ आर यू ऑल?
3: वी आर फाइन सर।
2: आर योर पेरेंट्स, सिबलिंग्स एंड ग्रैंड पेरेंट्स ऑल वेल?
3: यस सर।
2: वेरी गुड। ओके किड्स, नाउ टेल मी, हैव यू सीन a bicycle?
3: Yes, sir. We have seen.
4: I have seen, sir.
5: I like bicycle, sir.
6: I love it.
2: That's very good. And children, bicycle can also be pronounced as bicycle. Okay, now tell me how it looks like.
4: It has two wheels.
6: My cycle is pink.
4: And mine is blue.
3: My cycle has a bell.
2: Now tell me, have you ever ridden a bicycle?
3: Yes, sir!
2: How does it feel to ride a bicycle? Feels great, isn't it?
3: Yes, sir!
2: So, let's listen to a short, lovely poem on bicycle today.
3: Train, train, train!
2: Do it again, please.
3: Train, train, train!
2: I have a red bicycle.
3: I have a red bicycle.
2: I pedal and I ride.
3: I pedal and ride.
2: Trin, trin, trin goes the bell.
3: Trin, trin, trin goes the bell.
2: Makes my friends move aside.
3: Makes my friends move aside.
2: The seat is blue in color.
3: The seat is blue in color.
2: The tires and pedals are black. Sometimes fast.
3: Sometimes slow.
2: But my bicycle is always on track. To keep my bicycle moving. All I need is some air. I put on my little helmet. And I go happily everywhere.
3: And I go happily everywhere.

0: Children, you have listened to the song just now. Did you like it?
1: Yes, sir. We liked it.
0: Very good. So remember, always, whenever we ride a bicycle, we have to be careful about our safety and also the safety of others.
2: अभी आपने सुना ये खूबसूरत कार्यक्रम My Bicycle. आइए अब सुनते हैं कार्यक्रम
3: सेकंड लेफ्टिनेंट अरुण खेत्रपाल.
4: साथियों, भारत भूमि ने एक से बढ़कर एक वीरों को जन्म दिया है जिन पर देश को नाज है. आइए आज याद करते हैं भारतीय सेना के एक ऐसे शहीद जांबाज की कुर्बानी जिसको अपनी अद्वितीय बहादुरी के कारण भारत का सर्वोच्च शौर्य पुरस्कार परमवीर चक्र मिला. भारत मां का ये सपूत था सेकंड लेफ्टिनेंट अरुण खेत्रपाल, जो जिया तो सिर्फ 20 साल पर भारत की जनता के दिलों में उसकी यादों का दिया जलता रहेगा सालों साल. अरुण का जन्म 14 अक्टूबर 1950 को पूना में हुआ था. वे एक ऐसे परिवार से थे जिसका एक लंबा सैन्य इतिहास रहा है. अरुण का बाल्यकाल फौजी माहौल में बीता. अरुण जब 8 साल के थे तो वो सैनिकों के साथ खेलते, उनसे युद्ध की कहानियां सुनते और उन्हीं के साथ लंगर में जाकर खाना खाते. उनका जवानों के प्रति प्यार और फौज के प्रति रुझान देखकर साफ साफ पता चलता था कि अरुण ने भी फौज में भर्ती होने का मन बना लिया है. अरुण की प्रारंभिक शिक्षा उन विभिन्न स्थानों पर हुई जहां उनके पिता तैनात थे. पर अरुण के जीवन में एक निर्णायक अवसर वो भी था जब उसने सन 1962 में प्रसिद्ध सेंट लॉरेंस स्कूल सनावर में दाखिला लिया. अरुण की शिक्षा के अंतिम 5 वर्ष वहीं बीते. सनावर में बिताए उन 5 सालों में जैसे अरुण का व्यक्तित्व निखर सा गया. अपने स्कूल के बैंड में वे क्लैरिनेट बजाया करते थे. अरुण ने इंडियन मिलिट्री एकेडमी देहरादून में दाखिला लिया जहां से उन्होंने 23 जून 1971 को अपना पाठ्यक्रम पूरा किया. जून 1971 में उन्हें पूना हॉर्स रेजिमेंट में नियुक्ति मिली. रेजिमेंट की परंपरा के अनुसार किसी भी युवा अधिकारी को सारे काम करने पड़ते थे जैसे ड्राइवर, गनर, रेडियो ऑपरेटर से लेकर टुकड़ी तक का नेतृत्व. अरुण को जो भी काम मिलता वो उसे पूरी लगन के साथ करते. जब उन्हें टैंक चलाने का काम मिला तो उन्होंने उसकी देखरेख, सफाई करने, मरम्मत करने जैसे सारे काम सीखे और किए.
5: मेरा रंग दे बसंती चोला मेरा.
6: साहब, आप क्यों परेशान होते हो? हम कर लेंगे सफाई टैंक की.
5: अरे नहीं नहीं नाथू सिंह, अगर मैं टैंक चलाता हूँ तो उसकी देखरेख की जिम्मेदारी भी मेरी ही है.
6: वो तो ठीक है साहब,
5: और अगर मैं इसकी देखरेख नहीं कर सकता तो इस पर बैठने का भी कोई हक मुझे नहीं है.
6: वो तो ठीक है साहब, लेकिन
5: देखो नाथू सिंह, हम सब सैनिक हैं और हमारी पूना हॉर्स रेजिमेंट की परंपरा के अनुसार एक सच्चा सैनिक वही है जो किसी भी काम को छोटा ना समझता और हर काम को पूरी निष्ठा, ईमानदारी और लगन से करता हो.
6: बात तो आपकी बिल्कुल ठीक है साहब, लेकिन
5: अरे लेकिन लेकिन कुछ नहीं, मुझे टैंक साफ करने दो.
4: अरुण सबके साथ बड़ी आसानी से घुल मिल जाते, चाहे वो अफसर हो या जवान। देर देर तक बैठकर दोस्तों के साथ गपशप करना उन्हें बेहद पसंद था, पर इसके साथ साथ वो कठिन से कठिन परिस्थितियों से जूझने को भी तैयार रहते। हारना और डर कर पीछे मुड़ना उन्होंने कभी नहीं सीखा, और इसी का परिचय दिया उन्होंने 1971 में हुए भारत पाकिस्तान युद्ध के समय।
7: माँ।
8: अरुण बेटा, तुम पहली बार युद्ध में जा रहे हो, कैसा लग रहा है?
7: मुझे काफी गर्व महसूस हो रहा है माँ। फौज में भर्ती होने के 6 महीने के अंदर ही मुझे अपने देश की सेवा का मौका मिल गया।
8: हाँ।
7: अब मौका मिलेगा मुझे कुछ कर दिखाने का।
8: बेटा एक बात याद रखना, तुम्हारे पूरे परिवार का एक शानदार सैन्य इतिहास रहा है।
7: जी।
8: ये चमचमाते हुए मेडल ये बताते हैं कि भारतीय सेना में तुम्हारे परिवार का कितना योगदान रहा है।
7: जानता हूं मां।
8: जाओ बेटा, इस मर्यादा को बनाए रखना और ऐसे लड़ना कि दुश्मन के गलियारों में भी तुम्हारी बहादुरी की चर्चा हो।
7: जी मां, आशीर्वाद दीजिए।
8: जाओ बेटा।
4: और बिल्कुल ऐसा ही हुआ। दिन 16 दिसंबर 1971, स्थान बसंतर नदी का किनारा। दोनों सेनाओं में जम्मू कश्मीर के सामने वाले मैदानी इलाके शकरगढ़ में घमासान युद्ध चल रहा।

0: जब सेकंड लेफ्टिनेंट खेत्रपाल और उनके साथियों ने सुना कि हमारी फौज पर दुश्मन के टैंकों ने जवाबी हमला कर दिया है, तो वो अपने टैंक के साथ पूरे जोश के साथ सैनिकों की मदद के लिए आगे बढ़े। अभी वो आगे बढ़ ही रहे थे कि उनके टैंकों पर भी दुश्मन ने गोले बरसाने शुरू कर दिए। टैंकों का आक्रमण होते ही अरुण ने बड़ी फुर्ती से अपने टैंक का मुंह दुश्मन की ओर मोड़कर उन पर जबरदस्त हमला कर दिया। दुश्मन अरुण के इस घातक हमले को झेल नहीं पाया और पीछे हटने लगा। सेकंड लेफ्टिनेंट अरुण ने अपने टैंक की रफ्तार तेज कर उनका पीछा करना शुरू किया और दुश्मन के एक टैंक को नष्ट कर दिया। तभी पीछे से कमांडर का रेडियो पर आदेश आया,
1: सेकंड लेफ्टिनेंट अरुण पीछे लौटो और स्क्वाड्रन की पोजीशन से आ मिलो, अब हम एकजुट होकर फिर से हमला करेंगे।
2: यस सर।
0: आदेश सुनकर अभी वे लौट ही रहे थे कि तभी दुश्मन के टैंकों की पूरी स्क्वाड्रन ने उन पर धावा बोल दिया। सेकंड लेफ्टिनेंट खेत्रपाल ने उनका सामना पूरी बहादुरी से किया। अभी सेकंड लेफ्टिनेंट खेत्रपाल दुश्मनों से जूझ ही रहे थे कि दुश्मन का एक गोला उनके टैंक पर आ गिरा और टैंक में आग लग गई, जिससे वे बुरी तरह घायल हो गए। पीछे से फिर आदेश आया,
1: अरुण तुम्हारे टैंक में आग लगी है, उसे छोड़ो और पीछे आओ।
3: सर मैं अपना टैंक नहीं छोड़ूंगा, अभी मेरी गन काम कर रही है और दुश्मनों को ठिकाने लगाकर ही दम लूंगा।
0: युद्ध के इस महत्वपूर्ण मोर्चे पर अब उस क्षेत्र में केवल सेकंड लेफ्टिनेंट अरुण ही अपने टैंक के साथ बचे थे। इसके बाद टैंकों का ऐसा भयानक युद्ध हुआ जो युगों युगों तक याद रखा जाएगा।
4: सर सर ये क्या, ये तो टैंकों की पूरी स्क्वाड्रन ही हमारी ओर बढ़ती चली आ रही है साहब।
3: इन्हें रोकना ही पड़ेगा। प्रयाग सिंह टैंक की रफ्तार तेज करो। नाथ सिंह निशाना साधो।
4: यस सर। दाही ओर का टैंक बिल्कुल हमारे टारगेट पर है सर।
3: फायर।
4: सर
3: ये तो क्या, अब दूसरों को देखता हूं। टर्न द गन टू द लेफ्ट।
5: जी।
3: फायर।
4: सर सर वो आखिरी वाला टैंक तो वापस मुड़ रहा है सर।
3: हाँ लगता है आक्रमण करेगा, निशाना साधो।
4: ठीक है सर।
0: दो टैंक आमने सामने खड़े थे, दोनों ने एक साथ एक दूसरे पर गोले दागे।

और उसी विस्फोट में अरुण ने वीर गति पाई। हालांकि सेकंड लेफ्टिनेंट अरुण खेत्रपाल का देहांत हो गया, लेकिन उनकी बहादुरी की वजह से वो दिन भारत का रहा। दुश्मन का एक भी टैंक भारतीय कब्जे वाले इलाके में घुस ना सका। हमारी सेना ने उस दिन दुश्मन के 10 टैंक नष्ट किए, जिनमें 4 टैंक अकेले अरुण ने नष्ट किए थे। इस बहादुरी भरे कारनामे के लिए अरुण को मरणोपरांत परमवीर चक्र से सम्मानित किया गया।

0: साथियों, खेत्रपाल परिवार के लिए कहानी यहीं पर खत्म नहीं हुई। कुछ सालों बाद एक विचित्र घटना घटी, जिसके विषय में हमने उनके पिता ब्रिगेडियर मदनलाल खेत्रपाल से चर्चा की और उन्होंने जो कुछ भी बताया हम उसे आपके लिए प्रस्तुत कर रहे हैं।
1: कुछ सालों बाद मुझे संदेशा मिला कि पाकिस्तान का एक ब्रिगेडियर मुझसे मिलना चाहता है, क्योंकि मैं उनके नाम से परिचित नहीं था, इसलिए मिलने की कोशिश भी नहीं की। अरुण की यादों के सहारे समय बीतता गया और 2001 की बात है, मेरा मन हुआ जाकर अपना जन्म स्थान सरगोधा देखाऊं, जो पाकिस्तान में है, और मैं रवाना हो गया। और देखिए कैसा संयोग था कि मेरी मुलाकात उसी पाकिस्तानी ब्रिगेडियर से हुई। उन्होंने मेरी मेजबानी का दायित्व संभाला और मुझे मेरे पैतृक गांव की यादगार यात्रा कराई। मैं उनके घर करीब 3 दिन ठहरा। ज्यों-ज्यों मेरा लौटने का समय नजदीक आता गया, ज्यों-ज्यों हमारी मित्रता गहरी होती गई। पर समय समय पर ऐसा लगता था कि कुछ बात अभी बाकी है, और वो क्या थी मैं समझ नहीं पा रहा था। बात करते करते बीच में रुकना, उनके परिवार के लोगों की आंखों में करुणा, विदाई के एक दिन पहले हम सब ने एक साथ भोजन किया। सोने का समय हो चला था, अभी हम सोने जा ही रहे थे कि ब्रिगेडियर ने कहा, सर मैं वर्षों से आपसे कुछ कहना चाहता हूं पर कैसे कहूं यह समझ नहीं आ रहा। यह बात आपके बेटे अरुण के बारे में है। मैंने उनसे पूछा कि तुम अरुण के बारे में जानते हो? उन्होंने कहा, जी बहुत अच्छी तरह से। जिस बहादुरी की वजह से उसकी घर घर में चर्चा होती है वो नजारा मैंने अपनी आंखों से देखा है। याद आता है वो दिन जब शकरगढ़ की उस युद्धभूमि पर 2 टैंक आमने सामने खड़े थे, जिसमें से एक टैंक में था आपका बेटा अरुण और दूसरे में और कोई नहीं, मैं ही था। हम दोनों ने एक साथ एक दूसरे पर गोले दागे, पर नियति को शायद यही मंजूर था कि मैं जिंदा हूं

0: शहीद हो गया। मैंने जो किया वो मेरा काम था, पर सिपाही होने के साथ साथ मैं एक इंसान भी हूं, और जब मुझे पता चला कि उस समय अरुण सिर्फ 21 साल का था, तो उस घटना ने मुझे बड़ी बुरी तरह से झकझोर दिया। जिस बहादुरी से आपके बेटे ने अपनी मातृभूमि की रक्षा की, उसके लिए मैं उसे सलाम करता हूं। मेरे लिए ऐसे व्यक्ति का सामना करना जिसने मेरे पुत्र की हत्या की थी आसान नहीं था, पर उस समय मेरे जहन में बस यही पंक्तियां आईं। हिंद के
1: FM बैंड 101.8 मेगाहर्ट्ज़ पर आपने ट्यून किया है आकाशवाणी जैसलमेर का गोल्डन सिटी चैनल। इस समय दोपहर के 1 बजे हैं। आइए सुनते हैं हिंदी में प्रादेशिक समाचार आकाशवाणी के जयपुर केंद्र से।

0: डूबते ही चाहत, हकीकत की दुनिया में चाहत नहीं है।
1: अभी आप सुन रहे थे फिल्म संगीत। हम आकाशवाणी के जयपुर अजमेर केंद्र से बोल रहे हैं। कृपया हमारी अगली उद्घोषणा की प्रतीक्षा कीजिए। आकाशवाणी का ये जयपुर अजमेर केंद्र है, दिन का एक बजने वाला है। थोड़ी देर में हिंदी में प्रादेशिक समाचार होंगे।
2: नमस्कार, आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार। समाचारों के साथ मैं रितिका गुप्ता। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ग्राम विकास चौपाल की कड़ी में आज बांसवाड़ा पहुंचेंगे। श्री शर्मा चुड़ादा गांव में रात्रि चौपाल में ग्रामीणों के साथ संवाद करेंगे। वहीं कल सुबह गांव का पैदल भ्रमण कर लोगों से बातचीत करेंगे। गौरतलब है कि ग्राम विकास चौपालों के माध्यम से मुख्यमंत्री ग्रामीणों से सीधा संवाद कर रहे हैं, साथ ही सरकार की कल्याणकारी योजनाओं के बारे में फीडबैक भी ले रहे हैं। मुख्यमंत्री का कल डूंगरपुर पहुंचने का कार्यक्रम है। वे 84 क्षेत्र के धम्बोला गांव में ग्राम विकास चौपाल करेंगे। खाद्य और नागरिक आपूर्ति विभाग के सचिव अम्बरीश कुमार ने लोगों से घबराहट में पेट्रोल डीजल की खरीद और भंडारण नहीं करने की अपील की है। उन्होंने कहा कि राज्य में पेट्रोल डीजल की पर्याप्त उपलब्धता है, लोगों को अफवाहों पर ध्यान नहीं देना चाहिए। उन्होंने कहा कि प्रदेश में ईंधन की बढ़ती मांग के बावजूद पर्याप्त स्टॉक है और आपूर्ति व्यवस्था सुचारू बनी हुई है। राज्य में सहकारिता उपभोक्ता भंडार और क्रय विक्रय सहकारी समितियों की ओर से चलाए जा रहे सभी दवा बिक्री केंद्र और प्रधानमंत्री जन औषधि केंद्र आज खुले हैं। ये केंद्र सुबह 8 बजे से रात 10 बजे तक खुले रहेंगे। सहकारिता विभाग के शासन सचिव डॉ. समित शर्मा ने बताया कि प्रदेश भर में कुल 538 दवा केंद्र संचालित हैं, जिन पर लगभग 2000 तरह की दवाइयां उपलब्ध है। वहीं ऑल इंडिया ऑर्गेनाइजेशन ऑफ केमिस्ट एंड ड्रगिस्ट के आह्वान पर कई स्थानों पर मेडिकल स्टोर बंद रखे गए हैं। एसोसिएशन ने ऑनलाइन दवाओं की बिक्री पर रोक लगाने की मांग को लेकर ये बंद रखा है। जयपुर में जीएसटी चोरी और फर्जी बिल मामले में वाणिज्य कर विभाग की प्रवर्तन शाखा ने बड़ी कार्रवाई की है। सघन जांच के दौरान अवैध आईटीसी के जरिए करीब 13.5 करोड़ रुपए की जीएसटी चोरी के आरोप में मुरलीपुरा निवासी नितेश कुमार सिंघल को गिरफ्तार किया गया है। उसने विभिन्न फर्मों के जरिए फर्जी बिलिंग कर जीएसटी चोरी की थी। प्रदेश में प्री डीएलएड परीक्षा कड़ी सुरक्षा और एआई आधारित निगरानी के बीच ली जा रही है। 2 बारियों में हो रही इस परीक्षा के लिए अभ्यर्थियों को सघन जांच के बाद प्रवेश दिया गया। सभी केंद्रों की लाइव फीड जयपुर स्थित कमांड सेंटर तक पहुंच रही है, जहां आईटी और एआई विशेषज्ञ रियल टाइम निगरानी कर रहे हैं। परमवीर चक्र से सम्मानित हवलदार मेजर पीरू सिंह की जयंती आज श्रद्धा और सम्मान के साथ मनाई जा रही है। इस अवसर पर झुंझुनू स्थित उनके स्मारक स्थल पर पुष्पांजलि कार्यक्रम हुआ, जिसमें बड़ी संख्या में पूर्व सैनिकों और नागरिकों ने मां भारती के वीर सपूत को नमन किया। गौरतलब है कि 1948 में जम्मू कश्मीर में दुश्मनों का सामना करते हुए हवलदार पीरू सिंह ने असाधारण वीरता का परिचय दिया था। दुश्मनों की चौकियों को ध्वस्त करते हुए वे गंभीर रूप से घायल होकर वीरगति को प्राप्त हुए। उन्हें मरणोपरांत परमवीर चक्र से सम्मानित किया गया था। प्रदेश में भीषण गर्मी और गर्म हवाएं लोगों को परेशान कर रही है। दिन के साथ ही रातें भी काफी गर्म हो गई हैं। मौसम विभाग ने अगले 3 दिनों के लिए लू का दौर जारी रहने की चेतावनी दी है। 2 जिलों में हीटवेव का ऑरेंज और 14 में येलो अलर्ट बताया गया है। कल चित्तौड़गढ़ 46.3 डिग्री सेल्सियस तापमान के साथ सबसे गर्म रहा। इसके अलावा श्रीगंगानगर, अलवर और पिलानी में भी पारा 45 डिग्री से ऊपर रहा। राजधानी जयपुर, फलौदी, चित्तौड़गढ़ और कोटा में रात का तापमान 30 डिग्री सेल्सियस मापा गया। सिरोही को छोड़कर लगभग सभी जिलों में दिन का तापमान 40 से 47 डिग्री सेल्सियस के बीच रहा। नई दिल्ली स्थित प्रधानमंत्री संग्रहालय में आज से आगंतुक महात्मा गांधी के एआई आधारित 3D अवतार से बातचीत कर सकेंगे। आधुनिक तकनीक से तैयार ये 3D अवतार बापू के विचारों और व्यक्तित्व को जीवंत रूप में प्रस्तुत करेगा। ये संग्रहालय का तीसरा एआई आधारित इंटरैक्टिव होलो बॉक्स होगा। इससे पहले संग्रहालय में सरदार वल्लभ भाई पटेल और पूर्व राष्ट्रपति एपीजे अब्दुल कलाम के एआई होलो बॉक्स भी शुरू किए जा चुके हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 31 मई को आकाशवाणी के मन की बात कार्यक्रम में अपने विचार साझा करेंगे। ये इस मासिक रेडियो कार्यक्रम की 134वीं कड़ी होगी। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। हमारा अगला बुलेटिन शाम 6:30 बजे प्रसारित होगा। नमस्कार।
3: FM बैंड 101.8 मेगाहर्ट्ज पर आपने ट्यून किया है आकाशवाणी जैसलमेर का गोल्डन सिटी चैनल। इस समय दोपहर के 1:05 हुए हैं। आइए सुनते हैं महिलाओं का कार्यक्रम मोमल।

गूंथ गूंथ कर जैसे मोती बन जाता है गले का हार, रिश्ते की डोरी से बनकर बनता है संयुक्त परिवार, बड़ों से बनती घर की छाया बच्चों से भरता है प्यार, सब मिलकर जब करे ठिठोली घर आंगन में आए बहार, दादाजी की प्यारी बातें दादी का हो प्यार दुलार, बच्चों के कोमल मन में तब भरता अपने बड़ों से प्यार, एकाकी जीवन में कहाँ अब मिल पाता है सबका प्यार, बच्चे भी अब भूल रहे हैं कैसा होता है परिवार, खुशियों का हो बड़ा सा आंगन प्रेम भरे हो जिनके द्वार, एक साथ ले चाय की प्याली सुबह सत साथ मिलकर करे विचार, जहाँ रसोई साथ बनाए खाते समय हो बातें चार, सुख दुख सब अपनों से बांटे ऐसा हो संयुक्त परिवार। मुमल सुनने वाली सभी सखियों को आपकी रेडियो सखी आरती का प्यार भरा नमस्कार। सखियों, आप समझ ही गए होंगे कि आज मैं आपको किसके बारे में बताने वाली हूँ, किसके बारे में बात करने वाली हूँ। जी हाँ, आज हम बात करने वाले हैं संयुक्त परिवार के बारे में। और संयुक्त परिवार, हम सभी जानते हैं संयुक्त परिवार ऐसा परिवार होता है

इसमें हमारे घर के बड़े बुजुर्ग यानी कि दादा दादी, चाचा चाची, ताऊ ताई, भुआ, ये सब होते हैं और सभी मिलकर एक ही छत के नीचे मिलजुल कर रहते हैं। तो संयुक्त परिवार की जो प्रथा भारत में, हमारे देश में जो है, ये शुरू से ही चलती आई है और लोग बहुत मतलब एक दूसरे से अलग कभी रहने के सोचते भी नहीं थे। पूरा घर परिवार जो है एक साथ रहता था। उस समय ऐसा था कि अगर कोई एक घर से किसी कारणवश अलग रहने को जाता था तो बहुत चिंता हो जाती थी और लोग सोचते थे कि कैसे हम घर वालों को बोलेंगे कि भाई हमें अलग जाके रहना है या हमें बाहर जाना है काम के लिए। मतलब उस समय संयुक्त परिवार को अच्छा माना जाता था और अकेला जो परिवार है उसे लोग अच्छा मानते ही नहीं थे और बहुत मुश्किल से लोग एक दूसरे से अलग होते थे। सारे घर के बड़े लोग हैं, जैसे एक पीढ़ी है, उसके बाद की जो पीढ़ियां हैं वो सब भी हमेशा साथ रहते आए। लेकिन समय के अनुसार धीरे धीरे बहुत कुछ बदल गया। आज ऐसा है कि लोग अपने अकेले परिवार में रहने में भी बहुत खुश हैं। संयुक्त परिवार जो है वहाँ लोग जल्दी से साथ में नहीं रहते। जैसे जैसे बच्चे बड़े होते जाते हैं लोग अपने परिवारों से अलग होकर रहना चालू कर देते हैं। अब ये अलग होने के भी कई कारण होते हैं। जरूरी नहीं है कि हर वक्त हम अपने परिवार से जानबूझ करके ही अलग होते हैं। कई बार परिस्थितियां ऐसी हो जाती है कि परिवार से अलग होकर रहना पड़ता है। देखिए कई कारण हो सकते हैं। जैसे मान लीजिए कि अगर घर छोटा है और उसमें सारा परिवार रह रहा है, लेकिन अब जैसे जैसे बच्चे बड़े हो रहे हैं, बच्चों की भी जरूरतें हैं, उन्हें अलग रूम भी चाहिए, पढ़ाई करनी होती है, ऐसी बहुत सी चीजें होती है, तब उस वजह से भी घर अलग बनते हैं और लोग धीरे धीरे अलग हो जाते हैं। कई बार ऐसा होता है कि काम की वजह से हमें अपने परिवार से दूर जाकर रहना पड़ता है। जैसे मान लीजिए कि कोई एक परिवार है जो साथ में रह रहा है, लेकिन अगर उसमें किसी की नौकरी कोई दूसरी जगह लग गई तो उसे अपनी बीवी और बच्चों के साथ दूसरे गांव या दूसरी जगह जाकर रहना पड़ता है और काम की वजह से अपने परिवार से लोग अलग हो जाते हैं। कई बार रिश्तों में दरार की वजह से भी लोग अलग हो जाते हैं, क्योंकि लोगों के जो मतभेद हो जाते हैं उसकी वजह से भी लोग अलग होते हैं। तो कई सारे कारण हो सकते हैं, लेकिन देखिए काम जो है उसकी वजह से अलग होना एक अलग बात होती है, लेकिन मतभेद होकर जब हम अलग होते हैं तो हमें अपने साथ होने का एहसास जो है कि भाई जब सब हम सब साथ थे तो कितना अच्छा था, ये बाद में लोगों को होता ही है। तो परिवार जो है पांच स्टेप, संयुक्त परिवार में सब एक साथ प्रेम पूर्वक रहते हैं। जो घर के सबसे बड़े बुजुर्ग हैं उनको परिवार का मुखिया माना जाता है, जो सभी को मार्गदर्शन देते हैं। तो जब हम अलग रहने लगते हैं तो हमारा ये जो मार्गदर्शन है ये हमसे कहीं ना कहीं छूट जाता है। परिवार के सभी सदस्य अपनी आय और खर्चे आपस में साझा करते हैं, जिससे आर्थिक बोझ किसी एक के व्यक्ति पर नहीं पड़ता और घर के काम की जो जिम्मेदारियां हैं वो भी बढ़ जाती हैं, तो किसी एक पर काम का दबाव भी नहीं रहता। और जो बच्चे हैं वो घर में सबके साथ जब मिलकर पलते बढ़ते हैं, तो देखिए बच्चों, आज हम देखते हैं कि बच्चों को ऑटिज्म की बीमारी हो रही है कि भाई अकेले रह रहा है बच्चा तो अकेलापन आ गया है। तो ये जो अकेलापन है ये जो बच्चे में होता जा रहा है धीरे धीरे, इसका कारण ये है कि परिवार से हम दूर होते जा रहे हैं। तो परिवार से जो दूर है वो कभी भी बच्चे को होना नहीं चाहिए। अगर किसी वजह से हो जाए तो हमें ये कोशिश करना चाहिए कि हम अपने बच्चों को जो है वो परिवार के पास ले जाएं, परिवार के साथ ले जाएं। जब कभी छुट्टी का समय हो या कोई कारण हो, तो कोई वार त्योहार है या सोचिए कि कुछ अच्छे पर्व है, कुछ भी ऐसा हो, उस समय अगर हम अपने बच्चों को अपने परिवार के साथ ले जाते हैं तो बच्चे भी समझते हैं कि किस तरीके से हमें सबके साथ रहना है। तो ये जो साथ में रहने की जो आदत है बच्चों को तभी होती है जब वो अपने परिवार के साथ जाते हैं, मिलते हैं, उनमें शामिल होते हैं। अगर बच्चे एक दूसरे के साथ कभी रहे नहीं तो बच्चों को एक दूसरे के साथ रहने की आदत भी नहीं होती। जैसे मान लीजिए कि कोई परिवार अपने संयुक्त परिवार का लड़का है और वो किसी जॉब की वजह से कहीं दूर जाकर रहने लग गया अपने परिवार के साथ, तो ऐसे में जब उसका बच्चा शुरू से अकेला रहता है तो उसकी ऐसी आदत पड़ जाती है वो किसी के साथ मिक्स नहीं होता और उसे शेयरिंग की भी आदत कम होती है। तो संयुक्त परिवार में रहकर हम बच्चों को यही सिखाते हैं कि भाई किस तरीके से हमें अपनी चीजें साझा करनी चाहिए, कैसे हम किसी के साथ रह कर के भी अपनी सब चीजें बहुत अच्छे से कर सकते हैं। और जब सबके साथ बच्चे रहते हैं तो कई तरीके की चीजें सीखते हैं, कई बार अच्छी सीखते हैं, कई बार बुरी भी सीखते हैं। तो इससे जो जीवन का जो एक अनुभव है वो भी आता है। हम बच्चों को सिखाते हैं कि भाई तुम्हें ये चीजें नहीं सीखनी, ये चीजें सीखनी है। तो ये सब चीजों का जो असर है वो परिवार पर पड़ता है। तो संयुक्त परिवार जो है आज के समय में लोगों को इसकी बहुत ज़्यादा जरूरत महसूस हो रही है, क्योंकि जब शहरों में लोग अपने गांव से
अपने परिवार से दूर आकर रहते हैं, जब उन्हें पता चलता है कि भाई हम अपने परिवार से दूर रह रहे हैं और हमें अपने परिवार के पास जाना चाहिए, हमारे बच्चे जो है वो कुछ सीख नहीं रहे हैं, ऐसी कई सारी चीजें जो है इसका एहसास धीरे धीरे होता है जब हम अपने परिवार से दूर कहीं जाने लगते हैं। पर कई बार मजबूरियां ऐसी होती है कि हम चाहकर भी अपने परिवार के पास नहीं जा पाते, लेकिन कम से कम अगर हम समय समय पर अपने बच्चों को अपने परिवार के साथ ले जाएं, जैसे देखिए अभी गर्मी की छुट्टियां हैं, इस समय जब बच्चे अपने दादी के घर जाते हैं, नानी के घर जाते हैं, तो जब सबके साथ रहते हैं तो उनका उन्हें मजा ही बहुत आता है और उनकी इच्छा भी नहीं होती कि वो वापस लौट कर अपने रहने की जगह पे जाएं, अपने मम्मी पापा के साथ अकेले कहीं जाएं, ऐसी उनकी इच्छा कभी नहीं होती। तो परिवार जो होता है इसका एक अपना अलग ही बंधन होता है, एक भावात्मक रिश्ता लोगों में होता है और लोग एक दूसरे के लिए अच्छा सोचते हैं, एक दूसरे के लिए उनके मन में प्रेम होता है और ये जो प्रेम है इसकी वजह से ही सारे लोग जो है वो जुड़े रहते हैं। तो आप और हमें भी कोशिश करनी चाहिए कि हम अपने बच्चों को इसके बारे में बताएं कि भाई संयुक्त परिवार क्या है और बच्चों को उनके साथ समय समय पर ले जाएं, सबके साथ उन्हें शामिल करें, हर सुख दुख में अपने परिवार के साथ खड़े हो, तभी जो है बच्चे आने वाले भविष्य के लिए तैयार हो पाएंगे और हमारे जो भारत की संस्कृति है ये भी अक्षुण बनी रहेगी। तो सखियो बातें तो बहुत सी है, आइए ले चलते हैं आपको गीत संगीत की दुनिया में और सुनवाते प्यारा सा गीत।

जनगणना के पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके मकान की गणना होगी। आइए आपकी साझेदारी से इसे सफल बनाएं और विकसित भारत 2047 की ओर एक और कदम बढ़ाएं।

जनगणना के पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके मकान की गणना होगी। आइए आपकी साझेदारी से इसे सफल बनाएं और विकसित भारत 2047 की ओर एक और कदम बढ़ाएं।

जनगणना के पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके मकान की गणना होगी। आइए आपकी साझेदारी से इसे सफल बनाएं और विकसित भारत 2047 की ओर एक और कदम बढ़ाएं।

0: जनगणना के पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके मकान की गणना होगी। आइए आपकी साझेदारी से इसे सफल बनाएं और विकसित भारत 2047 की ओर एक और कदम बढ़ाएं।
1: ब्रेक के बाद हम फिर हाजिर हैं। सखियों, अगर हम चाहते हैं कि हम स्वस्थ रहें तो ये बहुत जरूरी है कि रोजाना कुछ व्यायाम, कुछ भ्रमण की आदत हमारी होनी चाहिए। और अगर प्रातःकालीन भ्रमण किया जाए तो उसके बहुत से फायदे होते हैं, क्योंकि एक तो देखिए, जब आप थके हारे दिन भर होने के बाद जब आप रात को घूमने जाते हैं तो आपका शरीर इतना कई बार साथ नहीं देता कि आप लंबे लंबे चक्कर करें, घूमें। लेकिन सुबह जब आप नींद से उठते हैं, जब हम अपने आप को फ्रेश महसूस करते हैं और उस समय जब हम मॉर्निंग वॉक करते हैं, तो सुबह की जो 20 से 30 मिनट की जो मॉर्निंग वॉक होती है, शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य के लिए सबसे बेहतरीन और आसान आदतों में से एक होती है। ये हृदय को मजबूत बनाती है, ब्लड शुगर नियंत्रित करती है, हमारा वजन घटाने में मदद करती है और दिन भर के लिए ऊर्जा भी प्रदान करती है। तो अगर सुबह के समय हम अपने घर से निकलते हैं घूमने के लिए, तो इस समय देखिए ना तो कोई भी तरीके की दिमाग में कोई हलचल होती है। सुबह सुबह हम फ्रेश उठते हैं और फिर जब ठंडी ठंडी हवा और पक्षियों की जो आवाज़ है, वो जो सुहाना मौसम होता है, उसमें घूमने का एक अलग ही आनंद आता है। और फिर अगर आप घास पर घूम रहे हैं तो उस घास पर घूमने से आपके पाँव के लिए, आपके शरीर के लिए बहुत से फायदे हैं। अगर आप तेज कदमों से वॉक करते हैं या कोई लोग जॉगिंग करते हैं तो वो भी बढ़िया होता है। जबकि रात को तो खाना खाने के बाद हम ज़्यादा तेज चल भी नहीं सकते, जॉगिंग कर नहीं सकते, लेकिन सुबह अगर आप थोड़ी देर 15-20 मिनट के लिए जॉगिंग कर रहे हैं, भाग रहे हैं, तो ये भी आपके लिए बहुत फायदा होता है इससे। तो इसकी वजह से जिन लोगों की एक रूटीन होती है रोजाना, कई लोगों को हम देखते हैं कि पार्क जाते हैं, कोई मैदान जाते हैं जहाँ घूमते हैं, एक्सरसाइज करते हैं, तो ऐसे लोग जो हैं ये काफ़ी लंबे समय तक किसी भी तरीके की बीमारियां जो हैं इनको छू नहीं सकती। और अगर बीमारी है तो वो बीमारी कंट्रोल में रहती है अगर आपका एक रोजाना का नियम है। क्योंकि हम देखते हैं कि एक उम्र के बाद सबके शरीर में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम होनी शुरू हो जाती है, और ज़्यादातर 30 से 32, 35 साल की उम्र के बाद कुछ ना कुछ बीमारी हर इंसान को लगती है। तो अगर इन बीमारियों से बचना चाहते हैं या इन बीमारियों को कंट्रोल में रखना चाहते हैं, और तो मॉर्निंग वॉक की अगर आपने आदत डाल ली तो ये हमारे लिए सबसे ज़्यादा अच्छा रहता है। और जो लोग कला प्रेमी होते हैं, जिनको में कई तरीके की कला होती है, उन लोगों के लिए तो मॉर्निंग वॉक और भी फायदेमंद होती है। क्योंकि सुबह जब वो घूमने निकलते हैं, कई तरीके के दिमाग में अच्छे अच्छे थॉट्स आते हैं और उनकी जो कला है उससे, उसकी वजह से निखरती भी है। तो देखा जाए तो बीमारी के लिए, अपने शरीर के लिए, अपने मानसिक तनाव को कम करने के लिए, हर चीज़ के लिए जो प्रातःकालीन भ्रमण है, इसके बहुत से फायदे हैं। तो अगर आपने शुरू नहीं किया तो आप भी आज इसके बारे में सोचिए, और गर्मी का ये जो छुट्टियों का समय है इसमें आप भी अपनी एक रूटीन डालिए, ताकि जब आगे का स्कूलें बच्चों के खुल जाए तो भी हमारी एक रूटीन बनी रहे, नियमित रूप से हम शहर के लिए जा सकें। अगर आप सुबह जल्दी उठ के नहीं जा सकते तो कोई बात नहीं, बच्चों को स्कूल भेज के फिर भी आप जा सकते हैं और अपनी जो रूटीन है उसको बनाए रख सकते हैं। तो आप भी सोचिए इस बारे में, और हम एक बार फिर से ले चलते हैं आपको गीत संगीत की दुनिया में और सुनवाते हैं गीत।

बीवी नंबर वन इस फिल्म का गीत आप सुन रहे थे अभिजीत और पूर्णिमा की आवाज में। और अब लेते हैं एक छोटा सा कमर्शियल ब्रेक।

जनगणना के पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके मकान की गणना होगी। आइए आपकी साझेदारी से इसे सफल बनाएं और विकसित भारत 2047 की ओर एक और कदम बढ़ाएं।

0: जनगणना के पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके मकान की गणना होगी। आइए आपकी साझेदारी से इसे सफल बनाएं और विकसित भारत 2047 की ओर एक और कदम बढ़ाएं।
1: सखियों, जब हम छोटे थे तो हम अपने घरों में देखते थे कि हमारी दादी या हमारी नानी ननियाल जाते थे तो हम देखते थे कि दादी या नानी जिन बर्तनों में खाना बनाती है वो बर्तन हमें पीले पीले दिखाई देते थे और हम सोचते थे कि इनके बर्तन कुछ अलग दिखते हैं, हमारे वहाँ पे बर्तन अलग दिखते हैं। और कई बूढ़ी औरतों को हम देखते हैं कि आज भी जब वो खाना पकाती हैं तो या तो वो पीतल के कांसे के बर्तनों में बनाती है या मिट्टी के बर्तनों में खाना बनाते दिखाई देती है। खासकर जो गांव में रहते हैं हम देखते हैं कि वो खाना जब बनाते हैं तब मिट्टी के बर्तन चढ़ाते हैं और वही जब वहां पर जब बच्चे देख के आते हैं और अपने घर में शहर में आके देखते हैं कि वे नॉनस्टिक बर्तन है, स्टील के बर्तन है, इनमें खाना पक रहा है तो बर्तन हम सोचते थे जैसे छोटे थे तो हम भी सोचते थे कि यहाँ अलग तरीके के बर्तन है, हमारे घर पे यानी दादी के घर पे अलग बर्तन दिखाई देते हैं जबकि बूढ़े लोग इस तरीके के बर्तन में खाना बनाने को प्रेफरेंस देते थे। उस समय ये सब चीजें समझ में नहीं आती थी लेकिन आज के समय में हमें ये चीजें समझ में आ रही है कि उन बर्तनों के क्या फायदे थे। पुराने लोग जो थे वो ऐसे बर्तनों में खाना बनाते थे जिसमें खाने के जो पोषक तत्व है वो नष्ट नहीं हो, वो बने रहे। और हम देखते हैं कि मिट्टी के बर्तन जो है वो ऐसे होते हैं जिसमें खाने के पोषक तत्व 100% तक बने रहते हैं। हालांकि पीतल के बर्तन हैं और जो कांसे के बर्तन हैं इनमें भी अच्छा प्रतिशत खाने के जो पोषक तत्व है बने रहते हैं लेकिन सबसे ज्यादा जो बढ़िया रहता है वो है मिट्टी के बर्तन। या फिर लोहे के बर्तन में भी खाना बनाना बहुत अच्छा होता है लेकिन लोहे के बर्तनों में आप हर तरीके का खाना नहीं बना सकते। जैसे खट्टी चीजें हैं इनको बनाने में हमें ध्यान रखना पड़ता है, कई बार लोहे के बर्तनों में जंग लग जाती है तो उसके रखरखाव को ध्यान रख के उसको साफ करके काफी सारी प्रॉब्लम्स होती हैं उनको देख करके फिर उसमें खाना बनाना पड़ता है। लेकिन जो मिट्टी के बर्तन होते हैं इनमें खाना बनाना सबसे ज्यादा फायदेमंद होता है और बहुत ही आसान होता है इनको मेंटेन करना भी। तो अगर आज के समय में अगर हमें कहीं पे मिट्टी के बर्तन मिलते हैं तो हम भी कोशिश करते हैं कि हम अपने घर में मिट्टी के बर्तन लाएं और उनमें खाना बनाएं। रोज नहीं तो कभी कभी तो इसमें कुछ ऐसा खाना बनाएं जो घर वालों को खाने में भी मजा आए और हमारे जो इसमें पोषक तत्व हैं वो बने रहे। इसमें पके हुए खाने से प्राकृतिक खनिज कैल्शियम, मैग्नीशियम, आयरन जो है वो नष्ट नहीं होते और क्योंकि मिट्टी क्षारीय प्रकृति की होती है तो जो खाने के एसिडिक गुण हैं उनको ये संतुलित करके गैस और अपच जैसी समस्याओं को दूर रखती है। इसमें खाना धीरे धीरे पकता है जिससे भोजन के जो पोषक तत्व है वो बरकरार रहते हैं। तो हम तो घर में कुकर में फट से खाना बनाने के आदि होते हैं तो हम देखते हैं कि भाई फटाफट उसमें खाना बन जाए लेकिन मिट्टी के बर्तन में जब धीरे धीरे खाना एकदम धीमी आंच पे जब बनता है ना तो उस खाने का एक तो स्वाद भी अलग होता है साथ ही साथ उसमें पोषक तत्व हैं जो बने रहते हैं। तो इन बर्तनों इनके जो बर्तन हैं वो आजकल बहुत आसानी से हमें मिल भी जाते हैं, जैसे आप कहीं से भी ऑनलाइन भी देख सकते हैं, बाजार में जाकर भी हम देख सकते हैं तो मिट्टी के हमें तवे, कुकर, इनके पैन, कई तरीके के बर्तन मिल जाते हैं। और खाने के लिए तो देखिए शुरू से ही मिट्टी के जो प्लेट छोटी छोटी आती हैं, काफ़ी सारे बर्तन पानी पीने के लिए या लस्सी छाछ पीने के लिए मिट्टी के बर्तन तो हमें उपलब्ध आसानी से हो ही जाते हैं। इसके अलावा बनाने के बर्तन भी जो है वो भी आसानी से मिल जाते हैं। इसमें ये जो बर्तन होते हैं नए बर्तन को कम से कम 24 घंटे के लिए पानी में डुबो कर रख दें और इसके बाद बर्तन को सुखा कर अच्छी तरीके से अंदर में तेल लगा कर धीमी आँच पर गर्म करें जिससे क्या इसकी सीजनिंग हो जाती है, उसके बाद इन्हें इसमें खाना बनाना शुरू करें। और जब इसकी साफ सफाई करें तो भी हमें इसे साबुन या डिटर्जेंट से नहीं धोना चाहिए बल्कि उसे मिट्टी या ऐसी चीजों से धोएं और गर्म पानी या नींबू जो है उससे इसको अगर साफ रखें तो ये साफ भी रहते हैं और अगर केमिकल की चीजों से धोएंगे तो इसके अंदर केमिकल जाएंगे जो हमें नुकसान पहुंचा सकते हैं तो उन चीजों से भी हम बचे रहते हैं। तो मिट्टी के जो बर्तन हैं बहुत ही आसानी से इनका रख रखाव भी किया जा सकता है और इसमें बने खाने का जो है वो आनंद भी कुछ और होता है। और हम देखते हैं कि कई बार बाजरे की रोटी जो है वो लोग मिट्टी के तवे पर बनाते हैं और ये तवे भी बहुत आसानी से मिल जाते हैं और बाजरे की रोटी के जो पोषक तत्व हैं वो इसमें बने रहते हैं। और देखिएगा कि आप जब इसमें रोटी बनाएंगे इन तवों में मिट्टी के बर्तन में तो इसका स्वाद भी एक अलग ही होगा। और कई बार लोग जब इन बर्तनों में खाना पकाते हैं तो घर में चूल्हे जलाते हैं और चूल्हे पर खाना पकाते हैं तो उसकी वजह से भी स्वाद में बहुत फर्क पड़ता है। तो अगर आपने कभी ऐसे बर्तनों में खाना नहीं पकाया है तो कोशिश कीजिए कि आप भी इन बर्तनों को बाजार से लाएं। ऑनलाइन सुविधा हमें आजकल मिली जाती है कि हम घर पर मंगा सकें और इन पर खाना बना के देखें, तो हमें पता चलेगा कि इनके स्वाद भी कैसा है और इसमें हमारे जो पोषक तत्व हैं वो बने रहेंगे। तो सखियों, बातें हमारी चलती रहेगी, एक बार फिर से चलते हैं गीत संगीत की दुनिया में और सुनते हैं गीत।

सब कुछ भुला दिया, ये वफा का कैसा सिला दिया। सब कुछ भुला दिया, ये वफा का कैसा।

हम तुम्हारे हैं सनम, इस फिल्म का गीत आप सुन रहे थे सोनू निगम की आवाज में। सखियों, हमेशा ही हम जो औरतें हैं ये अपने बालों के लिए, अपनी त्वचा के लिए देखते हैं कि कुछ नेचुरल चीज जो है मिले और वो हम लगाएं तो इससे हमारे बाल त्वचा जो है वो अच्छी बने रहे। और नेचुरल चीजें तो बहुत सी है जो हम लगाते हैं, इसमें शहद जो है ये त्वचा और बालों के लिए बेहतरीन प्राकृतिक सौंदर्य उत्पाद है। इसमें मौजूद एंटीऑक्सीडेंट्स और एंटीबैक्टीरियल गुण जो है ये त्वचा को गहराई से साफ करते हैं और मुहासे कम करती है और हमारे चेहरे में एक प्राकृतिक चमक इसकी वजह से आती है। तो आप किसी भी तरीके का लेप लगाना चाहते हैं, जैसे मान लीजिए बेसन का, दही का लेप लगा रहे हैं, तो आप उसमें शहद मिलाकर लगा सकते हैं या आप नींबू शहद मिलाकर लगा सकते हैं। एक चम्मच शहद और आधा नींबू का रस मिलाएं और इसे चेहरे पर 15 मिनट लगाकर अगर हम गुनगुने पानी से धोते हैं तो इससे हमारे चेहरे में एक अलग ही ग्लो आती है। और त्वचा की नमी को बनाए रखने के लिए भी जो शहद है इसका जो मास्क है बहुत अच्छा काम करता है। आप सीधे एक चम्मच शहद जो इसको चेहरे पर लगाएं और 10 मिनट बाद इसे धो लें तो ये त्वचा को मुलायम बनाए रखती है। और मुहासे और दाग धब्बों के लिए जो शहद है ये बहुत अच्छा काम करते हैं। शहद को दाग धब्बों या मुहासों पर रात भर लगाकर छोड़ें, इसके एंटीबैक्टीरियल जो गुण है ये फुंसियों को जल्दी ठीक करते हैं। और फटे होठों पर शहद और थोड़ी चीनी मिलाकर स्क्रब करने से होठ गुलाबी और मुलायम होते हैं। तो शहद जो है ये कई जगह काम करती है, चाहे त्वचा का मामला हो या बालों के लिए भी। आप किसी तरीके का मास्क बना रहे हैं तो आप उसमें भी शहद को मिलाकर लगा सकते हैं। शहद के जो फायदे हैं ये हमारे लिए बहुत अच्छे हैं भाई। इससे हमारी अगर प्राकृतिक चीज है और उससे अगर हमारा अच्छा हो रहा है तो कोशिश हमें करनी चाहिए कि जितना हो सके हम प्राकृतिक चीजों का ही उपयोग करें और केमिकल से बचें। तो आप भी कीजिएगा इस अच्छे से जो हमारा ये जो शहद जो है प्राकृतिक उत्पाद, इसका उपयोग। और हम ले चलते हैं आपको एक बार फिर से गीत संगीत की दुनिया में और सुनवाते हैं प्यारा सा गीत।

हर दिल जो प्यार करेगा, इस फिल्म का गीत आप सुन रहे थे प्रीति पिंकी और प्रशांत की आवाजों में। और अब लेते हैं एक छोटा सा कमर्शियल ब्रेक।

जनगणना के पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके मकान की गणना होगी। आइए आपकी साझेदारी से इसे सफल बनाएं और विकसित भारत 2047 की ओर एक और कदम बढ़ाएं।

0: जनगणना के पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके मकान की गणना होगी। आइए आपकी साझेदारी से इसे सफल बनाएं और विकसित भारत 2047 की ओर एक और कदम बढ़ाएं।
1: सखियों, अब समय हो रहा है आपसे विदा लेने का, लेकिन जाने से पहले आपको छोटे छोटे किचन टिप्स जरूर देना चाहते हैं। तो इस समय कैरी जो है वो हमें मार्केट में बहुत ज्यादा मिल रही है, और कैरी के जो फायदे हैं वो भी बहुत से होते हैं। तो कैरी का अचार हम बनाते हैं, इसकी चटनी भी बनती है, और घर में हम इसकी सब्जी भी बनाते हैं कैरी मेथी की। और चाहे तो आप कैरी का पानी बनाकर रखिए, जो गर्मी में बहुत फायदे होते हैं, क्योंकि जब कभी हम गर्मी में बाहर निकलते हैं और उस समय कुछ इस तरीके के पेय पदार्थ ठंडे ठंडे पिए, तो उस समय हमें लू लगने की जो बहुत कम चांस होते हैं, लू से हम बच सकते हैं। तो कैरी पानी बनाना बहुत आसान है। आप कच्ची कैरी जो है बाजार से ले आइए, और 4-5 कैरी जो है इसे आप अच्छे से उबाल लीजिए जब तक वो नरम नहीं पड़े। और जिस पानी में आप इसे उबालते हैं उस पानी में ही आप इसको अच्छे से मसल लें, इसके छिलके से, इसकी गुठली से, सारा जो कुछ भी कैरी का गुदा है वो निकाल लीजिए, और फिर इसे एक मोटी छलनी से छान लीजिए, और फिर उसमें आप अपने स्वाद के अनुसार शक्कर डालिए, जितना आपको मीठा पसंद हो। आप उसमें काला नमक, काली मिर्च, इस तरीके की नींबू थोड़ा सा डालना चाहे तो, और नहीं डालना चाहे तो जरूरी नहीं है। ये सब डाल करके आप इसे ठंडा ठंडा फ्रिज में रखें और पिए। और जब कभी घर से बाहर निकले तो जरूर पिए, क्योंकि इससे जो है वो लू लगने से हम बचे रहते हैं। तो सखियों, बातें तो बहुत सी है, पर घड़ी की टिक टिक हमें आपसे और बातें करने नहीं देगी। दीजिए आगे अपनी सखी आरती को नमस्कार।

0: Beijing and Moscow and enhance coordination through forums such as the United Nations, SCO and BRICS. Both nations also highlighted the growing cooperation in trade, energy and security, with bilateral trade surpassing $200 billion. The meeting came shortly after U.S. President Donald Trump visited China for discussions with Xi on regional and global developments. U.S. President Donald Trump will attend the G7 summit in France next month amid growing tensions between Washington and several European allies over the Iran conflict. According to a White House official, the summit to be held from June 15 to 17 in Avion-les-Bains in southeastern France will focus on issues including artificial intelligence, trade, critical minerals, immigration, and global security. In Congo, the death toll due to Ebola outbreak has risen to 136. Health Minister Roger Kamba informed this amid the spread of deadly virus that has gripped the eastern part of the country. According to Congolese health authorities, the country has recorded 543 suspected cases and 32 confirmed infections, while neighboring Uganda has reported 2 confirmed cases. On to sports. In IPL cricket, Kolkata Knight Riders will take on Mumbai Indians at the iconic Eden Gardens in Kolkata. The match will begin at 7:30 p.m. Yesterday, Rajasthan Royals defeated Lucknow Super Giants by 7 wickets in a high-scoring match in Jaipur last night, keeping their playoff hopes alive. Rajasthan Royals overhauled the massive target of 221 runs with 5 balls to spare. Benchmark domestic equity indices were trading marginally lower in the afternoon session. The Sensex dropped 101 points to 75,100, while the Nifty dipped 24 points to 23,594 when reports last came in. And now, before we end the bulletin, the headlines once again. Prime Minister Narendra Modi to hold talks with his Italian counterpart Giorgia Meloni in Rome in a short while from now to boost economic cooperation. Prime Minister Modi and Giorgia Meloni outlined roadmap for India-Italy strategic partnership, highlight several economic initiatives in a joint article. DRDO completes trials of drone-launched unmanned precision-guided missile. Defense Minister terms it a strategic milestone. Supreme Court rejects petition challenging center's decision to undertake caste enumeration. Severe heatwave grips north and central India. Temperature breaches 44-degree mark at several places. And in IPL cricket, hosts Kolkata Knight Riders to take on Mumbai Indians at Eden Gardens. And with that, we end the midday news.
1: नमस्कार, आकाशवाणी से दोपहर समाचार के साथ मैं कनकलता। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अब से कुछ देर में रोम में इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी से वार्ता करेंगे। आर्थिक सहयोग को बढ़ावा देने पर चर्चा होगी। प्रधानमंत्री मोदी और जॉर्जिया मेलोनी ने एक साझा लेख में भारत इटली महत्वपूर्ण रणनीतिक साझेदारी और आर्थिक पहलों का उल्लेख किया। डीआरडीओ ने मानव रहित ड्रोन मिसाइल ULPGM-MP3 का सफल परीक्षण किया। रक्षा मंत्री ने इसे महत्वपूर्ण उपलब्धि बताया। सर्वोच्च न्यायालय ने जाति आधारित जनगणना करने के केंद्र के फैसले को चुनौती देने वाली याचिका खारिज की। उत्तर और मध्य भारत में लू का प्रकोप जारी, कई स्थानों पर तापमान 44 डिग्री के पार। और आईपीएल क्रिकेट में आज शाम कोलकाता नाइट राइडर्स का मुकाबला मुंबई इंडियंस से। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अब से कुछ देर में रोम में इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी के साथ द्विपक्षीय वार्ता के साथ साथ मौजूदा वैश्विक परिदृश्य पर भी व्यापक बातचीत करेंगे। दोनों देशों के बीच आज कई महत्वपूर्ण समझौते होने की संभावना है। दोनों नेता कई विषयों पर अपने विचार साझा करेंगे। आज की बातचीत से भारत इटली की मित्रता को और बढ़ावा देने पर चर्चा की जाएगी। हमारे संवाददाता ने बताया है कि दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय संबंधों के महत्व को दर्शाने के लिए रोम में कई कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे।
2: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज क्विरिनल पैलेस में इटली के राष्ट्रपति सर्जियो मत्तारेला से मुलाकात करेंगे, जहां उन्हें गार्ड ऑफ ऑनर प्रदान किया जाएगा। आज के कार्यक्रमों में प्रतिनिधि मंडल स्तरीय वार्ताएं, प्रेस वक्तव्य, समझौता ज्ञापनों का आदान प्रदान, द्विपक्षीय बैठकें और खाद्य एवं कृषि संगठन का दौरा शामिल है। प्रधानमंत्री मोदी मोरस निग्रा ब्लैक मलबरी का पौधा भी लगाएंगे। ये एक ऐसी प्रजाति है जो अपने पाक, औषधीय और सांस्कृतिक महत्व के कारण भारत और इटली को प्रतीकात्मक रूप से जोड़ती है। रोम से सुपर्णा भाटिया।
1: प्रधानमंत्री मोदी ने कहा है कि वे इटली के प्रधानमंत्री के साथ होने वाली बैठक को लेकर उत्सुक हैं। उन्होंने आशा व्यक्त की कि दोनों के बीच बातचीत में मुख्य रूप से भारत इटली संबंधों को मजबूत करने पर ध्यान केंद्रित किया जाएगा। हाल के वर्षों में भारत इटली संबंधों में अभूतपूर्व प्रगति हुई है और अब ये संबंध निर्णायक मोड़ पर पहुंच गए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और इटली के प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी ने संयुक्त लेख में कहा कि दोनों देशों के बीच संबंध सौहार्दपूर्ण मित्रता से विकसित होकर एक विशेष रणनीतिक साझेदारी के स्तर तक पहुंच गए हैं। दोनों नेताओं ने कहा कि ऐसे समय में जब वैश्विक व्यवस्था में गहन परिवर्तन हो रहे हैं, भारत इटली साझेदारी उच्चतम राजनीतिक और संस्थागत स्तरों पर नियमित आदान प्रदान से निर्देशित है। दोनों नेताओं ने कहा कि उनका सहयोग इस साझा समझ को दर्शाता है कि 21वीं सदी में समृद्धि और सुरक्षा राष्ट्रों के नवाचार करने, ऊर्जा परिवर्तन का प्रबंधन करने और कूटनीतिक संप्रभुता को मजबूत करने की क्षमता पर निर्भर करेगी। दोनों नेताओं ने कहा कि भारत और यूरोपीय संघ के बीच प्रस्तावित मुक्त व्यापार समझौता दोनों दिशाओं में व्यापार और निवेश के प्रवाह को बढ़ाने का मार्ग प्रशस्त करेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इटली के प्रसिद्ध चित्रकार जियाम पावलो टोमासिट्टी की भारतीय संस्कृति पर किए गए कार्यों की सराहना की है। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने कहा कि कलाकार ने इटली के रोम दौरे में वाराणसी पर बनी अपनी विशेष पेंटिंग प्रस्तुत की। प्रधानमंत्री ने कहा कि श्री टोमासिट्टी का भारतीय संस्कृति के प्रति प्रेम 4 दशक से अधिक पुराना है। एक अन्य पोस्ट में श्री मोदी ने भारतीय नृत्य शैलियों के प्रति 5 इतालवी कलाकारों की प्रेम की भी प्रशंसा की। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने आज सियोल में दक्षिण कोरिया के रक्षा मंत्री आन यू बैक से मुलाकात की। दोनों नेताओं ने क्षेत्रीय शांति, स्थिरता और तकनीकी सहयोग में साझा प्रतिबद्धता व्यक्त की। उन्होंने भारत दक्षिण कोरिया रक्षा, रक्षा उद्योग और रणनीतिक सहयोग को और मजबूत करने पर चर्चा की। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री सिंह ने कहा कि इस अत्यंत उपयोगी बैठक में दोनों देशों ने रक्षा साइबर सहयोग को बढ़ावा देने के लिए समझौतों का आदान प्रदान किया। ये समझौता ज्ञापन भारत के राष्ट्रीय रक्षा महाविद्यालय, कोरिया राष्ट्रीय रक्षा विश्वविद्यालय और संयुक्त राष्ट्र शांति स्थापना सहयोग के बीच हुआ। रक्षा मंत्री ने कहा कि वे दोनों देशों के बीच विशेष रणनीतिक साझेदारी को मजबूत करने के लिए उत्सुक हैं। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsoneair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन एआईआर ऐप पर भी उपलब्ध हैं। दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। देश ने आत्मनिर्भर भारत पहल के अंतर्गत स्वदेशी रक्षा क्षमताओं को मजबूत करने की दिशा में एक और महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल की है। रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन DRDO ने अनमैन्ड एरियल व्हीकल लॉन्च प्रिसीजन गाइडेड मिसाइल ULPGM-V3 के अंतिम विकास परीक्षण को सफलतापूर्वक किया है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि ये देश के रक्षा क्षेत्र के लिए महत्वपूर्ण उपलब्धि है।
3: ये परीक्षण आंध्र प्रदेश में कुरनूल के पास DRDO की टेस्ट रेंज में एयर टू ग्राउंड और एयर टू एयर दोनों तरह से किए गए। इस दौरान मिसाइल प्रणाली को एक एडवांस्ड इंटीग्रेटेड ग्राउंड कंट्रोल सिस्टम के माध्यम से संचालित किया गया। इन परीक्षणों से विभिन्न परिस्थितियों में मिसाइल की सटीक मारक क्षमता, विश्वसनीयता और प्रभावशीलता प्रदर्शित होती है। इस मिसाइल को हैदराबाद के रिसर्च सेंटर इमारत ने DRDO के साथ मिलकर विकसित किया है। पूरी तरह से स्वदेशी रूप से निर्मित ये मिसाइल आत्मनिर्भर भारत पहल की बढ़ती उपयोगिता को दर्शाती है। इससे देश के भीतर रक्षा प्रणाली को और सुदृढ़ करने में सहायता मिलेगी। विजयवाड़ा से अल्लू मुरली की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से मैं मुकेश कुमार बल।
1: रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने ULPGM-V3 मिसाइल के सफल विकास परीक्षणों के लिए रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन, सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों, रक्षा सह उत्पादन भागीदारों और उद्योग जगत की सराहना की है। उन्होंने टैंक रोधी भूमिका के लिए हवा से जमीन मोड और ड्रोन हेलीकॉप्टर तथा अन्य हवाई लक्ष्यों के लिए हवा से हवा मोड में इसकी प्रभावशीलता के बारे में जानकारी दी। श्री सिंह ने इसे रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भरता की दिशा में एक महत्वपूर्ण उपलब्धि बताया। सर्वोच्च न्यायालय ने जनगणना 2027 के तहत जाति आधारित

0: गणना कराने के केंद्र सरकार के फैसले को चुनौती देने वाली याचिका आज खारिज कर दी। अदालत ने कहा है कि ये मुद्दा सरकार के नीतिगत अधिकार क्षेत्र में आता है। मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत की अध्यक्षता वाली पीठ ने कहा है कि पिछड़े वर्गों के कल्याणकारी उपाय तैयार करने के लिए सरकार को उनकी संख्या जानना जरूरी है। पीठ ने कहा कि इस तरह के आंकड़े एकत्र करने में कोई बुराई नहीं है और मामले में हस्तक्षेप करने से इनकार कर दिया। सर्वोच्च न्यायालय ने आज केंद्र तथा सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों से एक जनहित याचिका पर जवाब मांगा है। इसमें सरकारी कानूनी पैनलों और विधि अधिकारियों की नियुक्तियों में महिला वकीलों के लिए 30% आरक्षण की मांग की गई है। मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत की अध्यक्षता वाली पीठ ने एक ट्रस्ट की याचिका पर नोटिस जारी किया। पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने कहा है कि भाजपा सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता उत्तर बंगाल का सर्वांगीण विकास है। उन्होंने कहा कि वो विकास परियोजनाओं की समीक्षा और सरकारी योजनाओं के प्रभावों की निगरानी के लिए हर महीने एक बार उत्तर बंगाल का दौरा करेंगे। उन्होंने कहा कि उत्तर बंगाल विकास मंत्री, उत्तर बंगाल सचिवालय उत्तरकन्या सिलीगुड़ी में सुबह 9 बजे से 11 बजे तक जनता दरबार का आयोजन करेंगे। उन्होंने ये भी कहा कि जनता दरबार के बाद दिन में 11 बजे से दोपहर 1 बजे तक अधिकारियों के साथ प्रशासनिक समीक्षा बैठक होगी और उसके बाद उसी दिन दोपहर 2 बजे से 4 बजे तक विकास मंत्री क्षेत्र के सभी सांसदों और विधायकों के साथ विकास कार्यों को गति देने के लिए समीक्षा बैठक करेंगे। केंद्रीय उपभोक्ता मामलों के मंत्री प्रह्लाद जोशी ने कहा है कि सरकार स्मार्ट विनियमन और उत्तरदायी शासन के माध्यम से बाजार में निष्पक्षता बढ़ाकर नियामक बोझ को कम करने के लिए प्रतिबद्ध है। विश्व मापन दिवस 2026 के अवसर पर वर्चुअल रूप से आयोजित एक कार्यक्रम को संबोधित करते हुए श्री जोशी ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ये परिकल्पना की है कि भारतीय उत्पादों की गुणवत्ता वैश्विक मानकों और पर्यावरण के अनुकूल होनी चाहिए। राष्ट्रीय महत्वपूर्ण सूचना अवसंरचना संरक्षण केंद्र के महानिदेशक नवीन कुमार सिंह ने आज कहा कि देश के डिजिटल अर्थव्यवस्था से वर्ष 2030 तक देश के सकल घरेलू उत्पाद जीडीपी में लगभग 20% के योगदान देने की उम्मीद है। वे नई दिल्ली में फिक्की के साइबरकॉम के 7वें संस्करण के उद्घाटन सत्र को संबोधित कर रहे थे। राष्ट्रीय महिला आयोग ने मध्य प्रदेश के भोपाल में नोएडा की 33 वर्षीय महिला की संदिग्ध मौत का स्वतः संज्ञान लिया है। आयोग की अध्यक्ष विजया राहटकर ने मध्य प्रदेश के मुख्य सचिव और पुलिस महानिदेशक को पत्र लिखकर त्वरित, निष्पक्ष और समयबद्ध जांच सुनिश्चित करने का निर्देश दिया है। महिला आयोग ने 7 दिन में विस्तृत कार्रवाई रिपोर्ट भी मांगी है। पंजाब पुलिस ने दुबई स्थित एक अंतर्राष्ट्रीय मादक पदार्थ तस्करी मॉड्यूल का भंडाफोड़ किया है जो सीमावर्ती राज्य पंजाब और राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में मादक पदार्थों की तस्करी के लिए अबू धाबी से काम कर रहा था। पुलिस ने 14 किलोग्राम मादक पदार्थों के साथ 2 तस्करों को गिरफ्तार किया है। उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री मेजर जनरल भुवन चंद्र खंडूरी का अंतिम संस्कार आज हरिद्वार में पूरे राजकीय सम्मान के साथ किया गया। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने उनके निधन को राज्य के लिए अपूर्णीय क्षति बताया।
1: मेजर जनरल भुवन चंद्र खंडूरी जी का जाना पूरे राज्य के लिए और देश के लिए बहुत अपूर्णीय क्षति है और उन्होंने सेना के अधिकारी के रूप में देश की रक्षा के लिए अपनी सेवाएं दी, अभूतपूर्व योगदान दिया। उसके बाद भारत सरकार में मंत्री के नाते और राज्य में मुख्यमंत्री के नाते उन्होंने शुचिता, पारदर्शिता और अनुशासन और समय की पाबंदी, ऐसे बहुत सारे अनुकरणीय जो कार्य हैं अपने समय में किए, वो हम सभी के लिए प्रेरणा के स्रोत रहेंगे।
0: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @TIRNews हिंदी को फॉलो कर सकते हैं। ये आकाशवाणी है। उत्तर पश्चिमी और मध्य भारत में लू का प्रकोप जारी है। मौसम विभाग ने अगले 4 दिन तक दिल्ली, पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़, ओडिशा, छत्तीसगढ़, राजस्थान, तेलंगाना और उत्तराखंड में लू की स्थिति बने रहने का अनुमान व्यक्त किया है। राजस्थान के अधिकांश जिले भी इस समय भीषण लू की चपेट में हैं। मौसम विभाग ने आज राज्य के 2 जिलों में लू की स्थिति को देखते हुए ऑरेंज अलर्ट जबकि 14 जिलों में येलो अलर्ट जारी किया है। हमारे संवाददाता की ये रिपोर्ट।
2: प्रदेश में भीषण गर्मी और गर्म हवाएं लोगों को परेशान कर रही हैं। ज्यादातर जिलों में दिन का पारा 42 से 46 डिग्री वहीं रात का तापमान 46 से 31 डिग्री सेल्सियस के बीच दर्ज किया जा रहा है। इस बीच चिकित्सा मंत्री गजेंद्र सिंह खींवसर ने अस्पतालों में

0: हीट वेव प्रबंधन को लेकर सभी जरूरी इंतजाम करने के निर्देश दिए हैं। अस्पतालों में हीट स्ट्रोक के मरीजों के लिए अलग से बेड आरक्षित रखने, जरूरी दवाइयां उपलब्ध कराने के साथ छाया और पेयजल का प्रबंध करने को कहा गया है। जितेंद्र द्विवेदी, आकाशवाणी समाचार, जयपुर।
1: पंजाब और हरियाणा में भी भीषण गर्मी जारी है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि मौसम विभाग ने दोनों राज्यों में गर्मी का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है।
2: चंडीगढ़ स्थित मौसम विभाग के डायरेक्टर सुरेंद्र पाल ने आकाशवाणी को बताया कि आने वाले 3-4 दिनों में मौसम शुष्क रहेगा और तापमान बढ़ेगा। दोनों राज्यों के पश्चिमी जिलों में लू की स्थिति रहेगी। पंजाब में ये जिले अमृतसर, फिरोजपुर, तरनतारन, मानसा, संगरूर, बठिंडा और मुक्तसर होंगे और हरियाणा में हिसार, रोहतक, झज्जर, भिवानी, गुरुग्राम और फरीदाबाद में सबसे ज्यादा गर्मी महसूस होगी। पिछले 24 घंटों में पंजाब में फरीदकोट 47.3 डिग्री सेल्सियस और हरियाणा में रोहतक 46.9 डिग्री सेल्सियस तापमान के साथ सबसे गर्म जिले रहे। राजेश बाली, आकाशवाणी समाचार, जलंधर।
1: चीन के राष्ट्रपति शी जिनफिंग और रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने आज बीजिंग में द्विपक्षीय संबंधों, ईरान यूक्रेन संघर्ष और अंतर्राष्ट्रीय व्यापार सहित प्रमुख वैश्विक मुद्दों पर बातचीत की। चीन के विदेश

0: 75,100 जबकि निफ्टी 24 अंक की गिरावट के साथ 23,594 पर कारोबार कर रहा था। आईपीएल क्रिकेट में आज कोलकाता नाइट राइडर्स का मुकाबला मुंबई इंडियंस से होगा। ये मैच कोलकाता में शाम 7:30 बजे शुरू होगा। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अब से कुछ देर में रोम में इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी से वार्ता करेंगे। आर्थिक सहयोग को बढ़ावा देने पर चर्चा होगी। प्रधानमंत्री मोदी और जॉर्जिया मेलोनी ने एक साझा लेख में भारत इटली महत्वपूर्ण रणनीतिक साझेदारी और आर्थिक पहलुओं का उल्लेख किया। डीआरडीओ ने मानव रहित ड्रोन मिसाइल ULPGM-V3 का सफल परीक्षण किया। रक्षा मंत्री ने इसे महत्वपूर्ण उपलब्धि बताया। सर्वोच्च न्यायालय ने जाति आधारित जनगणना करने के केंद्र के फैसले को चुनौती देने वाली याचिका खारिज की। उत्तर और मध्य भारत में लू का प्रकोप जारी। और आईपीएल क्रिकेट में आज शाम कोलकाता नाइट राइडर्स का मुकाबला मुंबई इंडियंस से। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
1: हम बोल रहे हैं रेडियो गोल्डन सिटी से। हमारे प्रसारण FM बैंड 101.8 मेगाहर्ट्ज पर उपलब्ध हैं। इस समय दोपहर के 2:30 हुए हैं। अब से लेकर शाम 5 बजे तक आप बने रहेंगे विविध भारती के साथ। प्रसारण होगा आकाशवाणी के मुंबई केंद्र से। कृपया प्रतीक्षा कीजिए।

जा कर तेरे घर के। ओ महबूबा तेरे दिल के पास ही है मेरी मंजिल मंजूर। तेरे दिल के पास ही है मेरी मंजिल।

रहना उंगा एक दिन सब देखते रह जाएंगे ले जाऊंगा एक दिन बाहों के तुझे हार में रहना उंगा एक दिन सब देख

0: है मेरी मंजिल मकसूद, तेरे दिल के पास ही है मेरी मंजिल मकसूद।
1: हमारी अगली पेशकश मोहम्मद रफी की आवाज में, गीतकार हैं एस एच बिहारी और संगीतकार हैं ओपी नैयर, फिल्म का नाम कश्मीर की कली।
2: या उसे

अगला गाना हमने लिया है वक्त फिल्म से। इसे गाया है आशा भोसले और महेंद्र कपूर ने। गीतकार हैं साहिर लुधियानवी और संगीतकार हैं रवि।

0: भगदौड़ के बाद सुकून का एक कोना,
1: मैं और मेरी तन्हाई,
0: सुनहरे गानों का बिछौना, यादों का मीठा राग, जज्बात की नरम छांव, प्यार की चुवन, अपने पन का गांव, छाया गीत, रोज रात 10 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
2: आलस भरी सुबह जैसे चाय में घुल जाए चीनी,
3: देखो जी बहार आई, गांवों में खिली गलियां,
2: आपके जीवन में घोलते हैं संगीत, भूले बिसरे गीत,
4: मैं तेरा राग तू मेरी रागनी,
2: गुजरे दौर की आवाजें, धुनों की अनूठी परवाज, सुनहरे गानों का अंदाज, आपकी सुबह को बनाए खास, भूले बिसरे गीत,
5: तुम्हारी याद सताती है,
2: हर रोज सुबह 7 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
6: आपने ट्यून किया है भारत का नंबर 1 मनोरंजन चैनल विविध भारती और कार्यक्रम चल रहा है सदाबहार नगमे। लीजिए अब सुनिए लता मंगेशकर की आवाज में भावी फिल्म का गाना। गीतकार हैं राजेंद्र कृष्ण और संगीतकार हैं चित्रगुप्त।

0: सुनहरे दौर के सदाबहार गानों की महफिल।
1: जाने क्यों ना गम क्या करते हैं।
0: सोमवार से शनिवार दिन में 2:30 बजे सिर्फ विविध भारती पर। सदाबहार नगमे।

0: जैसा कि आप जानते हैं विविध भारती हर महीने करता है अपनी एक महफिल सृजन भारती। इस बार सृजन भारती लेकर आ रहा है लोक संगीत की भीनी खुशबू और कुछ दिलचस्प बातों का गुलदस्ता। और ये कार्यक्रम होगा एक मुक्ताकाशी रंगमंच पर 21 मई शाम 6:30 पर। लोक संगीत और कुछ दिलचस्प बातों से सजा रंगारंग कार्यक्रम। आयोजन स्थल है ज्ञान सागर मुक्ताकाशी ऑडिटोरियम रघुनाथ टावर के सामने देवीदास लेन बोरीवली पश्चिम मुंबई। प्रवेश बिल्कुल मुफ्त। आप सभी खुद आए और अपने दोस्तों को लेकर आए।
1: विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन से भी आप सुन रहे हैं कार्यक्रम सदाबहार नगमे। लीजिए अब सुनिए शकील बदायनी का लिखा और नौशाद का संगीतबद्ध किया गाना। आवाज है लता मंगेशकर की, फिल्म का नाम कोहिनूर।

अब आज के इस प्रोग्राम की आखिरी पेशकश मुकेश की आवाज में कटी पतंग फिल्म से। गीतकार हैं आनंद बख्शी और संगीतकार हैं आरडी बर्मन। श्रोताओं, आप सुनिए ये गीत और अपने दोस्त राजेश को आज्ञा दीजिए। नमस्कार।

0: हमें तो गुजरना नहीं जो डगर तेरे द्वार पे जाती न हो उस डगर पे हमें पाँव रखना नहीं जिस गली में तेरा घर न हो बारमां।
1: इस गाने के साथ ही आज का सदाबहार नगमे कार्यक्रम अब समाप्त होता है।

0: pra ele.
1: कार्यक्रम सखी सहेली में सभी सुनने वालों का तहे दिल से स्वागत है। मैं हूं आपकी दोस्त मंदाकिनी जोशी और मेरे साथ हैं
2: आरती श्रीवास्तव।
1: आप सभी को हमारा
2: और मेरा यानी कि आरती श्रीवास्तव का
1: नमस्कार। कैसी हो आरती?
2: बिल्कुल ठीक हूं, बहुत बहुत बढ़िया।
1: हाँ, बिल्कुल चुस्त और दुरुस्त लग रही है और काफी खुश भी नजर आ रही हूँ, क्या बात है।
2: बस थोड़ा सा जब ब्रेक मिल जाता है ना, इतनी ऐसी जो रोज की हमारी दिनचर्या होती है ना, तो फिर अपना एकदम पूरे चार्ज हो जाते हैं हम लोग।
1: क्या बात है, ऐसा कौन सा ब्रेक तुमने ले लिया? हालांकि बहुत दिनों बाद मिली हो और मुझे एक बार तो घबराहट भी हो गई थी कि आरती मुझे कहीं दिखाई नहीं दे रही है, लेकिन जब आज जैसे ही तुम मिली तो मुझे बहुत खुशी हुई।
2: बिल्कुल, ये आपका प्यार है जो आपने मुझे इतना नोटिस किया। और मैं गई थी मतलब बहुत ज्यादा यात्राओं पे।
1: अच्छा,
2: यात्रा की बात तो हम लोग करते रहते हैं, मैंने सोचा जाना भी चाहिए, बात करने से कुछ नहीं होता। तो मैं गई थी इस बार, मैं गई मथुरा, वृंदावन और अयोध्या।
1: अरे वाह,
2: और साथ में बरसानी और आगरा, मतलब जो भी चीजें रास्ते में पड़ती गई हम लोग जाते रहे।
1: क्या बात है, क्या बात है, जब चेहरे की चमक बता रही है और आपकी मुस्कुराहट और हंसी बता रही है कि आप बहुत सुंदर यात्रा करके लौटी है।
2: बिल्कुल,
1: कैसी रही यात्रा और क्या रहा?
2: बहुत बहुत अच्छी रही और बहुत चीजें बदल भी गई मंदाकिनी जी।
1: अच्छा,
2: वहाँ जब हम लोग गए थे तो पहले जैसे बहुत परेशानियां होती थी बरसाना साइड जाने में कि गाड़ी करो, ये करो, उस तब जाओ वहां तक पहुंचो, आपको एक मंदिर है जो वहाँ का प्रसिद्ध, तो लेकिन इस बार था रोप वे शुरू हो गया वहाँ पे।
1: अच्छा,
2: तो बस आप रोप वे तक पहुंची अपनी गाड़ी से या किसी भी ऑटो से, किसी भी चीज से, और उसके बाद बहुत ज्यादा रास्ता भी नहीं है बरसाने का। अगर मथुरा से जाते हैं आप 45 मिनट में पहुंच जाएंगे, उससे भी कम में भी कभी कभी पहुंच सकते हैं 20-25 मिनट में अगर रास्ते में ट्रैफिक नहीं है तो। और रोप वे पकड़िए, सीधे आपको जहां मंदिर है वहीं पे ही उतारता है वो।
1: अरे वाह,
2: और बस आप मुश्किल से 10 कदम चलेंगे मंदिर आ गया।
1: अच्छा अच्छा,
2: हाँ तो बहुत अच्छा हो गया। अयोध्या भी गए तो वहां पे बहुत अच्छा इंतजाम कर रखा है, सिक्योरिटी भी उसी हिसाब से है, लेकिन बहुत अच्छा, बहुत सुंदर इंतजाम किया हुआ है।
1: आपके कहने का मतलब ये है कि अब यात्रा उतनी तकलीफ दे नहीं है। कई बार हम क्या होता है, निकलते तो है यात्रा पर रास्ते हैं या वो सुविधाएं हमें नहीं मिलती है जिससे यात्रीगण परेशान हो जाते हैं, लेकिन अब इतनी सुविधाएं दे दी गई हैं कि यात्रा करने का मजा बहुत ही आता है।
2: बिल्कुल, और लेकिन आप ये भी सोच के जाइए कि जैसे अगर आप मथुरा जा रहे हैं आप, तो अगर आपको वहां मथुरा या वृंदावन में घूमना है तो आपको थोड़ा सा पैदल चलने की आपको आदत होनी चाहिए।
1: हाँ।
2: क्योंकि वहां पे ट्रैफिक की वजह से गाड़ियों को तो पहले ही रोक लेते हैं और आपको पैदल ही जाना पड़ता है, क्योंकि वहां पे ऑटो रिक्शा और जो ई रिक्शा वगैरह चलते हैं उसकी वजह से बहुत भीड़ हो जाती है, ट्रैफिक हो जाता है। इस वजह से जो पैदल चलते हैं यात्री, बहुत से लोग परिक्रमा करते हैं लेट के बैठ के, तो उनको परेशानी ना हो इस वजह से वो रोका जाता है। तो इसलिए आप पैदल चलेंगे तो अच्छी बात है ना, जितना आप पैदल चलेंगे उतना अच्छा है,
1: वो अच्छी बात है। लेकिन ये बात हमारे दिमाग में रहनी चाहिए, जितने भी ये मठ है, तीर्थ जगह है, स्थान है, वहां पर हमें बहुत पहले रोक दिया जाता है ताकि जो हम लोग जा रहे हैं, दर्शक जा रहे हैं या जो भक्त जा रहे हैं, कहने का मतलब वो परेशान नहीं हो और यात्रा जो है सुचारू और शांतिपूर्वक हो जाए। और इस घूमने के जो है ना आरती, बहुत ज्यादा फायदे भी हैं। देखो तुम्हें देखकर लग रहा कितनी फ्रेश नजर आ रही हो, तुमने खुद ही कहा, तो तुम्हारा मानसिक तनाव बिल्कुल दूर हो गया होगा और एक फिजिकल फिटनेस महसूस कर रही होगी, तो
2: बिल्कुल बहुत अच्छा लगता है।
1: और आत्मविश्वास बढ़ा होगा, एक नया दृष्टिकोण आया होगा यात्रा को करने के बाद, इतनी जगह जी के आई हो,
2: इतने लोगों को देखा, सब कुछ किस तरह से लोग जा रहे हैं आ रहे हैं, सब चीजें देखी, बहुत
1: नई संस्कृतियों का अनुभव होता है हमें, नए अनुभव हमारे जीवन से जुड़ते
2: रहे, तरह के व्यंजन मिलते हैं जो मेरा बहुत फेवरेट चीज है। मैं मुझे जगह जगह की जो क्यूजिन होते हैं, जो व्यंजन होते हैं ना, वो खाने में बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि वही चीजें हैं, एक ही चीज है जो यहाँ बनेगी और वो जो वहाँ बनेगी,
1: लेकिन फर्क होता है,
2: बिल्कुल फर्क होता
1: है, क्योंकि पानी का, बनाने वाले का तरीके, तौर तरीके बदल जाते हैं, लेकिन हमारा जो स्वाद लेने का तरीका है वो नहीं बदलता है ना। तो यात्रा करके आपके दिमाग को सुकून मिला है, मैं ऐसा मानती हूँ। और अब जो आपने प्राकृतिक सुंदरता देख ली है, आप फील गुड महसूस कर रही हैं।
2: बहुत बहुत अच्छा महसूस कर रही हूँ मैं अपने अंदर।
1: तो चलिए सखी सहेली में आज हमारे सखी और सखा आपको सुन रहे हैं और वो भी बहुत ही अच्छा महसूस कर रहे हैं, मतलब आपकी यात्रा वृतांत सुनकर हमने मन से इस यात्रा को कर लिया है
2: जी।
1: तो अब एक गीत सुन ले।
2: बिल्कुल सुनते हैं।

0: हो आरती, आपके आने से भी देखो चार चांद लग गए हैं।
1: बहुत प्यारा गीत लगता है
0: जी। बताइए तो देखिए, आप यात्रा में इतनी खो गई कि आप ये बताना भूल गई हैं कि हमारे श्रोता जानना चाहते हैं आज के हमारे विषय क्या है।
1: बिल्कुल सही कह रही हैं, मुझे एकदम ही इतना ज्यादा उत्साह लग रहा था कि मैं बताने ही भूल गई। तो हम बता देते हैं, अभी आज हम बात करेंगे विश्व मधुमक्खी दिवस के ऊपर।
0: अच्छा,
1: तो जो कि बहुत ही जरूरी है हमारे लिए मधुमक्खियां।
0: बिल्कुल।
1: और हम बात करेंगे,
0: काटती बहुत बुरा है,
1: और काट चुकी है मुझे, इसलिए मुझे पूरा उसका एहसास है, पूरा एक्सपीरियंस है। और हम बात करेंगे भाषाओं से किस तरह से जुड़ा हुआ है संस्कार।
0: अच्छा,
1: तो इसके बारे में तो चर्चा करेंगे। साथ ही हम चाहेंगे हमारे जो जितने भी श्रोता है वो सब अपने अपने विचार, अपने अपने जो भी वो सोचते हैं उसके बारे में वो लिख के भेजा, ये बताए कि वो उनको कितनी भाषाएं आती हैं बोलनी।
0: अच्छा ठीक है, यानी शब्द हमारा विचार आपके जो आप सेगमेंट लाई हैं
1: उसके अंदर हम बात करेंगे सद्भावना।
0: सद्भावना, अच्छा, भाषाओं से जुड़े संस्कार में आप बताना चाहती हैं कि जी अपनी अपनी भाषाओं के बारे में हमारे श्रोता हमसे बात करें कि वो किस भाषा को जानते हैं या कितनी भाषाओं की ज्ञाता है। तो फटाफट लिखिए, हमारे सखा और सखियों से हम अनुरोध करते हैं कि जो भाषाओं से जुड़ा संस्कार है इस पर लिखने के साथ साथ ये भी बताइए आपने अब तक कितनी भाषाएं सीखी हैं।
1: जी बिल्कुल,
0: है ना।
1: और हम बात करेंगे आज साड़ियों का संसार, साड़ियों का जो विषय है उसमें हम आज हम लेकर आए हैं तनचोई साड़ी।
0: क्या बात है, क्या बात है। तो आज मुझे पूरी उम्मीद है कि इस बार आप मेरे लिए तनचोई साड़ी लेकर आई है।
1: साड़ी तो मैं खैर नहीं लेकर आ पाई हूँ, लेकिन आपके लिए बहुत सारी मिठाइयां मैं लेकर आई हूँ।
0: बिल्कुल, वो हमें मिल भी गए, है ना
1: जी।
0: और शब्द हमारा विचार आपके में आज सद्भावना पर हम बात करने वाले हैं। देखिए, सद्भावना कहने को बहुत सामान्य शब्द लगता है, सद्भावना होनी चाहिए, लेकिन इसके गहरे अर्थ है। बहुत गहराई में जाकर आप इस पर अपने विचार लिखिएगा और ये भी बताइएगा कि आपके भीतर कितनी सद्भावना है दूसरों के प्रति, है ना। हम लिख तो देते हैं आरती, बड़ी बड़ी बात है कि सद्भावना होनी चाहिए, बहुत जरूरी है जीवन में, लेकिन जब हमारा मौका मिलता है तो पता चलता है कि हमारे अंदर तो सद्भावना है ही नहीं, भावना ही नहीं।
1: अपने विचार लिखें,
0: हाँ,
1: जो चीजें लिखी हुई पहले से उसमें
0: उस पर मत जाइए कि सद्भावना के विषय में क्या लिखा गया, ये बताइएगा कि आप सद्भावना को लेकर क्या सोचते हैं। आपके जीवन में, आपके विचारों में, आपके व्यवहार में कितनी सद्भावना है, या सामने जो आपके लोग आते हैं उनसे आपको क्या सद्भावना रूपी विचार मिलते हैं।
1: बिल्कुल, तो हम बात एक चीज और भूल रहे हैं,
0: व्यंजन, आपका बहुत ही पॉपुलर सेगमेंट
1: जो मुझे बहुत पसंद है। आज हम बात करेंगे ठेकुआ की और दाल पीठा की। दाल पीठा मेरा इतना फेवरेट है ना, मैं बनाती भी हूँ, मैं खाती भी हूँ बहुत।
0: चलिए, तो अगली बार जब आप आएंगी तो लेकर भी आएंगे दाल पीठा, खिलाएंगी भी, ठीक है। तो भाई, हम बात कर रहे थे विश्व मधुमक्खी दिवस की, जिसका हमें डर भी लगता है जब मधुमक्खी पास में छत्ता बना लेती है हमारे घर के आजू बाजू में कहीं, तो हम बड़े डर जाते हैं। एक आध मधुमक्खी उड़ती भी नजर आती है तो बड़ा डर लगता है कि
1: भगाओ भगाओ जल्दी।
0: लेकिन देखिए कितनी बड़ी बात है कि ये दुनिया में अगर मधुमक्खी नहीं रही तो दुनिया के लोग सिर्फ 4 साल तक जीवित रह सकते हैं, और अनाज होगा कि नहीं, इस पर काफी मतलब शोध भी किए गए हैं।
1: बिल्कुल, क्योंकि बहुत ज्यादा जरूरी है अपने हमारे इकोसिस्टम, इस जो हमारे सिस्टम है पूरा पृथ्वी का, उसको चलाने के लिए।
0: बिल्कुल।
1: और हमारे जो एक श्रोता है वो लिखते हैं कि विश्व मधुमक्खी दिवस और मधुमक्खियों के बारे में खास बातें कुछ बताने हैं वो, कि दुनिया की 1/3 खाद्य फसलें पूरी तरह से मधुमक्खियों जैसे पराग जो परागणकों पर निर्भर है, यानी कि वो जो मधुमक्खियां हैं वो उसको पराग को जब लेती हैं और बिखेरती हैं उस पर ही निर्भर करता है। यदि ये ना हो तो हमारे भोजन की प्लेट से अधिकांश फल, सब्जियां और मेवे गायब।

0: हो जाएंगे। मधुमक्खियां आपस में बात करने या भोजन के स्रोत का पता लगाने के लिए एक विशेष प्रकार का वेगल डांस यानी कि नृत्य करती हैं। एक पाउंड लगभग आधा किलो शहद बनाने के लिए मधुमक्खियों के पूरे झुंड को लगभग 20 लाख फूलों का दौरा करना पड़ता है और अंत में मधुमक्खी की 5 आंखें होती हैं, 2 बड़ी मुख्य आंखें और सिर के ठीक बीच में 3 छोटी आंखें। सच में 20 लाख
1: बताइए, तब जाके हमें शुद्ध जो शहद है वो मिलता है।
0: एक बूंद नहीं गिराना चाहिए,
1: बिल्कुल नहीं गिराना चाहिए। और हम सभी को ये भी पता होना चाहिए आरती कि मधुमक्खियां उन पौधों के परागण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं जिन पर हम भोजन के लिए निर्भर हैं। जैसे कि सदियों से मधुमक्खियां जो पृथ्वी पर सबसे मेहनती जीवों में गिनी जाती है और वो मनुष्य को, पौधों को, जैसा कि अभी तुमने बताया हमारे पर्यावरण को लाभ भी पहुंचाती रही है और एक फूल से दूसरे फूल तक वो पराग को ले जाती है और प्रचुर मात्रा में फल, मेवा और बीज भी वो पैदा करती है।
0: जी, हमारे ये श्रोता जो है कितने जानकार हैं, मतलब कितने अच्छी तरीके से उन्होंने इस बात को लिखा हुआ है।
1: बिल्कुल सही कहा इन्होंने, और बल्कि उनकी जो विविधता है और गुणवत्ता में भी सुधार लाते हैं जिससे खाद्य सुरक्षा और पोषण में योगदान होता है, वो पृथ्वी पर जीवन चलते रहने के लिए जरूरी भी होता है। और शहद के बारे में जब हम बात कर रहे थे तो शहद तो उत्पादक होने के अलावा मधुमक्खियां पौधों के निषेचन में मदद करती है और अनगिनत प्रजातियों के प्रजनन को वो सुनिश्चित भी करती हैं। फलों की और सब्जियों से लेकर फूलों और पेड़ों तक हमारे द्वारा जो खाए जाने वाले कितने ही खाद्य पदार्थ हैं वो परागण के लिए मधुमक्खियों पर ही निर्भर है, जैसा अभी तुमने शुरू में बताया था।
0: जी, और मधुमक्खियों के बिना हमारे पारिस्थितिकी तंत्र को नुकसान होगा जिससे जैव विविधता में कमी आएगी और मनुष्यों और वन्य जीवों दोनों के लिए खाद्य सुरक्षा जो है वो खतरे में पड़ सकती है। और विश्व मधुमक्खी दिवस की स्थापना हुई थी संयुक्त राष्ट्र द्वारा 2017 में मधुमक्खियों और परागकर्ताओं के महत्व के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए।
1: बिल्कुल, और हमारे एक श्रोता लिखते हैं कि काफी अच्छी जानकारी इन्होंने दी है कि विश्व मधुमक्खी दिवस 20 मई को मनाया जाता है और इस दिन मधुमक्खी पालन के अग्रणी एंटोन जानसा को 1734 में 32वां दिया गया था। अंतर्राष्ट्रीय दिवस का उद्देश्य जो है पारिस्थितिकी तंत्र के लिए मधुमक्खियों और अन्य पराग कणों की भूमिका को स्वीकार भी करना है। तो अमेरिका में ये पहली बार दिवस मनाया गया और ये पहल मधुमक्खी पालकों, शिक्षकों और शहद प्रेमियों द्वारा मधुमक्खियों की महत्वपूर्ण भूमिका को उजागर करने के उद्देश्य से शुरू की गई थी और उनका लक्ष्य मधुमक्खियों की दुर्दशा के बारे में जागरूकता पैदा करना था और उनके संरक्षण को उनके महत्व पर जोर देना भी था।
0: बिल्कुल, और एक और श्रोता है हमारे जो लिखते हैं कि 20 मई विश्व मधुमक्खी दिवस संयुक्त राष्ट्र के खाद्य एवं कृषि संगठन के अनुसार दुनिया की लगभग 33% खाद्य फसलें और 90% जंगली फूलों वाले पौधे पूरी तरह या आंशिक रूप से परागकों पर निर्भर करते हैं। मधुमक्खियां इस पारिस्थितिकी तंत्र को स्वस्थ रखने का सबसे बड़ा जरिया है।
1: बिल्कुल सही कहा, और देखिए बहुत सारी जानकारी जो हम जुटा के लाए थे वही हमारे शोधा भी बता रहे हैं काफी अच्छा मधुमक्खियों के बारे में। और सबसे बड़ी बात यह है कि जो आज दिवस हम मना रहे हैं ना आरती
0: जी,
1: ये मधुमक्खियों की सुरक्षा के लिए जागरूकता बढ़ाने का एक शानदार अवसर है और मधुमक्खियों को प्रचुर मात्रा में पराग उपलब्ध कराने के लिए मधुमक्खी अनुकूल फूल और जड़ी बूटियां हमें लगानी चाहिए ताकि ज्यादा से ज्यादा वो अपना कार्य कर सके। अपने बगीचों की अगर हम बात करें उन पर पौधों पर कीटनाशकों और रसायनों का उपयोग करने से हमें बचना भी चाहिए क्योंकि मधुमक्खी और अन्य जो लाभकारी कीड़े हैं उनको नुकसान पहुंच सकता है। और साथ ही मधुमक्खी उत्पाद खरीद कर स्थानीय मधुमक्खी पालकों को हम बढ़ावा दे सकते हैं। और इस बार का जो मुख्य विषय रखा गया है वो है प्रकृति से प्रेरित मधुमक्खियां हम सभी का पोषण करती हैं।
0: बिल्कुल, हर बार एक नया विषय के साथ में आते हैं तो इस बार का विषय ये है। और हमारे एक श्रोता है जो लिखते हैं कि फूल और फलों के फलीकरण के लिए मधुमक्खी वाहक का काम करती है, इसलिए मधुमक्खी का अस्तित्व बना रहना इस सृष्टि के लिए बेहद जरूरी है। पेड़ों की डाली के अलावा किसी घर की छत के नीचे छत्ता बना रही मधुमक्खियों से डरने की जरूरत नहीं है, सिर्फ सावधानी बरतनी चाहिए। बिल्कुल, जब तक आप उसे छेड़ेंगे नहीं तब तक
1: वो नहीं करेगी। बिल्कुल,
0: और कि वो आपको डस ना ले, हम मतलब उसको डंक ना लगा दें आपको, हम भी ये कह रहे हैं अगर उसे आप छेड़ेंगे नहीं तो अगर आप उसे छेड़ेंगे तो हमें छोड़ेगी नहीं। पेड़ की डाली पर तेरा छता हो उस डाली के पास से गुजरना नहीं। उन्होंने बड़े मजाक के तरीके से इस चीज को लिखा है।
1: बिल्कुल सही कहा है,
0: और कहते हैं कि 3 साल पहले हमारे घर के ओटीएस के सालियों पर छाता बनाया था, अब इस साल हमारे घर अमरूद के पेड़ के नीचे कपड़े सुखाने के तार पर एक कोने में एक महीन पहले छत्ता बनाना शुरू किया जो आज काफी बड़ा हो गया है और कुछ दिनों बाद बरसात की ऋतु में अपने आप उड़ जाएंगे, ना हम उसे छेड़ते ना वो हमें छेड़ती।
1: बिल्कुल सही कहा। वहीं एक श्रोता लिखते हैं कि विश्व मधुमक्खी दिवस पर ये जरूर बताना चाहूंगी कि हमारी स्कूल बिल्डिंग में अभी अप्रैल में काफी बड़ा सा छत्ता है जिसे बुलवा

0: कर हटवाया गया था। पहले तो हमको बहुत स्थानों पर दिखाई देती थी मधुमक्खी, आप कम दिखती हैं। बचपन में माँ बताती थी कि उस पर बिल्कुल भी पत्थर नहीं फेंकना है, नहीं तो पानी के अंदर जाकर भी वो डंक मार देती है। वो हमेशा बात हमें याद रहती है और मधुमक्खी शहद सी मिठास देती है, ऐसे ही सभी के जीवन में मधुरता बनी रहे।
1: बिल्कुल।
0: तो चलिए अब एक गीत सुन लेते हैं।
1: बिल्कुल सुनते हैं।

0: दे
1: जारी ना बताऊं मैं तो नाम किस चोर का जारी ना बताऊं मैं तो।
2: तो आरती
3: नाम नहीं बताने वाली हूँ
2: भाई, नाम तो हमारे पता ही है हमारे श्रोताओं को।
3: बिल्कुल।
2: तो हम बात कर रहे थे आज की, भाई विश्व मधुमक्खी दिवस है और हमने बात की उनकी मिठास पर और मधुमक्खियों को किस तरह से हमें बचाना है इस पर। और भी बहुत सारी चीजें होती हैं हमारे देश में, हमारी संस्कृतियों से जुड़ी चीजें हैं जहां पर हम बहुत सारी बातों से, बहुत सारी चीजों से, गुणों से जुड़ पाते हैं और उनमें एक है हमारा साड़ियों का संसार।
3: अरे बहुत
2: है ना। और हम महिलाओं को सबसे ज्यादा अच्छी लगती है साड़ियां, और आज हम बात करने वाले हैं तंचोई साड़ी के बारे में।
3: तो तंचोई के बारे में बात करते हैं। तो तंचोई की कहानी 19वीं शताब्दी ईस्वी के मध्य से शुरू होती है और ऐसा माना जाता है कि लगभग 1856 ईस्वी में पारसी व्यापारी सर जमशेद जी जीजी भाई ने सूरत के जोशी परिवार के 3 बुनकरों को चीन भेजा ताकि वो इस विशेष ब्रोकेट रेशम की बुनाई की कला को सीख सके।
2: हाँ बिल्कुल सही कहा आरती। और वापस लौटने पर भाइयों ने अपने चीनी शिक्षक छुई का नाम अपना लिया और उन्होंने रेशम बुनाई की कला जो सिखाई थी। तन शब्द गुजराती शब्द त्रान से मिलता जुलता है जिसका अर्थ 3 होता है और इसी से तीनों भाइयों का नाम लिया जाता है। इस प्रकार जिस रेशम को उन्होंने बनाना सीखा उसे तंचोई के नाम से जाना जाने लगा है।
3: जी, तो उनके शिक्षक का नाम और उनका जो

0: नाम
1: भाई थे।
0: हाँ ठीक है।
1: और बंबई में 1950 के दशक तक तंचोई साड़ियों का उत्पादन जारी रहा, और जब बनारस के बुनकरों ने इन ब्रोकेट को बनाने की कला सीख ली तो उसी कपड़े का उत्पादन बहुत कम कीमत पर शुरू कर दिया गया, और इसी तरह कुछ जटिल बनारसी डिजाइन तंचोई रेशम पर भी दिखाई देने लगे।
0: बिल्कुल सही कहा, तंचोई बुनाई की एक ऐसी तकनीक है जिसमें एक है दो ताने और बाने में 2 से 5 रंग के होते हैं, मतलब जो अक्सर एक ही रंग के होते हैं। और तंचोई साड़ियों की एक और खास बात यह है आरती कि इनके कपड़े की सतह साटन जैसी होती है, और एक जटिल और तकनीकी बुनाई तकनीक है, बहुत मतलब थोड़ा जटिल है ये तकनीक,
1: इसको टाइम लगता है सीखने में, बनाने में
0: मुश्किल है।
1: तो इसमें 1 या 2 ताने और 2 से 5 बाने के रंगों का उपयोग होता है। ये साड़ियाँ बेहद हल्की और पहनने में मुलायम होती हैं। तंचोई की कई अलग अलग किस्में होती हैं, जैसे कि सैटन तंचोई जो कि एक ही रंग के सैटन कपड़े पर, जो सैटन का कपड़ा होता है उस पर आधारित होती है, और इसमें 1 या अधिक रंगों के ताने के धागे इस्तेमाल किए जाते हैं।
0: हाँ, और अतिरिक्त ताने के रंगों को भी मुख्य ताने के रूप में इस्तेमाल किया जाता है। इसके अलावा सैटिन जरी तंचोई, सैटिन तंचोई का एक विस्तारित रूप है जिसमें ताना या तो एक रेशम और एक सोने के धागे का, या 2 रेशम के धागे और 1 सोने के धागे का, इस तरह से इसको बनाया जाता है
1: जी। और इसके साथ एटलस या गिल्ट कपड़े की सतह शुद्ध साटन की होती है। अन्य कपड़ों की तुलना में एटलस या गिल्ट भारी होता है, और जरी के अतिरिक्त उपयोग के कारण इसमें अधिक चमक भी होती है। और मुशब्बर का डिजाइन अपनी जालीदार बुनाई के कारण, ये डिजाइन अपनी जालीदार बुनाई के कारण थोड़ा अलग सा दिखता है।
0: हाँ बिल्कुल अलग लगती है तंचोई साड़ी, और ये झाड़ियों या पेड़ की शाखाओं जैसा भी प्रतीत होता है। मुशब्बर डिजाइन जो है अक्सर जंगल या प्रकृति की हरियाली से जुड़ी है, तो तंचोई जो वस्त्र है वो चटक रंगों से बुने जाते हैं। और बुनाई की तकनीक में कई रेशमी धागों का उपयोग होता है। ब्रोकेट की साड़ियां होती है ना, उसी तरह ब्रोकेट की तरह तंचोई भी साटन बेस को ढकने वाले रंगीन बाने के रेशमी धागों के एक अतिरिक्त सेट का उपयोग करके बनाया जाता है, जिससे विशिष्ट और अनूठे पैटर्न भी बनते हैं।
1: बिल्कुल, और तंचोई साड़ियों में डिजाइन हमेशा उड़ते हुए पक्षियों, फूलों की मालाओं के बीच बैठे मुर्गों की आकृतियों से सजे होते हैं, जो पूरी साड़ी पर फूलों और फूलों से भरी टोकरियों से घिरे रहते हैं। कभी कभी पल्लू पर मोर, टोकरियां, फूलों के गुच्छे या शिकार के दृश्य अधिक सघनता से बनाए जाते हैं। तंचोई रेशमी साड़ियों को कुछ मनमोहक पुष्प, ज्यामितीय और पैस्टल डिजाइन से भी सजाया जाता है।
0: हाँ, बहुत ही अजीब सी एक क्लासिक डिजाइन होती है तंचोई साड़ियों में, और अधिकतर डिजाइन जो है चीनी मूल की होती है, लेकिन उनका जो है अनूठी कलाकृतियां बनाने के लिए भारतीय रूपांकनों को इसमें शामिल कर लेते हैं। और तंचोई साड़ियों पूरे देश में औपचारिक अवसर जो है, या विवाह समारोह के अवसर है, या त्योहार है हमारे, उसमें बहुत ही प्यार से, बहुत ही खुशियों के साथ पहनी जाती है, शौक के साथ पहनी जाती है। और तंचोई रेशम की साड़ियां अपने कपड़े की वजह से शरद ऋतु यानी सर्दी की ऋतु में और सर्दियों के ठंडे महीनों में पहनने के लिए एक अच्छी साड़ी हो सकती है। तो आरती, मैं तो अपनी सखियों से भी कहना चाहूंगी, अगर उनके पास तंचोई साड़ी है तो हमें बताइए किस रंग की तंचोई है, और उन्होंने इसे कब और कहां पहना, और नहीं तो उनके पति देव बता दे कि उनकी पत्नी ने तंचोई साड़ी कितना दिमाग खराब किया होगा।
1: बिल्कुल बिल्कुल,
0: तो लिखिए हमें फटाफट और बताइए तंचोई साड़ी से जुड़ा कोई आपका अनुभव है हमारी सखियों और सखाओं का, तो हम
1: सब शामिल करें। बिल्कुल, तब तक हम सुनते हैं।

0: न डालो सैया आँखियों में मोरी,
1: झुकी झुकी पल के उठा जरा गोरी,
0: आँखियों न डालो सैया आँखियों में मोरी।
1: अब तो मैं जान गया गोरी तेरी चोरी, तेरी आँखों में चार मन देख लिया।

0: तेरी बत्तियां लगे हैं बड़ी प्यारी,
1: नहीं तो तेरे लिए सुख है बेचारी।
0: काहे तेरी बत्तियां लगे हैं बड़ी प्यारी,
1: नहीं भी तो तेरे लिए सुख है बेचारी।
0: इसको ही प्यार कहे दुनिया ये।
2: तो आरती, अब हम एक अंतराल लेना होगा और इस अंतराल के बाद हम फिर से उपस्थित होते हैं।
3: जी बिल्कुल।

0: तो इस अंतराल के बाद हमारे सभी सखियों और सखाओं का स्वागत है।
1: स्वागत है।
0: हाँ दी
1: जी, और अब हम क्या बात करने जा रहे हैं?
0: अब भाई बात तो हम करने वाले हैं कि भाषाओं से जुड़े संस्कार क्या हैं।
1: जी
0: है ना, तो सबसे पहले हमें जानना होगा आरती कि भाषा क्या है।
1: भाषा क्या है?
0: तो भाषा एक साधन है जिसके माध्यम से मनुष्य बोलकर, लिखकर या संकेतों के द्वारा अपने मन के भावों को, अपने विचारों का आदान प्रदान करता है। या दूसरे शब्दों में अगर हम कहें तो ये समाज में एक दूसरे की बात समझने और समझाने का सबसे मुख्य माध्यम है भाषा।
1: बिल्कुल। और हम लोगों ने कहा था कि अपने श्रोताओं से कि आप बताइए कितनी भाषाएं जानते हैं। तो एक हमारे श्रोता है जो लिखते हैं कि मुझे कम से कम 25 भाषाएं आती हैं। इससे मैं इससे अधिक भाषाओं को भी जानता हूं, मुझे 25 भाषा आती है, लेकिन सबसे जो भाषा अच्छी लगती है, जो सबसे खूबसूरत है, तो वो प्यारी भाषा है हिंदी भाषा। और हिंदी भाषा के बराबर उनको, मतलब वो उनको बहुत अच्छी लगती है हिंदी बोलना। वैसे वो 25 भाषाओं को जानते हैं।
0: हाँ, लेकिन आपने 25 भाषाओं के नाम नहीं लिखे। आप बताइए हमें कि आपको कौन सी 25 भाषाएं आती हैं, और थोड़ा सा बताइए कैसे आपने सीखी। इतनी भाषाएं सीखना आसान नहीं होता है, क्योंकि आप जब अपने विचार हम तक भेजेंगे, अपना अनुभव हमसे साझा करेंगे, तो हो सकता है हम भी आज भी कोई भाषा सीखने के लिए चाहत हमारे मन में आ जाए, जिसका हमें डर होता है कि अरे भाई,
1: और कोई आसान तरीका भी हो
0: हमें मिल जाए। तो आप थोड़ा सा बताइए कि आपने कौन कौन सी 25 भाषाएं सीखी हैं और किस तरह से सीखी हैं, और उनका आपके जीवन में कहां कैसे उपयोग हो रहा है, इस पर थोड़ा सा बताइए। तो सबसे बड़ी बात थी, आज हम बात करने वाले हैं कि भी भाषाओं से जो जुड़े संस्कार हैं वो क्या है। तो आरती, क्या कभी हमने सोचा है कि दुनिया के अलग अलग हिस्सों में बोले जाने वाली जो भाषाएं, हजारों भाषाएं, एक दूसरे से इतनी भिन्न क्यों है? है ना, देखने और सुनने में भले ही बिल्कुल अलग लगे, लेकिन हाल ही में एक अध्ययन हुआ, शोध हुआ, उसमें चौंकाने वाला खुलासा सामने आया कि चाहे भाषा कोई भी हो, उनकी बुनियादी संरचना और उन्हें गढ़ने वाले जो नियम है वो आश्चर्यजनक रूप से एक समान है।
1: जी बिल्कुल। और साथ ही ये समानता इसलिए है क्योंकि इन सभी भाषाओं की उत्पत्ति हमारे मस्तिष्क की एक ही प्राकृतिक कार्य प्रणाली से हुई है। और यानी हम मनुष्य चाहे पृथ्वी के किसी भी कोने में क्यों न रहें, हमारे सोचने और अपने भावनाओं को व्यक्त करने का मूल तरीका एक ही गहरे सांचे में ढला हुआ है। यानी अगर हमें दुख होगा तो हम रोएंगे, हमारे आंसू निकलेंगे, चाहे वो कोई अमेरिका में रहने वाला हो, चाहे वो हिंदुस्तान में रहने वाला हो। ये खोज साबित करती है कि हमारी बोलियां भले ही अलग हो, लेकिन हम सभी भीतर से एक ही मानवीय सूत्र से जुड़े
0: हैं। बहुत गहरी बात है आरती, अगर हम इसे समझ पाए तो कितनी बड़ी बात है कि हम भीतर से एक मानवीय सूत्र से जुड़े हुए हैं, है ना। और भाषा का जो सीधा संबंध है वो संस्कार और सभ्यता से होता है। हम अपनी भाषा के संस्कार भूलते अगर जा रहे हैं तो गलत बात है। इसी संदर्भ में भारत के पूर्व राष्ट्रपति और वैज्ञानिक डॉक्टर अब्दुल कलाम साहब के शब्दों का अगर हम यहाँ उल्लेख करते हैं, तो वो कहते हैं कि मैं अच्छा वैज्ञानिक इसलिए बना क्योंकि मैंने गणित और विज्ञान की शिक्षा मातृभाषा में प्राप्त

0: थी बिल्कुल जो वो भाषा जानते थे हाँ। इसमें समझते समझ में आता है ना जिस तरीके से जिस भाषा को जानते हैं
1: इतनी बड़ी बात है। और हमारे मन में क्या रहता है कि अगर हमने अंग्रेजी भाषा नहीं सीखी तो हमने कुछ भी नहीं सीखा है ना। हम मॉडर्न नहीं कहलाएंगे, हमें सम्मान नहीं मिलेगा या हम विकास नहीं कर पाएंगे। लेकिन इतने बड़े वैज्ञानिक और राष्ट्रपति कह रहे हैं कि मैंने अपनी मातृभाषा में गणित और विज्ञान की शिक्षा
0: सीखिए। आप जितनी भाषाएं हो सकते हैं उतनी सीखिए, क्योंकि इससे क्या होता है ना जब हम सीखना शुरू करते हैं भाषाओं को अलग अलग तो हमारा जो मस्तिष्क का वो हिस्सा है ना एकदम से वो एक्टिव हो जाता है
1: बिल्कुल।
0: और उसके बाद ना वो हमारा जो दिमाग है बहुत शार्प हो जाता है जिसकी वजह से हम अच्छे से और भाषाओं को सीख पाते हैं, हम और चीजों को अपने अच्छे तरीके से कर पाते हैं
1: बिल्कुल। आपने तो देखा होगा कई लोग शौक या फ्रेंच भाषा सीखते हैं उनका जीवन में उपयोग नहीं होता है लेकिन शौक होता है कि मैं भाषा सीखता हूँ
0: बिल्कुल।
1: तो आप किसी भी भाषा के ज्ञाता हूँ किसी भी भाषा को सीखते हो लेकिन मन में हीन भावना नहीं रखनी चाहिए कि मुझे वो भाषा नहीं आती है तो मुझे कुछ नहीं आता है।
0: जी बिल्कुल। और भाषाएं केवल संवाद का माध्यम ही नहीं है बल्कि हमारी संस्कृति संस्कारों जीवन मूल्यों और पहचान की सच्ची संवाहक है। मातृभाषा हमें अपनी जड़ों से जोड़ती है और अगली पीढ़ी तक पारंपरिक ज्ञान और संस्कार पहुंचाने का काम करती है
1: बिल्कुल। और आज के दौर की अगर हम बात करें हमारी युवा पीढ़ी की बात करें तो सोशल मीडिया के प्रचलन के कारण भाषा का प्रयोग शॉर्टकट में बिल्कुल होने लगा है जो कि गलत भी है ना बिल्कुल सही नहीं है क्योंकि शुद्ध भाषा ही समाज के संस्कार के विकास की रीढ़ होती है। और ऐसे में युवा पीढ़ी को भाषा का सही प्रयोग करना चाहिए क्योंकि शॉर्टकट भाषा की आदत जो है सोशल मीडिया में काम तो आ जाती है लेकिन जब ये आदत जीवन में आ जाती है आरती तो इसका नुकसान परीक्षाओं से लेकर कई मंचों पर आपको झेलना पड़ता है क्योंकि वहां आपके पास अच्छे शब्द और व्याकरण का अकाल पड़ जाता है
0: बिल्कुल। और एक शोध बताता है कि जो ब्रेन की न्यूरोप्लास्टिसिटी यानी सीखने की जो क्षमता होती है वो जीवन भर बनी रहती है। जरूरी नहीं कि हम इस साल इतने साल के हो गए अब हम क्या सीखेंगे ये कभी मत
1: बिल्कुल। आप जब तक आपकी अंतिम सांस है आप सीख सकते हैं
0: बिल्कुल,
1: चाहत आपके अंदर होनी चाहिए
0: जी। और साथ ही जो व्यस्क सीखना जारी रखते हैं उनमें डिमेंशिया जो होता है मनोभ्रंश वो उसका जोखिम जो होता है वो 46% तक कम होता है। और सीखना केवल शिक्षा नहीं है ये मन की औषधि है यानी पढ़ना सिर्फ डिग्री के लिए नहीं पढ़ना जिंदगी को जीवित जिंदा रहने के लिए।
1: क्या बात है कितनी बड़ी बात है कि केवल डिग्रियां हम धारण कर लेते हैं मैं डबल एमए हूँ ट्रिपल एमए हूँ मैं पीएचडी हूँ है ना
0: जी।
1: मैं एमफिल हूँ ये अच्छी बात है डिग्रियां लेते हैं आप पढ़ते हैं विद्वान बनते हैं बड़ी बड़ी नौकरियों पर हम जाते हैं वो तो है ही जिंदगी का लेकिन इसके अलावा पढ़ना जो है वो जिंदगी को जीवित रखने के लिए कितना जरूरी है। इसलिए आपने देखा होगा बहुत जो साहित्यकार है ना वो लिखते रहते हैं अंत तक उनके लिए कहानी लिखना उपन्यास लिखना कविता लिखना जिंदा रहने का माध्यम होता है
0: बिल्कुल। आप कुछ नहीं तो डायरी लिखना शुरू कर दीजिए आप खुद ही अपने आप को आपको लगेगा कि अरे कितना अच्छा लिखने लगा हूं मैं।
1: जो भीतर बदलाव आता है वो कितना सुंदर होता है ना ये सबसे बड़ी बात है। तो देखते तो हम सभी चीजें हैं आती
0: जी।
1: प्रकृति को आप भी देखती हैं मैं भी देखती हूँ लेकिन आप प्रकृति को किस अंदाज में देखकर क्या लिखती हैं
0: सबका नजरिया
1: मायने रखता है ना। तो भाषाओं को सीखना जारी रखना चाहिए एक ऐसा निर्णय हमें लेना चाहिए कि हम भाषाएं सीखेंगे क्योंकि ये हमारे संवाद कौशल को भी बढ़ाता है और मानसिक क्षमता में वृद्धि भी करता है। और एक से अधिक भाषाएं जानना रोमांचक यात्रा अवसरों के द्वारा द्वार आपको खोल सकता है। आप कहीं भी जाएंगे अगर आपको वहां की भाषा आती है तो आपको उस यात्रा के मजे दोगुने हो जाएंगे
0: बिल्कुल। वहां से आप लोगों से बातचीत कर सकते हैं जैसे कि हम गए थे तो हमने बात करी वहां ब्रिज भाषा
1: अच्छा लगा
0: बहुत अच्छा लगता है। फिर अगर आप जब उनसे उनकी भाषा में बात करते हैं तो और जुड़ जाते हैं आपसे अच्छा ये तो हमारी भाषा बोल रहे
1: तो अपने करीब पाते हैं ना आप
0: बिल्कुल
1: ये हमारे ही लोग हैं और भाषा एक दूसरे को जोड़ती है
0: बिल्कुल जोड़ती है। और इन संवादों से स्थानीय संस्कृति और परंपराओं के बारे में ज्ञान और समझ गहरी होती है। भाषा सीखने से लोगों को अन्य संस्कृतियों से परिचित होने का अवसर मिलता है। इससे किसी संस्कृति के अनूठे दृष्टिकोण बारीकियों और इतिहास उनके जो इतिहास की जो समझ है वो बढ़ती है और हम विभिन्न संस्कृतियों को पहचानते हैं और उनका सम्मान करना सीखते हैं।
1: क्या बात है तो यानी कि भाषा हर कीमत पर हमें सीखनी चाहिए अपनी मातृभाषा के अलावा हमें जितनी भाषाएं हम सीख सकते हो
0: बिल्कुल
1: हमें सीखनी चाहिए। इसके लिए प्रेशराइज नहीं होना प्रेशर नहीं पालना
0: बिल्कुल
1: लेकिन शौक रखना चाहिए
0: अपने मन से सीखिए आपको खुद अच्छा लगेगा कि मैं कितने अच्छी तरह से नए नए शब्द मुझे पता चल रहे हैं नई नई चीजें
1: की वोकैबुलरी बढ़ती है आपका व्याकरण सुधरता है आप कॉन्फिडेंस के साथ अपनी बात कहने का दम रखते हैं किसी मंच से जब आप अपनी बात रखते हैं तो वो भाषा ही आपके काम आती है वो शब्द ही आपके काम आते हैं और आपकी पर्सनालिटी को दोगुना कर देते हैं
0: जी। जब कोई जब कहता है ना कि मुझे इतनी भाषा आती तो हम सच में एकदम से कहने से कैसे इतनी भाषा
1: हम चौंक जाते हैं और हमारी दृष्टि में उसके प्रति सम्मान और बढ़ जाता है देखने का जो नजरिया है वो एकदम बदल जाता है जब हमें कोई बताता है कि वो इतनी भाषाओं का ज्ञाता है। तो भाषा इतना मायने रखती है जिंदगी में और इस

0: भाषा को शॉर्टकट मत अपनाइए, इस भाषा को विकृत मत कीजिए, है ना, भाषा को शुद्ध तरीके से जानिए। हाँ, कभी कभार मजाक में हमने कोई शॉर्टकट इस्तेमाल कर लिया, वो एक अलग बात है, लेकिन भाषा से तोड़ मरोड़ अच्छी नहीं होती।
1: बिल्कुल।
0: तो ये गीत सुन ले।
1: बिल्कुल सुनते हैं।

जगत की और किसकी नगरिया मन भाई, कौन डगर पर तू भटकी, घटा लाई क्या छुपा के, घटा लाई क्या छुपा के, बिन तारे बदरा के कैसी बरस गई बरसात, ये तो बतला सुन।

0: झुकी झुकी है नजर, झुकी झुकी है नजर, हुआ जादू का असर, किस गली की है ये करामात, ये तो बतला।
1: हाँ तो मंदाकिनी जी, जब हम जब बात कर रहे थे मधुमक्खियों की, तो उस पे एक शोधा जो है उन्होंने हमें लिख के भेजा है, अपने उनके साथ में जो घटना हुई वो लिख के भेजी है उन्होंने। तो वो लिखती है कि जब मैं प्राइमरी स्कूल में पढ़ती थी, तब मेरा छोटा भाई, जब मुझे लगभग 6 साल छोटा है, मेरे साथ स्कूल में खेल रहा था। हमारे गाँव के स्कूल में पीपल के बड़े बड़े पेड़ थे और उन पेड़ों पर मधुमक्खियों के विशाल छत्ते लगे रहते थे। खेलते समय किसी ने शरारत में एक छत्ते पर पत्थर मार दिया, इसके बाद मधुमक्खियों ने अचानक हमला कर दिया और मेरे छोटे भाई को कई मधुमक्खियों ने काट लिया और उसके बाद उसके पूरे चेहरे, हाथ पैर में बहुत ज्यादा सूजन आ गई। हालत इतनी खराब हो गई कि उसे उल्टियां भी होने लगी। उस दिन का दृश्य आज भी मेरी आंखों के सामने आ जाता है और मैं अंदर से डर जाती हूँ।
2: बिल्कुल सही कहा आपने, और क्योंकि आपने उनको छेड़ दिया ना, जब आप किसी को छेड़ोगे तो वो भी तो अपना कुछ ना
1: वो
2: कुछ
1: तो उनको तो लगेगा ना कि हम पे हमला हो रहा है, तो
2: वो भी तो सुरक्षा महसूस करती है ना। इस बात को हम नहीं समझ पाते, हमें लगता है मधुमक्खी तो भी काट लेती है, लेकिन वो क्यों काट रही है
1: जी,
2: उसके पीछे का लॉजिक समझ आया ना, आपने पत्थर मारा और उसने पलट कर बदला ले लिया।
1: बिल्कुल,
2: तो हमें इस बात का बचाव करना है कि पत्थर
1: पानी पे भी अगर आप पत्थर मारेंगे तो
2: उछल कर आप पर आएगा, आप कीचड़ में पत्थर फेंकेंगे तो उछल कर आप पर आएगा। तो ये कहने का मतलब है कि आप कहीं भी किसी भी तरह की कोई शरारत जब करते हैं, प्यारी शरारत करिए, मीठी शरारत जैसे हम करते हैं, लेकिन गलत तरीके से अब हम काम करते हैं तो उसके थोड़े से दुष्परिणाम,
1: और ये बहुत खतरनाक भी हो जाता है, क्योंकि अगर बहुत ज्यादा काट लिया तो बहुत ज्यादा अगर जहर फैल जाता है ना तो जान भी बनाती है।
2: बिल्कुल सही कहा आपने, ततैया होता है, मधुमक्खी होती है, सांप है, ये सब अपना रास्ते जा रहे हैं, अगर आपने इनको छेड़ दिया
1: बिल्कुल
2: ऐसी ततैया भी बहुत बुरा काटता है, ये रंग का होता है ना, वो भी कहीं ना कहीं बैठ जाता है और अचानक आकर आप पर हमला कर देता है।
1: बिल्कुल
2: है ना। तो चलिए भाषा पर बात कर रहे थे, तो हमारे श्रोता लिखते हैं कि भाषा केवल विचारों के आदान प्रदान का माध्यम नहीं, बल्कि हमारी संस्कृति, जीवन मूल्यों और संस्कारों की संवाहक है। हम जिस परिवेश और भाषा में बड़े होते हैं, उसी से हमारे आचरण, शिष्टाचार और सोच का निर्माण होता है। मातृभाषा हमें अपनी जड़ों से जुड़े रखती है, सिखाती है कि बड़ों से बात करते समय आदर सूचक शब्दों का प्रयोग कैसे किया जाता है
1: जी। और एक श्रोता, जैसे हमने पूछा था ना कि कितनी भाषा आती है, तो एक हमारे श्रोता है जो लिखते हैं कि मुझे इंग्लिश, हिंदी और प्यार की भाषा बोलनी, लिखनी और पढ़नी आती है, और सिंधी भाषा सिर्फ बोलनी आती है, संस्कृत भाषा लिखनी और पढ़नी आती है, और सखी सहेली की सखी यानी कि मेरी धर्मपत्नी मेरे से एक कदम आगे हैं, उन्हें इंग्लिश, हिंदी, सिंधी और प्यार की भाषा पढ़नी, लिखनी और बोलनी आती है, और संस्कृत भाषा लिखनी और पढ़नी आती है। बहुत बहुत ही ज्यादा भी ज्ञानी है फिर आपकी पत्नी तो।
2: चलिए अच्छी बात है, लेकिन सबसे बड़ी बात है आपने कहा प्यार की भाषा, जो मोहब्बत है ना
1: बहुत बड़ी भाषा,
2: सबसे बड़ी बात है। भाषाएं तो आपने सीख ली, लेकिन अगर आपके भीतर प्यार नहीं है, मोहब्बत नहीं है, प्रेम नहीं है, तो वो सब भाषाएं भी रूखी हो जाती है।
1: बिल्कुल
2: है ना। एक श्रोता लिखते हैं कि भाषा सिर्फ संवाद का माध्यम नहीं, बल्कि संस्कार, संस्कृति और आचरण का आईना है। ये हमारे विचारों को आकार देती है, हमारे परिवेश और जीवन मूल्यों को दर्शाती है। एक सभ्य और मर्यादित भाषा का प्रयोग ही वास्तव में भाषा से जुड़े संस्कार को दर्शाता है, जो व्यक्ति के व्यक्तित्व का निर्माण करता है
1: जी। और एक और श्रोता है जो लिखते हैं कि मुझे हिंदी के अलावा गुजराती और इंग्लिश आती है, और गुजराती सीखना आसान रहा। और एक और श्रोता है जो लिखते हैं कि मुझे गुजराती, मराठी, हिंदी, इंग्लिश आती है, थोड़ी बहुत पंजाबी और सिंधी आती है, वैसे 2-3 और भाषा थोड़ी थोड़ी समझ भी सकती हूँ। बहुत अच्छी बात है, कितने देखिए तभी कह रहे श्रोताओं की विचार है ना, वो विचार इस वजह से भी है कि उनको तरह तरह की भाषाओं का, शब्दों का, व्याकरण का ज्ञान है, तो वो जो उनके अंदर चीजें ना वो विचार सामने आते हैं।
2: बिल्कुल देखिए, यही हम जानना भी तो चाहते हैं कि हमारे श्रोता क्या विचार अपने रखते हैं अपनी भाषाओं को लेकर, अपने विचारों को, जो उनके विचार है जिंदगी में। वही एक श्रोता लिखते हैं कि भाषाओं का संसार अत्यंत विशाल है, विविधतापूर्ण और जीवंत है। वर्तमान में दुनिया भर में लगभग 7,000 से अधिक जीवित भाषाएं बोली जाती हैं, और यह न केवल संवाद का साधन है बल्कि संस्कृति, इतिहास और मानव पहचान को जीवित भी रखती हैं। और बाकी जैसा आपने लिखा कि वो लिखते हैं गुजराती, मराठी, हिंदी, इंग्लिश, पंजाबी, सिंधी, 2-3 भाषाएं थोड़ी थोड़ी समझती भी हैं और बोलती भी हैं, तो बहुत अच्छी बात है
1: जी।
2: बिल्कुल। और
1: एक और हमारे श्रोता है जो लिखते हैं कि भाषा किसी भी समाज की संस्कृति का दर्पण होती है, हमारी मातृभाषा ही हमें बड़ों का आदर करना सिखाती है, जैसे कि आप कहकर बुलाना, छोटों को प्यार देना और अतिथि देवो भव जैसे सामाजिक मूल्य सिखाती है, और साथ ही क्षेत्रीय भाषाओं और मातृभाषा में जो अपनापन और आत्मीयता होती है वो किसी अन्य विदेशी भाषा में संभव नहीं है। यही जुड़ाव हमें अपनी पारिवारिक जड़ों से बांध कर रखता है, और हमारी भाषाएं विशेष रूप से संस्कृत और हिंदी वेदों, उपनिषदों और पुराणों का ज्ञान समेटे हुए हैं। ये ग्रंथ हमें जीवन जीने की सही कला, नैतिकता और कर्म के सिद्धांत मंत्री सिखाते हैं।
2: हाँ बिल्कुल सही कहा आपने, लेकिन हमें किसी भी भाषा के बारे में कोई भी नकारात्मक टिप्पणी नहीं करनी।
1: भाषा भाषा है,
2: विदेशी भाषा ऐसी है या देशी भाषा,
1: अगर आपको वो भाषा नहीं आएंगी तो, अगर आपको कहीं बाहर जाना है या कोई बाहर से कोई हमारे अतिथि आता है तो हम उससे बात कैसे कर पाएंगे।
2: चलिए आपको भाषा नहीं भी आती, आप नहीं भी सीख पाए, लेकिन भाषा भाषा है, हमें हर भाषा का,
1: भाषा कभी बुरी नहीं,
2: हमें वैश्विक भाषाएं जितनी भी हैं उन सभी का सम्मान करना चाहिए।
1: जी
2: एक गाना सुन लेते हैं।
1: बिल्कुल सुनते हैं।

0: हाँ तो आरती भाई, हमारे श्रोताओं ने तो बहुत ही अच्छे तरीके से अपनी बात कही कि किस तरह से भाषाओं से जुड़े संस्कार हमारे काम आते हैं, और इसी के साथ हमने एक और सेगमेंट रखा उनके लिए कि शब्द हमारा और विचार आपके, और आज का विषय था सद्भावना।
1: तो उस पर भी बहुत सारे हमें कमेंट्स आए हैं। तो एक श्रोता है जो लिखते हैं कि सद्भावना का अर्थ है अच्छी भावना, शुभ विचार या भलाई की चाह, और इसका मतलब किसी व्यक्ति या समाज के प्रति प्रेम, सहानुभूति, सहयोग और निष्पक्ष रहने का सच्चा इरादा रखना है जिसमें कोई द्वेष या स्वार्थ ना हो।
0: बिल्कुल सही लिखा। और वहीं एक श्रोता ने लिखा है कि सद्भावना यानी अच्छी नीयत, दूसरों के प्रति शुभ भावना और परोपकार। जब किसी व्यक्ति के मन में दूसरों के लिए प्रेम, दया, सहानुभूति और सहयोग की भावना होती है तो वो किसी का बुरा नहीं सोचकर उसकी भलाई चाहता है, तो उसे सद्भावना कहते हैं। और साधारण बोलचाल में किसी के साथ निष्पक्ष और मैत्रीपूर्ण व्यवहार रखना जिसमें कोई छल, कपट या द्वेष न हो, सच्चाई और ईमानदारी का इरादा, बिना किसी को धोखा देने के भाव से कोई कार्य करना इसमें आता है।
1: बिल्कुल। और श्रोता जो लिखते हैं कि सद्भावना का अर्थ है अच्छी भावना, अच्छे और उच्च विचार, मन में बसने वाली वो सुंदर भावना है जो प्रेम, सम्मान और अपनापन बढ़ाती है। जहाँ सद्भावना होती है वहाँ रिश्तों में मिठास, समाज में शांति और जीवन में खुशी बनी रहती है।
0: बिल्कुल सही कहा। और एक श्रोता लिखते हैं कि सद्भावना जीवन को सरल और रिश्तों को मधुर बनाने का एक महत्वपूर्ण मानवीय गुण है। और वहीं एक श्रोता ने लिखा है कि आज के समय में जहां समाज में विभाजन और असहिष्णुता बढ़ रही है, वहां सद्भावना की प्रासंगिकता बहुत अधिक है। ये विभिन्न संस्कृतियों और विचारधाराओं को आपस में जोड़ने का काम करती है। वसुधैव कुटुंबकम, पूरी धरती ही परिवार है, इस भारतीय सोच सद्भावना पर ही टिकी है। ये जो भारतीय सोच है इसी सद्भावना पर टिकी है, और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर युद्ध और विवादों को सुलझाने के लिए देशों के बीच में भी सद्भावना का होना अनिवार्य है।
1: बिल्कुल। और एक श्रोता है जो लिखते हैं कि एक ऐसी मानसिक अवस्था है जो ईर्ष्या, द्वेष और स्वार्थ से मुक्त होती है और मानवता, प्रेम, करुणा और भाईचारे को बढ़ावा देती है। सद्भावना केवल एक नैतिक गुण नहीं है बल्कि एक शांतिपूर्ण और प्रगतिशील समाज के निर्माण की बुनियादी जरूरत है। जब हमारे विचार शुद्ध होंगे तभी समाज का कल्याण संभव है।
0: बिल्कुल सही कहा आपने। और अभी तो हमने ये भी जानना चाहा था कि आपके अंदर सद्भावना कितनी है, ये भी बताइएगा। लिखा है हमारे श्रोताओं ने कुछ आरती, ऐसा कोई विचार आया है किसी का?
1: अभी तो सबने यही चीज लिखी है कि सद्भावना के जो
0: क्या है, हाँ, वो क्या है। हाँ, वही एक श्रोता लिखते हैं कि सद्भावना अच्छे विचार, दूसरों के प्रति भलाई की भावना, प्रेमपूर्ण व्यवहार, और ये किसी के मन में दूसरों के लिए ईर्ष्या, द्वेष या बैर का भाव नहीं रखकर आपसी भाईचारा और सहयोग बनाए रखने की एक स्थिति है। और सद्भावना जीवन को सरल और रिश्तों को मधुर बनाने का एक बहुत ही महत्वपूर्ण मानवीय गुण है।
1: बिल्कुल। और एक हमारे जो श्रोता है वो लिखते हैं कि जहाँ सद्भावना होती है वहाँ झगड़े कम और प्रेम अधिक होता है, इसलिए प्रत्येक व्यक्ति को अपने जीवन में सद्भावना अपनानी चाहिए। और उन्होंने उदाहरण भी दिया है कि यदि हमारे पड़ोसी पर कठिन समय आए तो हमें उसकी सहायता करनी चाहिए।
0: ये तो आपने बिल्कुल सही कहा, पर आपने ये नहीं लिखा कि क्या ऐसा कोई कठिन समय आपके पड़ोसी पर आया था और आपने कोई उनकी सेवा की थी, है ना, ध्यान दिया था उनका।
1: बिल्कुल,
0: ये भी लिखते तो हमें अच्छा लगता। वही एक श्रोता लिखते हैं कि दूसरों के प्रति मन में स्नेह, आदर और सहानुभूति रखना ही सद्भावना है। इसमें जाति, धर्म या वर्ग के भेदभाव के बिना सभी के कल्याण की कामना होती है, और समाज में आपसी भाईचारे और शांति को बनाए रखने के लिए ये बहुत मूल्यवान है।
1: जी बिल्कुल। और आप हमें गीत सुन लेते हैं।
0: अब मूल्यवान तो एक गीत ही है।
1: जी

तुमको घर ऐतबार आ जाए, जिंदगी में बहार आ जाए।

0: हाँ तो आरती, अब हम कार्यक्रम के बिल्कुल आखिरी सोपान तक पहुंच चुके हैं और अब हमारे श्रोता या क्या कर रहे हैं, व्यंजन की
1: बिल्कुल
0: प्रतीक्षा।
1: और हम बता देते हैं उनको दाल पीठा की रेसिपी क्या है। तो दाल पीठा बिहार और उत्तर प्रदेश का व्यंजन है, जिसमें जो चावल के आटे और दाल आमतौर पर चना मूंग और उड़द से बनाया जाता है। भाप में पके होने के कारण ये बेहद स्वास्थ्यवर्धक और स्वादिष्ट होता है। उन्होंने बताया इसके बारे में, और इसमें उन्होंने कहा है कि इसे भाप में पकाया जाता है जिसमें तेल या घी का उपयोग ना के बराबर होता है। सर्दियों के मौसम में, विशेषकर पौष के महीने में, बिहार के घरों में बड़े चाव से बनाया जाता है। पुजही पीठा सिर्फ दाल से ही नहीं, तरह तरह के भरावन, भूनी मूंगफली, तिल, मावा, गुड़, नारियल, इन सब चीजों से बनाया जाता है। और इन्होंने जो ठेकुआ है उसकी भेजी है रेसिपी, तो उसमें गेहूं का आटा चाहिए 2 कप, गुड़ 1 कप और बारीक कटा हुआ कद्दूकस किया हुआ होना चाहिए गुड़, घी मोयन के लिए 3-4 बड़े चम्मच सूखी नारियल, 2-3 बड़े चम्मच बारीक कटा या कद्दूकस किया हुआ होना चाहिए, और सौंफ 1 छोटा चम्मच, इलायची पाउडर 1 छोटा चम्मच एक होना चाहिए, आधा छोटा चम्मच, और पानी और आधा कप गुड़ पिघलाने के लिए, और फिर तेल या घी तलने के लिए, और आवश्यकता अनुसार बनाने की विधि है। एक गुड़, पहले आप गुड़ का पानी तैयार करें, 1 बर्तन में गुड़ और आधा कप पानी डालकर धीमी आंच पर पिघला लीजिए उसको गुड़ को, और चाशनी नहीं बननी चाहिए उसकी, सिर्फ गुड़ को पानी में घुलने देना है और इसे ठंडा होने दीजिए, और फिर छलनी में से छान लीजिए, जो भी गंदा होगा वो निकल जाएगा। आटे का मिश्रण बनाएं, 1 बड़े कटोरे में गेहूं का आटा लें, उसमें सूजी कुरकुरेपन के लिए सौंफ, इलायची पाउडर और कसा हुआ नारियल डालें, मोयन डालें। अब आटे में 3-4 चम्मच पिघला हुआ घी डालें, आटे को दोनों हाथों से अच्छी तरह से रगड़ें, जब आटा मुट्ठी में बंधने लगे तो समझ लीजिए मोयन जो है वो एकदम सही है। अब आटा गूंथ लीजिए और छने हुए गुड़ के पानी को थोड़ा थोड़ा डालकर सख्त आटा गूंदना है इसका, मुलायम नहीं होना चाहिए, इसे ज्यादा मुलायम नहीं करना है। और आटे की छोटी छोटी लोइयां बनाइए और सांचे पर थोड़ा सा तेल लगाकर लोई को दबाएं और मनचाहा डिजाइन बना लीजिए। अगर सांचा ना हो तो हाथ से भी आप कांटे की मदद से भी बना सकते हैं, और धीमी आंच पर तल लीजिए आपका जो तेल में या घी में, तो सुनहरा होने तक तल लीजिए, फिर आराम से निकाल के खाइए।
0: तो आपने इतनी जल्दी में बताया है मुझे, तो भाई आरती बनाना आया ही नहीं है, मुझे लगता है हमारे श्रोता जिनको ठेकू और दाल पीठा बनाना आता है वो आराम से बनाएंगे
1: बिल्कुल, और रेसिपी आपको वहाँ पेज पर मिल जाएगी।
0: तो बनाने की मैं भी
1: समय की कमी की वजह से हमें थोड़ा सा जल्दी
0: बनाना पड़ा। तो चलिए अब सखी सहेली कार्यक्रम से मंदाकिनी जोशी
1: और आरती श्रीवास्तव को दीजिए इजाजत,
0: नमस्कार।
1: सखी सहेली की पुस्तकर्ता अनुश्री पाठक।
2: सखी सहेली।

0: आज के मेहमान
1: स्वागतम आनंद मंगल मंगल प्रिय।

0: आज के मेहमान कार्यक्रम में श्रोताओं आज लीजिए सुनिए जाने माने शायर और विविध भारती के भूतपूर्व केंद्र निदेशक राजेश रेड्डी से यूनुस खान की बातचीत का दूसरा और अंतिम भाग।
1: राजेश रेड्डी एक जाने माने शायर जिनकी गजलों का हर शेर खरा होता है। वो लिखते हैं, शाम को जिस वक्त खाली हाथ घर जाता हूं मैं, मुस्कुरा देते हैं बच्चे और मर जाता हूं मैं। राजेश रेड्डी अपने समय और समाज की आवाज भी बन जाते हैं। जुबां खामोश है डर बोलते हैं, अब इस बस्ती में खंजर बोलते हैं। राजेश रेड्डी की शायरी में जिंदगी का फलसफा छलक छलक पड़ता है। वो लिखते हैं, ये जो जिंदगी की किताब है, ये किताब भी क्या किताब है, कहीं एक हसीन सा ख्वाब है, कहीं जानलेवा अजाब है। जिंदगी के डर, जिंदगी की उदासी और जुल्मतों को वो अपनी लेखनी में पिरो देते हैं। घर से निकले थे हौसला करके, लौट आए खुदा खुदा करके। जिंदगी की नाकामियां, उदासियां और विडंबनाएं भी राजेश रेड्डी की लेखनी में नजर आती हैं। जिंदगी तूने लहू लेके दिया कुछ भी नहीं, तेरे दामन में मेरे वास्ते क्या कुछ भी नहीं। राजेश रेड्डी वो शायर हैं जिन्होंने बड़ी ही मशहूर गजल लिखी जिसे पंकज उधास ने गाया, यहां हर शख्स हर पल हादसा होने से डरता है, खिलौना है जो मिट्टी का फना होने से डरता है। कई वर्षों तक राजेश रेड्डी विविध भारती के हेड रहे। उन्होंने विविध भारती को नई ऊंचाइयों तक पहुंचाया। जाने माने शायर और विविध भारती के हमारे पुराने साथी राजेश रेड्डी विविध भारती के स्टूडियो में मौजूद हैं और मैं उनका बहुत बहुत स्वागत कर रहा हूं।
2: बहुत बहुत शुक्रिया यूनुस और विविध भारती पूरे परिवार को। इस पूरे परिवार से बरसों बाद 13-14 साल बाद एक मुलाकात हो रही है, बहुत अच्छा लग रहा है। और विविध भारती के श्रोताओं से भी इस बहाने मिलना होगा। बहुत बहुत शुक्रिया यूनुस विविध भारती परिवार को।
3: मुझे ऐसा लग रहा है जैसे अभी वो जमाना लौट आया जब आप विविध भारती के मुखिया हुआ करते थे और ढेर सारे काम हम लोग मिलकर एक साथ किया करते थे।
2: वो बहुत प्यारा जमाना था और एकदम तुमसे मिलके और विविध भारती में आने के बाद वो जमाना फिर एकदम तरोताजा हो गया और वो ऊर्जा, वो उत्साह, वो उमंग और श्रोताओं के साथ वो लगाव एकदम आंखों के सामने आ गया। जी खुश हुआ जी।
3: क्या बात है सर। बातें हो रही जयपुर के जमाने की और आपने बताया कि न केवल आपने नाटक किया बल्कि वहां एक कंपोजिशन वाला मामला भी लगातार चलता रहा और अलग अलग कार्यक्रमों की अपनी योजना भी चलती रही, तो एक तरह से आपका वो रचनात्मक उत्कर्ष का पूरा दौर था। जयपुर के बाद आप यात्रा जीवन की आपको कहां ले गई?
2: जयपुर के बाद मेरा ट्रांसफर जो है 5 साल पूरे हो जाने के बाद
3: जी
2: अल्मोड़ा हुआ।
3: अरे गजब, पहाड़ों पर।
2: पहाड़ों पर। और मेरे जीवन का वो सबसे कष्टप्रद, मतलब यूं नहीं, मतलब मुझे अल्मोड़ा स्टेशन शुरू होने वाला था उस वक्त।
3: अच्छा।
2: तब तक शुरू नहीं हुआ था
3: जी।
2: जो शुरुआती स्टाफ भेजा जाता है ना, तो उनके से मैं प्रोग्राम की तरफ से मैं था, फिर इंजीनियर्स थे, तो सेंटर तब तक शुरू नहीं हुआ था, हमको जाना था। तो लेकिन मैं मैदान पे रह इतना आदि था और होमसिक तो मैंने बताया था शुरू से, तो वो पहाड़ों की जिंदगी मेरे लिए बहुत कठिन थी, मतलब और परिवार भी था, बच्चे बच्ची छोटी थी तब, तो अब लगता है कि यार मूर्खता की, तुम जल्दी चले आए वहां से। अच्छा था वो
3: जी।
2: वो एक अलग अनुभव था
3: जी।
2: तो एक तो यह कि स्टेशन शुरू नहीं हुआ था, काम भी उतना नहीं था, आपको सिर्फ जाना है और प्लानिंग करनी और तो कब होगा ये सब तय होना है सारा। लेकिन वो वहां चलते चले जाओ उतरते जाओ, चढ़ते जाओ, तो ये सब था। और जो आदमी पहली बार गया हो तो उसके लिए बहुत मुश्किल है, भूलने जाओ तो अलग बात है
3: जी।
2: लेकिन आपको रहना हो और जो कभी रहा ना हो, कभी रहा ना हो, तो वो उसके लिए हो, तो वो कठिन दौर था लेकिन गुजरा। और मैं एक साल के बाद ही वापस आ गया वहां से, उसके बाद फिर बॉम्बे आया।
3: अच्छा,
2: 86 में।
3: क्या बात है। तो ये तो पंत जी का शहर था, पंत जी का इलाका था, तो वो तमाम चीजें
2: और वो भी सब भी देखा मैंने, वो पंत जी, अज्ञे जी वहां पर है और रविशंकर जी का वहां पे वो था,
3: बिल्कुल
2: ये सब भी
3: उदय शंकर जी का,
2: उदय शंकर जी का। तो वो सब भी देखा, घुमा फिरा भी, सब अच्छा भी लगा वो सब
3: जी।
2: कि ये सब, लेकिन मैं तो हैरान होता था कि यहाँ ये लोग कैसे
3: रहते कैसे।
2: उस वक्त वाकई हैरान होता था मैं,
3: जो
2: लगता था कि जिंदगी तो मैदान में ही है।
3: बिल्कुल।
2: तो ये था
3: मुंबई, 80 के दशक की मुंबई बहुत ही अलग तरह का मामला था। आप जैसे जयपुर शहर से आ रहे थे क्योंकि वहां के पले बढ़े हैं, पैदाइश नागपुर की, तो मुंबई आपके लिए एक बहुत बड़ा दायरा था, बहुत बड़ा क्षितिज था। पहला अनुभव क्या था मुंबई का?
2: नहीं, पहला अनुभव तो यही था कि एक तो ये तो सपनों की नगरी थी
3: जी,
2: फिल्मों में देखा ही देखा था और सब कुछ था। आज तो खैर हालत ही खराब है, उस वक्त 86 में जब हम आए थे तो अच्छी खासी भीड़ तो मुंबई में हमेशा रही है।
3: बिल्कुल, बिल्कुल।
2: ये भीड़ भाड़ वाला शहर है तो हर सपना देखने वाला यहाँ आता है और काम ढूंढने वाला यहाँ आता है। तो फिर यहाँ आने के बाद वो बसों का सफर, लोकल ट्रेनों का सफर, एक अलग ही दुनिया थी। लेकिन था कि कुछ लगा था कि मुंबई में कुछ होगा और अच्छा लगेगा, और वो धीरे धीरे जिंदगी ढलती चली गई उस हिसाब से। हम शुरू में एंटोपिल में रहे, गवर्नमेंट कॉलोनी वहां पे थे, तो 11-11 महीने का जो किराया होता है उस पे वो उस पैटर्न पे रहे, और अलॉट होने का सॉल्यूट था, हम तो फ्रेश थे एकदम।
3: बिल्कुल, और तब तो लंबी लाइनें
2: हुआ करती थी। तो चीजें कॉलोनी जो एंटोपिल की थी वहां रहे, और फिर वहां से बस पकड़ना, फिर इधर आना एंटोपिल से किंग सर्कल आना वहां पैदल
3: जी,
2: फिर ट्रेन पकड़ना, फिर चर्च गेट, तो ये सब सिलसिला चलता रहा। लेकिन थोड़ा उस वक्त शुरुआत में लगा, लेकिन फिर औरों की तरह से फिर हमको भी वो जिस दिशा में उतरना उस दिशा में खड़े होने की आदत हो गई।
3: मुंबई शहर आपको अपने हिसाब से ढाल लेता,
2: तो फिर वो लोग अपने आप आपको उतार देते हैं
3: जी, जी।
2: तो ट्रेन में ये हुआ कि उस दिशा में मुंह पे खड़े हो जाओ
3: जी,
2: उतार देंगे लोग,
3: लोग उतार देंगे जी। तो मुंबई शहर में एक बड़ा आकाश आपको मिला, और जाहिर है कि उस समय तक तो कवि सम्मेलन भी हो रहे थे, रेडियो भी चल रहा था, तो जिंदगी किस तरह से बदली और यहाँ लिखने पढ़ने का दौर किस तरह से आगे बढ़ा?
2: यहाँ जो जिंदगी बदली वो मेरी उस वक्त गजल गायकी
3: चरम पर थी,
2: चरम पर। फिल्म संगीत जितनी पॉपुलर थी
3: जी,
2: मतलब जगजीत सिंह, पंकज दास, मेहंदी हसन, गुलाम अली, ये सब सुपर हीरो हुआ करते थे। मतलब अनूप जलोटा, इनके कैसेट जो है घरों घरों में चलते थे, बजाए जाते थे, मोहल्लों में मतलब चलते थे, शादियों फंक्शनों में भी ये उस वक्त चीजें बजाया करते थे लोग, तो इतनी पॉपुलर नॉन फिल्म म्यूजिक कहना चाहिए। तो वो दौर था जिस वक्त मैं बॉम्बे में एंटर हुआ था, और नेचुरली जो गजल का शायर होगा उसकी पहली ख्वाहिश होगी कि जगजीत सिंह तक किस तरह से पहुंचो,
3: बिल्कुल,
2: और वो उन तक मेरे शब्द भी पहुंचे। तो यहाँ आने के बाद तो ये सिलसिला चलता रहा, और लेकिन जगजीत सिंह साहब से पहले मेरी भूपेंद्र जी से बात हुई।
3: अच्छा, अरे वाह वाह, मुझे ये पता है क्योंकि अब हमने साथ में काम किया है और मैं आपके करीब भी रहा हूँ कि भूपेंद्र सिंह की आवाज से आपको बेपनाह प्यार रहा है,
2: बहुत प्यार,
3: बल्कि हमने उनको बुलाने की बहुत भरसक कोशिश की थी। आपकी इच्छा ये थी कि वो इंटरव्यू मैं लूं, तब मैं था नहीं शहर में।
2: तो भूपी जी मतलब पहले थे जिन्होंने मेरी एल्बम में जो जी, और जैसे मैं जयपुर में आकाशवाणी में युवाणी में जो अपनी आवाज पहली बार मैंने रिकॉर्ड की
3: जी,
2: तो घर में जिस ढंग से मैंने खुशी का इजहार किया था और अपने आप की आवाज को आकाशवाणी में सुनकर
3: जी
2: तो खुशी हुई थी, तो वो खुशी मुझे यहाँ पे भूपेंद्र सिंह की आवाज में अपनी गजल सुन के हुई थी।
3: क्या बात है,
2: तो वो किसी गजल सिंगर ने और मेरे फेवरेट गजल सिंगर ने या गायक ने जो इतना बड़ा सिंगर है, तो ये हुआ। तो उसके बाद जगजीत जी से बात हुई तो मैं मिलना चाहता हूँ, तो उन्होंने कहा आ जाओ वो
3: बेडर रोड,
2: हाँ पुष्प मिलन 25 उनका एड्रेस था
3: जी।
2: तो मैं गया और उस समय का वक्त था, तो मैं बताना चाहूंगा अपने श्रोताओं को, अपने सुनने वालों को कि बड़ा आदमी ऐसे ही नहीं बनता है
3: जी।
2: जगजीत सिंह साहब रोज सुबह उनका वो रियाज का वक्त होता था, इतने बड़े आर्टिस्ट जो थे वैसे ही नहीं थे
3: जी।
2: रोज रियाज करना उनका काम था जब मुंबई में होते थे
3: जी।
2: तो वो कानपुरा चल रहा है और वो सब कुछ, और मिलने जुलने वाले भी अगर आते हैं तो बीच में आते हैं और बातचीत होती है, और वो उनका सिलसिला फिर रियाज पे। तो मैं पहली बार गया तो वो तानपुर चल ही रहा था, वो अपने बैठे हुए थे और फिर उन्होंने वो गजल देखी। मेरी खुशकिस्मती कि बड़ा अक्सर होता है कि इतने बड़े लोग आपका मिलना ही बड़ी बात है उनसे
3: जी,
2: हाँ वो उनका मिल जाना। फिर उन्होंने कहा कि गजल देखे, तो सरसरी निगाह से जब उन्होंने देखी तो ये मेरा सौभाग्य था कि उन्होंने पहले ही उसमें कहा ये मैं कर रहा हूँ।
3: वाह वाह,
2: अक्सर होता है कि रख के जाओ, देखता हूँ, करता हूँ, सोचता हूँ, बताता हूँ,
3: है ना
2: जी। लेकिन उस वक्त उन्होंने उसी वक्त कह दिया ये मैं कर रहा हूं।
3: वो कौन सी गजल थी? घर से निकले थे
2: नहीं, ये जो जिंदगी की
3: किताब, ये जो जिंदगी की किताब है, वाह वाह वाह,
2: तो ये वो पहली गजल थी जो जगजीत जी ने गाई।
3: और भूपी जी ने क्या गाया था?
2: वो हैरानी होगी कि उस वक्त पंकज जी वगैरह सब ये शराब और हल्की फुल्की गजलों का दौर था। भूपी जी ने कहा कि यार मुझे गजलें बहुत है, मुझे हल्की फुल्की गजल चाहिए।
3: अच्छा।
2: हाँ
3: हाँ,
2: तो मैंने पहली गजल जो डिमांड पे लिखी, डिमांड पे,
3: हाँ,
2: वो ये गजल थी, और जिसको मैं न कहीं पढ़ता हूँ न सुनाता हूँ, और वो गजल जो मैंने कभी आज तक छुई नहीं।
3: अच्छा।
2: वो गजल शराब पड़ती। तो वो गजल लेकिन उनको पसंद आई, उन्होंने गाई और चली।
3: जी जी जी, ये जो जिंदगी की किताब है ये भी आपकी पहचान के साथ पूरी तरह से जुड़ गई है, और ये कहना चाहिए कि एक तरह से आपकी प्रतिनिधि गजल है। तो जगजीत साहब ने तो सुनाई, वो भी हम सुनेंगे, लेकिन हम आपसे भी सुनना चाहते हैं इसको।
2: ये गजल है जिसकी धुन मैंने खुद ने नहीं बनाई
3: जी,
2: तो मैं जगजीत जी की आवाज में जो धुन है, कंपोज है,
3: वो
2: हाँ वो पढ़ देता हूँ।
3: जरूर जरूर।
2: ये जो जिंदगी की किताब है।

0: क्या बात है। जगजीत जी ने जब इसे गाया और ये कैसेट रिलीज हुआ तो जाहिर है कि एक बहुत ही ख्वाब पूरा होने जैसी बात
1: बिल्कुल
0: थी,
1: सही,
0: और ये
1: बिल्कुल।
0: बहुत लोकप्रिय हुआ। आपके जहन में क्या चल रहा था?
1: नहीं, मेरे लिए तो एक सपना सच होना जैसा वही बात है। और फिर जिस ढंग से इन्होंने गाया,
0: जी
1: और ये
0: जी
1: कंसर्ट शो भी अक्सर गाया करते थे,
0: हूँ
1: और सोशल मीडिया तो अब आया है, लेकिन कभी कभी मैं देख लेता हूं और लोग बताते हैं इस गजल की जो लिसनिंग हुई है, जो व्यूअरशिप है, और वो नहीं है कि पूछ, मतलब मैं तो खूब है।
0: बिल्कुल
1: और उसके जो
0: बिल्कुल
1: कमेंट्स है लोगों के, ये गजल वो गजल, और ये जगजीत जी ने बहुत अच्छी गाई, और ये वो शायरी बहुत अच्छी है, सब कुछ है। और पूरे दुनिया से, पाकिस्तान, लंदन, अमेरिका, यहाँ ऐसे कमेंट्स हैं उस गजल पे। तो ये गजल जिसने मुझे दुनिया भर में पहुंचा दिया, यूं कह लीजिए मुझे।
0: बिल्कुल बिल्कुल। और जब आपको फोन करें तो आपकी रिंगटोन में भी ये गजल बजती है। जगजीत जी ने गा लिया, भूपी जी ने गा लिया, पंकज जी ने भी उस दौर में गा लिया था
1: पंकज जी उसके बाद
0: जी।
1: ये गजल जगजीत जी ने गाई, उससे पहले पंकज जी, हाँ नहीं, पंकज जी पहले थे, ये गजल थी वो जो यहाँ हर शख्स हर पल हादसा होना सर। तो पंकज जी से भी जब मिला तो खुश हुए। और ये गजल पहली नजर में सबको ही अलग लग जाती है कि ये होने से डरता है ना। तो इस गजल से जुड़ा एक और भी किस्सा कि ये गजल जब आई तो मतलब उस पूरे एल्बम में ये अलग सी गजल थी, लोगों ने बहुत पसंद की।
0: नबील था,
1: नबील
0: नबील था
1: नबील
0: जी।
1: तो इसकी खूब लोगों ने प्रशंसा की, पसंद किया, सब कुछ किया। तो इससे जुड़े दो किस्से हैं।
0: जी
1: तो एक तो ये कि उन दिनों दूरदर्शन पर भी, जब ये पूरा कमर्शियल नहीं हुआ था, तो बड़ा अच्छा उसमें कार्यक्रम आता था वो गजल का, जिसमें सुरेश वाडकर, हरिहरन, जो पंकज जी, कभी कभी जगजीत जी, छाया जी, बहुत अच्छा नाम था दूरदर्शन का, आता था गजल का, आरोही। हाँ,
0: आरोही
1: तो ये गजल पंकज जी ने गाई उसमें, आरोही में।
0: जी।
1: अच्छा, उन दिनों पता नहीं क्यों या एक नहीं हुआ, तो इसमें राइटर का नाम, शायर का नाम नहीं था,
0: अरे
1: पीछे
0: बाप रे,
1: नहीं था, तो उन्होंने गा दी गजल। तो ये गजल घर घर में सुनी, मतलब उस वक्त दूरदर्शन ही था।
0: तो आपके संपर्क से गाई या उन्हें यह गजल कहीं मिली?
1: नहीं, ये तो रिकॉर्ड होने के बाद की बात है,
0: अच्छा है, ओके। आरोही
1: एल्बम आने के बाद में, उसके बाद
0: में
1: इन्होंने
0: गाया।
1: कहा। तो ये एल्बम तो हो गया था, लोग पसंद भी कर चुके सब कुछ। तो ये दूरदर्शन पे ये गजल दिखाई जा रही थी, सुनाई जा रही थी, और उस वक्त दूरदर्शन ही था जिसपे लोग अच्छे सीरियल देखते थे, अच्छे प्रोग्राम देखते थे, आरोही बहुत पॉपुलर था, तो ये चल रहा था और लोग सुन रहे। तो मेरा एक जयपुर का दोस्त है, तो वो अपने परिवार में बैठ के जैसे सुनता है, तो ये जब गजल आई तो उसने कहा, यार ये पाकिस्तानी शायर क्या खा के गजल लिखते हैं।
0: आपके अपने दोस्त ने ये बात
1: ये
0: कही
1: मेरे
0: है।
1: उस, और तब तक हमारा संपर्क भी नहीं था, वो है बॉम्बे में, वो कि हम
0: जी
1: बहुत अरसे से नहीं मिले थे। तो
0: जी जी
1: ये पाकिस्तानी शायर क्या खा के गजल लिखते हैं, है ना।
0: ओहो
1: तो कल्पना नहीं कर सकता था कि ये हिंदुस्तान का शायर है और
0: जी।
1: ये यही की गजल है। तो ये उसने मुझे बाद में बताया जब हम मिले और सब कुछ। तो उसका नाम है अजय कार्तिक, जो ये जो है जिंदगी का राइटर था,
0: हाँ,
1: सीरियल
0: बिल्कुल
1: है ना।
0: बिल्कुल,
1: और
0: बड़ा नाम है अजय
1: हाँ,
0: कार्तिक जी।
1: तो वो तो जब बाद में मिले तो उसने कहा कि ये यार ये गजल तो हम सुन रहे थे और हमने, मेरा ये कमेंट था।
0: जी
1: अच्छा, दूसरी बात ये कि ये गजल पंकज दास साहब ने सूरत में एक शेख अबू आदम आदम वाला को, एक शायर रहे हैं गुजराती के, बड़े
0: जी
1: शायर रहे हैं, तो उनकी पुण्यतिथि पर सूरत में कंसर्ट था। हाँ, तो वो पंकज जी वहां पे, उन्होंने कंसर्ट किया वहां, गाने गए मजरू सुल्तानपुरी, वहां पे चीफ गेस्ट थे। तो मजरू साहब बैठे थे सामने, तो पंकज जी ने ये गजल सुनाई, तो फिर ये जब शेर सुनाया तो फिर मजरू साहब ऑडियंस में बोलते हैं, हाँ पंकज फिर सुनाओ। तो जब जो कहते हैं ना, फिर सुनाओ फिर सुनाओ, तो चाहे मुशायरा हो या म्यूजिक पर हो, तो ये लगता है कुछ गलत तो नहीं हो गया, कुछ
0: हाँ बिल्कुल
1: तलफ़ुज़ गलत हो गया, या कोई मिसरा गलत हो गया, कुछ मैंने कुछ कमजारा तो नहीं कर बोल दिया है, सुना दिया। हाँ, ये सुर का इधर उधर, नहीं फिर सुनाओ, फिर एक बार फिर। उन्होंने 3 बार ये सुना और हाँ वाह, तो ये हुआ। फिर जब ग्रीन रूम में आए, मजरू साहब उनसे मिले, तो बोले कि ये किसकी गजल थी है। तो उन्होंने बताया कि ये उस वक्त मैं नौजवान हुआ करता था,
0: जी।
1: तो नौजवान शायर बॉम्बे के राजेश रेड्डी, तो वो ये बहुत अच्छी गजल है, अलग गजल है, उसको मेरी तरफ से मुबारकबाद देना।
0: वाह वाह वाह
1: तो ये
0: वाह,
1: मजरूह
0: मजरू जैसे
1: सुल्तानपुरी साहब का
0: बड़े
1: आशीर्वाद
0: शायर की बात
1: है ना।
0: है।
1: तो इस गजल से जुड़ी एक दो बातें हैं, तो ये मैं शेयर करना चाह रहा था।
0: क्या बात है, पंकज जी की आवाज में ये गजल सुनते हैं हम।
1: जी।

0: मुंबई के अपने सफर के बारे में कुछ और बातें बताइए।
1: मुंबई में फिर सफर तो मेरा ज्यादा तो शायरी का ही रहा
0: जी,
1: और

0: अली सरदार जाफरी उसका वो थे, सदारत कर रहे थे। अब सुनने वालों में दिलीप कुमार,
1: बाप रे,
0: अजीत एक्टर
1: जी,
0: और भी और कई थे फिल्म इंडस्ट्री से काफी लोग थे। तो वो दौर था जब बिहार जो नेहरू सेंटर अलग ही हुआ करता था
1: जी,
0: हॉल खचाखच भरा हुआ। तो और मेरा पहला बड़ा मुशायरा मुंबई का,
1: क्या बात है,
0: मेरा पहला मुशायरा, तो बड़ा मुशायरा। तो निदा साहब ने मुझे उसकी ओपनिंग के लिए, बल्कि यू कह लीजिए,
1: अरे बाप,
0: तो शुरुआत के एक दो चारों में।
1: और निदा साहब की अपनी अदा थी, वो बहुत रेफरेंसेस के साथ बुलाया करते थे।
0: तो उन्होंने मुझे माइक पर बुलाया कि मेरा पहला मुशायरा और ये ऑडियंस, ये लोग है ना, भरपूर ऑडियंस, पूरा हॉल। तो मैंने गजल पढ़ी, तो वो गजल जब पढ़ता गया तो सब हर शेर को दोबारा पढ़ना पड़ा, ये सब कुछ हुआ। और जब मैं पढ़ के आया हूं तो मुमताज राशिद और जफर गोरखपुरी,
1: हाँ हाँ,
0: तो उस वक्त दाद देने का एक ये भी होता था, ये बड़े लोग जो दाद देते थे, जफर गोरखपुरी साहब मेरे बराबर में बैठे थे, होता है। तो मतलब अगर किसी को बहुत अच्छा लगा, ये प्यार हुआ ना, तो मुशायरा तो हो गया।
1: अरे हाँ, हाँ, हाँ, हाँ, शुरुआत कर रहे थे जब, हाँ,
0: जी मुशायरा तो हो गया।
1: अरे बाप रे, बहुत बड़ी बात है,
0: ये बड़ी बात थी
1: जी।
0: तो ये मैंने कहा था कि उधर नीरज जी का वो हार पहनाना, माला पहनाना
1: जी,
0: तो ये तो हो गया, मुशायरा तो हो गया। और ये ऐसे अजीत साहब ने मुझे हैदराबाद बुलाया,
1: गजब,
0: अपने घर पर
1: जी,
0: उनसे वहां से मिलना हुआ, सुना सुनाना हुआ। तो ये हुआ, ये गजल में सुन जो बात बता रहा हूँ जिसके बारे में
1: जी,
0: ये गजल जगजीत सिंह साहब को बहुत पसंद थी,
1: हाँ हाँ,
0: और जगजीत सिंह साहब ने इसको धुन भी बनाई, रिकॉर्ड भी किया, उसका हाँ। आखिरी एल्बम था ये,
1: ओहो हो,
0: और वो एल्बम रिलीज होने से पहले वो नहीं रहे दुनिया में,
1: जी, जी,
0: वो चले गए
1: जी।
0: वो एल्बम रिलीज हुआ, चित्रा जी पता नहीं कब करेंगे, नहीं करेंगे
1: जी।
0: तो ये गजल उन्होंने गाई भी और सुनाई भी। इस गजल से मैं एक और जो जगजीत जी के साथ जुड़ा, मैं बता रहा हूँ कि मेरी दूसरी किताब पहली उड़ान
1: जी
0: और दूसरी आसमान से आगे,
1: बिल्कुल।
0: तो जब आसमान से आगे की किताब का लोकार्पण की बात हुई और मैं चाह रहा था, तो मैं उनको अपने चाह रहा था कि जगजीत जी इसका वो करें, हाँ, तो मैं उनको इनवाइट करने गया और बोला कि मैं चाह रहा हूँ कि आप करें, तो इसके लिए अलग से प्रोग्राम क्यों करते हो, मेरा कंसर्ट है केयर का जो है नेहरू सेंटर में, तो उसमें कर देते, तुम उसको किताब लेके आ जाना, फिर अपन कर लेंगे। तो मैं चला गया, मुझे उम्मीद नहीं थी कि जो हुआ वो ऐसा होगा
1: जी जी जी।
0: तो किताब लेके रैपर वैपर सबके रिबन में सब लेके चला गया। तो मैं मिला वहां पे, तो उन्होंने कहा कि ठीक है तुम ऑडियंस में बैठो, मैं तुम्हें बुलाऊंगा और वहां उसको कर देंगे सब ठीक है। तो मैं बैठ गया, फिर उन्होंने वो गजल गाई, दूसरी गजल, जिंदगी तूने लहू लेके दिया कुछ भी नहीं, तेरे दामन में मेरे वास्ते क्या कुछ भी नहीं। तो जगजीत जी ने ये गजल गाई और उसके बाद श्रोताओं से कहा कि ये गजल जो मैंने अभी गाई, ये हमारे प्यारे शायर राजेश रेड्डी की लिखी हुई है, और आज इत्तेफाक है कि वो हमारे ऑडियंस में मौजूद है, तो मैं चाहता हूं कि वो ऊपर आए और आज उनकी किताब का भी वो है, वो लेके आए किताब। तो फिर मैं ऊपर गया और वो नमस्ते और तक क्लैपिंग सब कुछ हुआ, फिर जगजीत जी ने वो उसका
1: रिबन खोला,
0: ऑडियंस के सामने ये सब हो गया और तालियां सब हो गई, और मैं स्टेज से उतरने लगा
1: जी,
0: टोले नहीं राजेश रुक गए। तो मैं आया तो उनका कंसर्ट है, देखिए स्टेज है पूरा,
1: और पूरा हॉल, पूरा हॉल है,
0: म्यूजिक का पूरा सेटिंग है, सारा घर है, वो बीच में उन्होंने बुलाया हुआ है। फिर वो उन्होंने कहा कि भाई एक माइक इधर लगाइए, सेटिंग माइक दीजिए, हाँ, तो ये इसकी म्यूजिक को भी नहीं कल्पना नहीं, और तो वो दिया उन्होंने। तो अब वो गजल पढ़िए, जाने कितनी उड़ान बाकी है।
1: अरे बाप रे,
0: वो उससे पहले महफिलों में गा चुके थे, मतलब
1: जो
0: पसंद थी गजल, तो सारा, तो वो गजल पढ़ी, जाने की उड़ान बाकी। तो बात वही खत्म हुई, मैंने पढ़ा जाने कितनी उड़ान बाकी है, इस परिंदे में जान बाकी
1: जी।
0: हो ये रहा है कि मैं, मतलब मैंने पढ़ा, शुरुआत की और जगजीत जी म्यूजिक के साथ शुरू हो गए।
1: अरे गजब,
0: ये किसी शायर के साथ नहीं हुआ
1: जी, जी
0: आज तक किसी शायर के साथ नहीं हुआ,
1: गजब गजब,
0: ऐसा विमोचन और ऐसी ऐसा सम्मान, ऐसा प्यार। तो मैं पढ़ रहा हूं और उसे गा रहे, मैं पढ़ रहा हूं और उसे गा रहे,
1: अद्भुत अद्भुत
0: अद्भुत अद्भुत। और जब घर पे मैंने श्रीमती जी को बताया कि ऐसा हुआ, तो वो मुझे क्यों नहीं लगे यार,
1: अरे
0: क्यों
1: नहीं लगे,
0: और आपको मालूम था कि ऐसा होगा वैसा होगा, तो मेरे कहा नहीं ऐसा नहीं, मुझे तो ये था उनका प्यार, ये था उनका शायर को सम्मान देने का तरीका। तो इस गजल के साथ ये जुड़ाव है, इसलिए मैंने बताया था।
1: क्या बात है, ये आपसे सुनेंगे।
0: हाँ, जाने कितनी उड़ान बाकी है, जान।

0: परिंदे में जान बाकी है, जाने कितनी उड़ान। और ये शेर खास तौर से यूनुस
1: स्वागत है।
0: जितनी बटनी थी बट चुकी ये
1: बाबा
0: जमीन, जितनी बटनी थी बट चुकी ये जमीन, अब तो बस
1: क्या बात है,
0: आसमान
1: बाकी
0: बाकी है, जाने कितनी उड़ान बाकी है। फजल का एक और शेर खास सुनाना चाह रहा हूं।
1: स्वागत है।
0: सर कलम होंगे कल यहां उनके,
1: वाह
0: सर कलम होंगे कल यहां उनके, जिनके मुंह में
1: जबान बाकी है।
0: जबान बाकी है, जाने कितनी उड़ान बाकी है।
1: क्या बात है, क्या बात है, शानदार शानदार।
0: जी
1: विविध भारती के आपके इस दौर की बात करनी बहुत जरूरी है, क्योंकि एक बहुत प्यारा वक्त आपने विविध भारती में 2 बार गुजारा है। और मुझे याद है कि आपके जमाने में जो कार्यक्रम आपने शुरू किए, उसमें सरगम के सितारे उजाले,
0: उनकी
1: उनकी
0: यादों
1: यादों
0: के।
1: के मंथन जैसे कार्यक्रम थे। मुझे लगता है कुछ और भी कार्यक्रम, गुलदस्ता एक कार्यक्रम था जो आपने शुरू किया। सखी
0: सखी
1: सहेली आपके
0: सहेली
1: दौर में शुरू हुआ है, तो ये तमाम चीजें हैं, इस दौर को याद कीजिए।
0: नहीं, वो मेरे पूरे करियर का पीक भी था और स्वर्णिम दौर था हर तरह से।
1: जी
0: मतलब ये नहीं कि मेरी आखिरी वो पोस्टिंग थी कहना चाहिए, या मेरा करियर का आखिरी पीरियड था, उस लिहाज से नहीं। मेरे क्रिएटिव एक्सप्रेशन का भी और लोगों से जुड़ाव का भी और चीजों को एक्सप्लोर करने का भी वो बेस्ट पीरियड था। और उस टीम का जवाब नहीं जिसने
1: बिल्कुल
0: मुझे इतने चरण से इन चीजों को संवारने और उसको साकार करने का अवसर दिया, जिसमें मैं बार बार नाम लूंगा तो सबसे पहले यूनुस,
1: अरे राकेश जोशी की।
0: राकेश जोशी, उस वक्त हमारे जो साथी लोग थे लोकेंद्र जी, महेंद्र मोदी, ममता, कांचन प्रकाश संगीत, कमलेश और शेट्टी जी, जो हमारे मैनेजर हुआ करते थे एक तरह
1: सब
0: से,
1: चीजों को
0: हम
1: संभालते
0: सबको
1: थे
0: संभालते थे। तो एक अच्छी टीम थी
1: जी,
0: जो हर तरह से, जो जिस चीज का एक्सपर्ट था वो था, और
1: बिल्कुल
0: वो अपने को भरपूर सहयोग के साथ, भरपूर इन्वॉल्वमेंट के साथ, भरपूर पोटेंशियलिटी के साथ, मतलब
1: जी
0: हर आदमी ने अपना बेस्ट दिया।
1: बिल्कुल। और हर
0: ऐसा कम
1: रोज आप
0: होता
1: एक
0: है,
1: नई चुनौती
0: ऐसा
1: सामने
0: कम
1: रखते
0: होता
1: हैं।
0: है।
1: जी
0: तो हमने तो ऐसे ऐसे वो दौर देखा और किया है कि कोई बड़ी हस्ती है उसके
1: नौशाद
0: साथ
1: साहब आ
0: कहीं,
1: रहे हैं,
0: हाँ
1: खयाम साहब आ रहे हैं।
0: खयाम साहब आ गए, लक्ष्मीकांत के आए, प्यारेलाल जी आए, आनंद
1: जी
0: जी आए, है
1: बिल्कुल
0: ना, अनु मलिक भी आए, कौन कौन भी आए यहाँ पे, तो
1: बिल्कुल,
0: सारे, और संगीतकारों में भी बड़े बड़े लोग, है
1: रवि जी
0: ना,
1: आए,
0: हाँ
1: बिल्कुल
0: खयाम साहब,
1: खयाम साहब आए, और
0: हाँ
1: बातों का सिलसिला खत्म ही नहीं हो रहा है।
0: हाँ तो
1: हाँ
0: बड़े बड़े लोगों के बड़े बड़े इंटरव्यूज,
1: मुझे याद है कि
0: हमारे
1: खयाम
0: मेहमान,
1: साहब, नौशाद साहब आए हैं,
0: हाँ
1: और हम उनको छोड़ने नीचे गाड़ी तक गए हैं,
0: हाँ
1: और वही 1 घंटे बात हो
0: हाँ हाँ हाँ
1: रही
0: उनको वो नौशाद साहब तो ऐसे थे कि वो उनको बोलने का बहुत वो था, वो
1: जी
0: अच्छा भी बोलते थे और इतना था उनके पास बोलने का, और
1: बिल्कुल
0: उनको शौक भी था, तो बहुत अच्छी बातें करते थे और देर तक बातें करते थे। कैफी आजमी साहब, तो मतलब ऐसे ऐसे बड़ी बड़ी हस्तियों को भी हमने ये भी सोच किया कि इनको हमको जाया नहीं करना है कि 1 घंटे में बांध लिया, 2 घंटे में बांध लिया, उनको कभी सरगम के सितारे, कभी हमारे मेहमान, कभी इसमें उसमें, जितना हम
1: ज्यादा कर
0: उनके ले सकते
1: सकते
0: हैं
1: थे।
0: उनका श्रोताओं के लिए, क्योंकि ये लोग बार बार नहीं मिलते हैं, ये लोग
1: जी
0: अब कहाँ आएंगे अब इस दुनिया
1: बिल्कुल,
0: में। तो इनका जो है वो है, जो विविध भारती के पास है वो किसी के पास नहीं
1: किसी
0: है,
1: के पास नहीं
0: किसी के पास नहीं है। वो आर्काइवल रिकॉर्डिंग और स्टेशन पे है,
1: जी।
0: लेकिन इस तरह की जो रिकॉर्डिंग्स जो है, इतनी लाइवली रिकॉर्डिंग्स जो है, वो संस्मरणात्मक रिकॉर्डिंग है सारी की सारी, या
1: बिल्कुल
0: गानों पे बातें हो रही है, या वो गाने कैसे बने उस पर बातें हो रही है
1: जी
0: ना, आपका फेवरेट क्या है, आप वो सारा कुछ, मतलब पूरी उनकी यात्रा,
1: एक से बढ़ के एक
0: एक से
1: चीज है,
0: बढ़कर एक
1: एक से
0: प्रोग्राम जो
1: बढ़ के
0: है
1: एक है
0: वो हुए, प्लस कहीं कहीं कोई चला गया अचानक, तो उसके लिए छुट्टी भी हो तो सब लोग एक फोन पर, पूरी टीम विविध भारती की स्टूडियो में हाजिर,
1: और
0: और
1: ट्रिब्यूट
0: पूरा
1: हो रहा है
0: प्रोग्राम शुरू हो गया। तो
1: जी
0: ये सब वो एक अनुभव जो है वो विविध भारती में हुआ और कहीं नहीं
1: जी
0: हो सका।
1: बिल्कुल बिल्कुल, तो विविध भारती में वो जोश, वो जुनून, वो जज्बा हमेशा रहा कि चाहे मौजूदा कलाकार हो चाहे ट्रिब्यूट्स हो, जी जान के साथ लोगों ने काम किया। एक चीज जो क्रिकेट का आपका शौक, उसकी भी मैं बात करना चाहूंगा। एक बहुत जुनून रहा है आपको क्रिकेट का, मुझे याद है कि वर्ल्ड कप हो रहा है तो आपने स्पेशल प्रोग्राम शुरू कर दिया था और मैंने वो चुनौती निभाई थी कि रोज सुबह एक बुलेटिन देना है।
0: नहीं, क्रिकेट का शौक बहुत अरसे से रहा और शायद ये हमारा राष्ट्रीय खेल शुरू से रहा है
1: जी।
0: तो थोड़ा बहुत खेला भी, लेकिन देखने का शौक जो है वो, ये तो वो जमाना था, वो दीवानगी का वो आलम था कि इसके लिए मैंने ऑफिस से छुट्टी तक ली है मैच देखने के लिए।
1: जी जी,
0: तो ये भी हुआ है और खासतौर से जब हम वर्ल्ड कप जीते 83 में,
1: बिल्कुल,
0: तो उसके बाद तो कोई कमाल ही हो गया मतलब। और जब जयपुर में आकाशवाणी में प्रोग्राम एग्जीक्यूट था, स्पोर्ट्स भी था, देखता था
1: जी।
0: तो पाकिस्तान इंडिया का मैच, इंडिया इंग्लैंड का मैच, ये सब देखा और आनंद आया।
1: बिल्कुल, विविध भारती के दौर में भी क्रिकेट पर हमने बहुत कार्यक्रम किए आपके दौर में और मंथन किया जब पाकिस्तान गई थी इंडिया की टीम और ऐतिहासिक दौरा था। दिलीप साहब को रिकॉर्ड किया उस जमाने में और उन्होंने शुभकामनाएं भेजी इंडिया की टीम को, तो एक जुनून उससे मैं वाकिफ हूँ।

0: कुछ भी नहीं। एक जरूरी बात रह गई है और वो है रेखा जी से आपकी मुलाकात की बात।
1: रेखा से, रेखा का यूं है कि वो हम लोग एमए में साथ थे,
0: जी जी,
1: एमए हिंदी लिटरेचर में राजस्थान यूनिवर्सिटी में, तो एक ही क्लास में थे और हम दोनों का बैकग्राउंड बिल्कुल अलग था। मैं जैसे मैंने बताया, हमारे पिताजी पीएटी डिपार्टमेंट में काम करते थे, एक लोअर मिडिल क्लास फैमिली, सरकारी मुलाजिम के बेटे बेटा, वो उस तरह से परिवार में पला बढ़ा, लेकिन सांस्कृतिक रूप से हम लोग बहुत समृद्ध थे। लेकिन जो रेखा की जो फैमिली है वो सिंधी कम्युनिटी है, वो लालवानी रहे हैं है, मतलब तो वो बिजनेस में थे जापान में, हमारे फादर इन लॉ, दोनों ब्रदर इन लॉ हांगकॉन्ग मनीला, तो वो उनका बैकग्राउंड ही अलग था, मतलब उनका आर्थिक स्तर भी बहुत अलग था
0: जी,
1: तो कोई संभावना नहीं थी उसकी, लेकिन वो जो होता है वो होता है। तो जब उस वक्त मेरी थोड़ी बहुत पहचान गीतकार के रूप में और थोड़े पत्रकार के रूप में सब होने लगी थी, लिखने वाले के, तो अट्रैक्शन भी हो ही गया था और हम लोगों में मिलना जुलना सब कुछ है। लेकिन शादी तक की बात, ये उनका साहस था
0: जी जी,
1: प्रपोज तो नेचुरली मैंने ही किया था, लेकिन मैं, हमारा बैकग्राउंड बिल्कुल अलग था और विलोम था एक तरह से, तो उसके बावजूद उन्होंने हिम्मत दिखाई, उन्होंने कहा ठीक है। और ये कहानी बड़ी दिलचस्प है
0: जी,
1: तो घर में बता के तो उन्होंने कहा कि संभव नहीं है।
0: ओके,
1: घर में तो वहां तो राजी होने का सवाल ही नहीं उठता कि वो मान जाए। अच्छा, उस वक्त हमारे इन-लॉज, फादर इन-लॉज जापान में रहते थे, ये हमारी जो सास है मदर इन-लॉज जो है वो उनके साथ ये रह रही थी, सब कुछ, दोनों भाई बाहर थे, तो घर का कोई पुरुष यहां मौजूद नहीं था, और माँ को भी ये बताने की और इस हालत में वो उम्मीद नहीं थी कि हो जाएगा। तो ठीक है, तो हमने कहा कि हमारे समाज में शादी करते हैं।
0: अरे बाप रे,
1: तो आर्य समाज में तय हुआ शादी। हम, मेरे कोई निकट के मित्र 5-7, और उस वक्त भी मतलब मैं क्योंकि अपने कॉलेज के जमाने से अपनी एक्टिविटीज की वजह से लिखने पढ़ने और थिएटर का जो माहौल था, तो अपने लेक्चरर्स का चहेता बन गया था, मतलब ये था
0: जी,
1: तो वो सब आगे आगे करते थे, तो मेरे 2-3 जो लेक्चरर्स थे वो शादी में आए।
0: अरे वाह,
1: आर्य समाज की शादी में,
0: क्या बात है।
1: तो उन्होंने संभाला और सब कुछ हुआ। अच्छा हुआ ये कि मैं शादी के बाद वो अपने घर चली गई।
0: अरे
1: मैं अपने घर चला आया
0: जी जी जी,
1: तो उन्होंने कहा कि अब मैं बता सकती हूँ कि हम, मैंने शादी कर ली है। और तो अब तो
0: कुछ हो नहीं सकता,
1: होंगी नहीं, जबकि तो हमारे जो लेक्चरर्स थे तो नेचुरली वहां से रेजिस्टेंस हो रहा था कि नहीं नहीं तुम्हारे पिताजी को बुलाते हैं, वो करते हैं, तो उन्होंने वो दौड़े दौड़े जापान से लौट के आए, फिर उन्होंने सब बता दिया सब कुछ, तो बोले हाँ हाँ क्यों नहीं, हम उनसे बात करेंगे, उनको बुलाते हैं, सब कुछ करते हैं। लेकिन उन्होंने कहा कि नहीं, ये मुझे लग नहीं रहा कि मानेंगे, तो मुझे यहाँ से ले जाओ।
0: अरे बाप रे,
1: ये इनकी हिम्मत बता रहा हूँ मैं अब, तो मुझे ले जाओ यहाँ से। तो मैं अपने 2 लेक्चरर्स के साथ घर गया हूँ उनके,
0: गजब।
1: और हमारे फादर इन-लॉ जो मौजूद थे, तो हाँ हाँ ये बैठी चाय वाय की सब कुछ, तो उन्होंने वही कहा कि थोड़ा हमें वक्त दीजिए ना,

0: उसको ढंग से करते हैं, इसको करेंगे उसको, लेकिन ये फिर मुझे अलग ले गई, बोले नहीं
1: ये नहीं हो रहा है,
0: ये नहीं होने देंगे, मैं भी चलूंगी।
1: गजब,
0: मैं भी चलूंगी। तो फिर उन्हीं के साथ हम लोग बाहर आ गए और हम लोग निकल आए, और फिर मैंने अपने घर वालों को भी तब बताया,
1: जी जी जी,
0: जब उनको लेके आया कि मेरी शादी हो गई है
1: और ये है।
0: तो इस तरह से ये पूरी कहानी हुई, और इसके पीछे मेरी तो जो है सो है, सारा साहस इनका है।
1: क्या बात है,
0: ये उस जमाने में
1: जी, शानदार शानदार। तो ये अद्भुत कहानी रही है, और ये हमारे सुनने वालों के साथ शेयर हुई, तो ये भी एक दिलचस्प है। सबसे अच्छी मुलाकातें वो होती हैं जिनमें आगे की गुंजाइश छूट जाए। तो बहुत सारी चीजें हैं, बहुत सारी बातें हैं, दो एपिसोड में उनको समेटना बड़ा मुश्किल था। आगे फिर मिलेंगे और कुछ बहुत सारी बातें आपके साथ की जाएंगी। चलते चलते आपसे कुछ सुनना चाहेंगे।
0: मैं दो तीन शेर सुनाता हूं।
1: जी जरूर इरशाद।
0: ये रोजमर्रा का सच हम सबके साथ, किसी दिन जिंदगानी में
1: किसी दिन
0: करिश्मा क्यों नहीं होता।
1: वाह,
0: किसी दिन जिंदगानी में करिश्मा क्यों नहीं होता, मैं हर दिन जाग तो जाता हूं जिंदा क्यों नहीं होता।
1: वाह वाह वाह वाह वाह,
0: किसी दिन जिंदगानी में करिश्मा क्यों नहीं होता, मैं हर दिन जाग तो जाता हूं जिंदा क्यों नहीं होता।
1: वाह वाह,
0: मेरी एक जिंदगी के कितने हिस्सेदार हैं लेकिन, मेरी एक जिंदगी के
1: कितने
0: हिस्सेदार हैं लेकिन, किसी की जिंदगी में मेरा हिस्सा क्यों नहीं होता।
1: वाह वाह वाह,
0: मेरी एक जिंदगी के कितने हिस्सेदार हैं लेकिन, किसी की जिंदगी में मेरा हिस्सा क्यों नहीं होता। और दो छोटी छोटी बहर के शेर
1: इरशाद।
0: एक तो ये शेर के,
1: एक आंसू
0: कोरे कागज पर गिरा।
1: वाह,
0: एक आंसू
1: कोरे
0: कागज पर गिरा और अधूरा खत मुकम्मल हो गया।
1: वाह वाह वाह वाह वाह वाह, क्या
0: एक आंसू कोरे कागज पर गिरा और अधूरा खत मुकम्मल हो गया।
1: क्या बात है।
0: और ये शेर आखिर में, गम छुपाना कोई मजाक नहीं, गम छुपाना कोई मजाक नहीं, देर तक मुस्कुराना पड़ता है।
1: वाह वाह वाह वाह वाह वाह वाह वाह वाह, क्या बात क्या बात।
0: गम छुपाना कोई मजाक नहीं, देर तक मुस्कुराना पड़ता है।
1: क्या बात है क्या बात। सर इतनी सारी बातें हुई, मैं चाहता हूं कि एक ऐसी गजल सुनाए जो आपके इस पूरे रचनात्मक सफर की रिप्रेजेंटेटिव हो, जो आपके मन की हो, जिसे आप जरूर सुनाना चाहें।
0: यूनुस, ये गजल मैं इसलिए खास महसूस करता हूं अपने क्रिएटिव सफर की, कि रामपुर की एक बहुत मशहूर लाइब्रेरी है, रजा लाइब्रेरी।
1: जी जी बिल्कुल।
0: तो उसमें रिसर्च का नामी गिरामी लोग तो आए, बहुत अच्छी महफिल थी। तो उसमें ये गजल जो मैंने पढ़ी
1: जी,
0: तो इतना प्यार मिला, तरह मुशायरा था जो मेरा पहला अनुभव था।
1: जी जी,
0: मतलब किसी
1: लाइट होता है।
0: लेकिन ये गजल मुझे वहां दो बार पढ़नी पड़ी।
1: क्या बात है,
0: इतना प्यार मिला, इतना प्यार मिला। तो वो हासिल मुशायरा साबित हो गई।
1: वाह।
0: तो इसलिए मेरे लिए वो जो है बड़ी यादगार गजल रही। तो मैं वो उसके कुछ शेर पढ़ देता हूँ।
1: इरशाद इरशाद।
0: अब क्या बताए टूटे हैं कितने, कहां से हम
1: बाबा।

0: क्या बताए टूटे हैं कितने, कहां से हम खुद को समेटते हैं, यहां से
1: क्या बात
0: वहां
1: है,
0: से
1: क्या बात है, क्या बात है।
0: हम।

0: से हूँ।
1: क्या बात है, क्या बात है।
0: हाँ।
1: तो आगे की बातचीत के लिए प्यास बाकी है। बहुत बहुत शुक्रिया आप विविध भारती के स्टूडियो में आए और इतनी बातें की।
0: बहुत बहुत शुक्रिया यूनुस, और पूरे विविध भारती परिवार को मेरी तरफ से धन्यवाद, आभार, और अपने पूरे परिवार में फिर एक बार अपने पुराने दोस्तों से मिलने के लिए और पुराने श्रोताओं से मिलने के लिए, मिलाने के लिए मैं आभारी हूँ। बहुत बहुत शुभकामनाएं, धन्यवाद।
1: शुक्रिया सर, शुक्रिया। ये था जाने माने शायर और विविध भारती के भूतपूर्व केंद्र निदेशक राजेश रेड्डी से यूनुस खान की बातचीत का दूसरा और अंतिम भाग। रिकॉर्डिंग इंजीनियर भावना सिंदल, संपादन सहयोग रीमा जोशी का। विविध भारती की ओर से इस कार्यक्रम के प्रस्तुतकर्ता जुबैर खान। अब आज के मेहमान कार्यक्रम समाप्त होता है। आज के मेहमान।

अभी आप सुन रहे थे विविध भारती के कार्यक्रम। हम आकाशवाणी जैसलमेर के गोल्डन सिटी चैनल से बोल रहे हैं, एफएम बैंड 101.8 मेगाहर्ट्ज़ पर। श्रोताओं, शाम के 5 बजे हैं, आइए सुनते हैं युवा साथियों का कार्यक्रम युवाणी।

जनगणना के पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके मकान की गणना होगी। आइए आपकी साझेदारी से इसे सफल बनाएं और विकसित भारत 2047 की ओर एक और कदम बढ़ाएं।

0: जनगणना के पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके मकान की गणना होगी। आइए आपकी साझेदारी से इसे सफल बनाएं और विकसित भारत 2047 की ओर एक और कदम बढ़ाएं।
1: विकसित भारत की

युवा दोस्तों, आप बार सुन रहे था संदेश, और इन संदेशों पहला आप बात कर रहे थे राजीव गांधी जी की पुण्यतिथि के बारे में। तो मैं आपने बताया कि भारत रा पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी जी की पुण्यतिथि हर साल 21 महीने मनाई जावे है, और इन दिन ने बलिदान दिवस के रूप से भी याद करियो जावे है। 21 मई 1991 ने तमिलनाडु रे

श्री पेरबुंदर में एक चुनाव प्रचार के दौरान उनकी हत्या कर दी गई थी। राजीव गांधी जी ने आधुनिक भारत का शिल्पकार और सूचना प्रौद्योगिकी का जनक मानिया जावे है। उनके कार्यकाल में कुछ प्रमुख उपलब्धियां इन प्रकार से प्राप्त हुई, ज्याकि मतदान री आयु 21 से 18 वर्ष करना, ताकि देश रे युवाओं ने राजनीति में अधिक भागीदारी मिल सके। पंचायती राज व्यवस्था ने भी सुधारियों गयो। सत्ता रे विकेंद्रीकरण रे वास्ते पंचायतों ने मजबूत करियो गयो और टेलीकॉम और आईटी क्रांति भी उनके कार्यकाल रे अंतर्गत ही लियो गयो। भारत में कंप्यूटर और दूर संचार रे विस्तार री नींव भी राजीव गांधी जी द्वारा ही डाली गई हंती। तो दोस्तों आ बात हुई राजीव गांधी जी री पुण्यतिथि रे बारे में, और आगे आप चर्चा यही चलती रह से पहले आप सुनो आप प्यारो सो मीठो सो गीत।

युवा दोस्तों, आप बार सुन रहा था सीमा मिश्रा की आवाज में आप यारो सो गीत। और इन गीत से पहला आप बात कर रहा था राजीव गांधी जी री पुण्यतिथि के बारे में। तो मैं आपने बतायो कि किन तरह से आधुनिक भारत रा निर्माता आपा या शिल्पकार राजीव गांधी जी ने कह सका हाँ। और आज 21वीं पुण्यतिथि के रूप में मनायो जावे है। हमें आप सुनो वार्ता विकसित भारत में सूचना प्रौद्योगिकी योगदान। वार्ताकार है अंकिता तिवारी।

0: यो दोस्तों, हमें आप सुनो, विकसित भारत में सूचना प्रौद्योगिकी योगदान वार्ताकार है अंकित तिवारी।
1: आज हम किसी दफ्तर या प्रयोगशाला की बात नहीं करेंगे, बल्कि हम एक यात्रा पर चलेंगे। एक ऐसी यात्रा जो हमें आज के भारत से उठाकर साल 2047 के उस विकसित भारत में ले जाएगी जिसकी नींव आज सूचना प्रौद्योगिकी ने रखी है। 2047 का वर्ष भारत का केवल एक कैलेंडर वर्ष ही नहीं, बल्कि यह 140 करोड़ से अधिक भारतीयों के सपनों और आकांक्षाओं का प्रतिफल है। जब हम 2047 की बात कर रहे हैं, तो हम सिर्फ स्वतंत्रता के 100 साल पूरे होने का जश्न नहीं मना रहे हैं।

होंगे, जबकि हम एक ऐसे भारत का सपना देख रहे हैं जो आत्मनिर्भर है, समृद्ध है और समावेशी तथा वैश्विक स्तर पर नेतृत्व कर रहा है। जब हम अपनी स्वतंत्रता के 100 वर्ष पूरे करेंगे, तब विकसित भारत की परिकल्पना को साकार करने में सूचना प्रौद्योगिकी शक्तिशाली इंजन के रूप में कार्य करेगी। सूचना प्रौद्योगिकी केवल एक उद्योग नहीं है, बल्कि ये कृषि, स्वास्थ्य, शिक्षा और शासन के कायाकल्प का मूल आधार है। आज से ठीक 21 साल बाद सन 2047 में भारत का स्वरूप कैसा होगा? हमारा भारत एक विकसित राष्ट्र होगा, जहां हर नागरिक के पास समान अवसर होंगे, जहां गरीबी इतिहास बन चुकी होगी और जहां तकनीक हर व्यक्ति के जीवन को आसान बना रही होगी। इन सपनों के भारत की नींव आज रखी जा रही है और इस नींव की सबसे मजबूत ईंट है सूचना प्रौद्योगिकी। आज भारत दुनिया की डिजिटल फैक्ट्री से बदलकर एक इनोवेशन हब बन चुका है। सूचना प्रौद्योगिकी केवल एक उद्योग ही नहीं, बल्कि यह कृषि, स्वास्थ्य, शिक्षा और शासन की कायाकल्प का मूल आधार है। आइए अब हम बात करते हैं डिजिटल इंडिया से भारत का सफर कैसा रहा। जैसा कि हम जानते हैं कि भारत की आत्मा गांव में बसती है और सूचना प्रौद्योगिकी इस आत्मा को आधुनिक बना रहा है। ऐसे ही एक गांव और उसमें रहने वाले किसी व्यक्ति की हम कल्पना करते हैं। कल्पना कीजिए 15 अगस्त 2047 की वो सुबह, राजस्थान के एक छोटे से गांव से गांव में रहने वाले रामस्वरूप जी अपने बरामदे में बैठे हैं। आज से 25 साल पहले लोग उन्हें रामू काका के नाम से जानते थे और वे छोटी छोटी सरकारी सुविधाओं के लिए मीलों पैदल चलते थे, लेकिन आज उनके हाथ में एक छोटा सा टैबलेट है। उनके खेत में सेंसर ने उन्हें सूचना दी कि पौधों को नाइट्रोजन की जरूरत है। उन्होंने टैबलेट में एक बटन दबाया और AI ड्रोन खेत की ओर चल उठा। रामस्वरूप जी को याद है कि पहले बीज या सब्सिडी के लिए दफ्तरों के चक्कर काटने पड़ते थे, लेकिन ई गवर्नेंस ने सब बदल दिया। ड्रोन तकनीक, IoT सेंसर और सैटेलाइट इमेजरी के माध्यम से मिट्टी के स्वास्थ्य की जांच और फसल उत्पादन का सटीक अनुमान लगाया जा रहा है। किसान को अपनी उपज का सही मूल्य दिलाने के लिए डिजिटल मंडियां 2047 तक बिचौलियों की प्रथा को पूरी तरह समाप्त कर देगी। ब्लॉकचेन और IT के कारण भ्रष्टाचार की गुंजाइश खत्म हो गई है। सरकारी योजना का लाभ सीधे फेस रिकॉग्नाइजेशन के जरिए लाभार्थियों तक पहुंचता है। इसके अलावा रामस्वरूप जी के बेटे का शहर में अपना स्टार्टअप है। रामस्वरूप जी की पोती नव्या आज स्कूल नहीं गई, लेकिन उसने अपना होलोग्राफिक चश्मा पहना और वह मेटावर्स के जरिए बेंगलोर के एक वैज्ञानिक के साथ वर्चुअल लैब में प्रयोग कर रही है। दोपहर में रामस्वरूप जी को कुछ थकान महसूस होती है। उनकी स्मार्ट वॉच तुरंत उन्हें उनके स्वास्थ्य का डेटा क्लाउड पर भेजती है। कुछ ही सेकंड में उनके फोन पर संकेत आता है कि उन्हें केवल पानी की कमी है। इस प्रकार तकनीक जीवन रक्षक भी साबित हुई है। टेलीमेडिसिन और AI डायग्नोसिस के कारण ग्रामीण क्षेत्रों में इलाज की लागत 60% तक कम हो गई है। अब डॉक्टर गांव में ही नहीं, परंतु तकनीक के जरिए हर गांव के साथ भी है। ये बदलाव किसी चमत्कार से नहीं आया है, बल्कि सूचना प्रौद्योगिकी की उस क्रांति से आया है जिसे हम विकसित भारत @2047 का लक्ष्य कह रहे हैं। आइए अब हम बात करते हैं अर्थव्यवस्था के डिजिटल स्तंभ की। जब हम विकसित भारत की बात कर रहे हैं तो अर्थव्यवस्था इसका हृदय है और सूचना प्रौद्योगिकी इसकी धमनियां। 2047 तक भारत की अर्थव्यवस्था को $30 ट्रिलियन तक ले जाने के लिए डिजिटल आधार को मजबूत करना अनिवार्य है। भारत ने दुनिया को स्टैक के रूप में एक ऐसा मॉडल दिया है जो आज विकसित देश भी मानने को उत्सुक है। रामस्वरूप जी के बेटे ने शहर में अपना स्टार्टअप करने के लिए नई कंपनी का पंजीकरण घर बैठे मात्र कुछ घंटों में डिजिटल सिग्नेचर और आधार के जरिए कर लिया। यह डिजिटल
इन

इंफ्रास्ट्रक्चर की ताकत है। भारत की डिजिटल पहचान प्रणाली ने बैंकिंग लागत को भी कम कर दिया है और कागजी बाधाओं को भी खत्म कर दिया है। आइए दोस्तों, अब हम चर्चा करते हैं नकदी से डिजिटल तक के सफर के बारे में। 2047 में भारत एक कैशलेस इकोनॉमी की ओर अग्रसर होगा। 2047 तक नकदी का उपयोग लगभग समाप्त हो जाएगा और हर छोटा बड़ा लेन देन डिजिटल होगा। आज भी हम चाय की दुकान से लेकर बड़े मॉल तक यूपीआई का प्रयोग करते हैं। भविष्य में यह तकनीक सीमाओं को पार कर जाएगी, जिससे अंतर्राष्ट्रीय व्यापार बिना किसी मुद्रा परिवर्तन की बाधा के रियल टाइम में होगा। भारतीय डिजिटल बैंक की डिजिटल मुद्रा 2047 तक भौतिक नोटों की जगह ले लेगी, जिससे मुद्रा छपाई और उसके प्रबंधन की लागत बच जाएगी। आइए अब हम एआई और भविष्य की तकनीकों पर चर्चा करें। 2047 के भारत में एआई हर जगह होगा। एआई फॉर ऑल, जैसे स्वास्थ्य सेवाओं में, दूर दराज के क्षेत्रों में एआई आधारित निदान टूल का उपयोग किया जाएगा। टेलीमेडिसिन और रोबोटिक सर्जरी गांव तक पहुंच जाएगी। विकसित भारत एट द रेट ऑफ 2047 में स्वास्थ्य सेवा केवल बीमारी के इलाज तक सीमित नहीं होगी, बल्कि यह निवारक स्वास्थ्य सेवा पर आधारित होगी। 2047 तक भारत के हर नागरिक के पास अपनी एक यूनिवर्सल डिजिटल हेल्थ आईडी होगी। मान लीजिए कि कोई व्यक्ति जो तीर्थ यात्रा पर दक्षिण भारत गए हैं और वहां उनकी तबीयत बिगड़ जाती है, तो वहां के डॉक्टर को पुरानी फाइलों और पर्चियों की आवश्यकता नहीं होगी। वे बस एक क्लिक पर उस व्यक्ति का पूरा मेडिकल इतिहास अपनी स्क्रीन पर देख सकेंगे। इससे गलत इलाज की संभावना शून्य हो जाएगी और समय की भी बचत होगी। इसके अलावा जब हम अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी में आईटी के जादू की बात करते हैं, तब हम ये पाएंगे कि 2047 तक भारत का अपना भारतीय अंतरिक्ष स्टेशन होगा और चंद्रमा पर भारतीयों की बस्ती की चर्चा हो रहेगी। अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी और सूचना प्रौद्योगिकी का संबंध बिल्कुल वैसा ही है जैसा कि एक शरीर और तंत्रिका तंत्र का होता है। जिस प्रकार तंत्रिका तंत्र के बिना शरीर का कोई महत्व नहीं, उसी प्रकार बिना आईटी के अंतरिक्ष की ऊंचाइयों को छूना असंभव है। विकसित भारत एट द रेट ऑफ 2047 के सपने में इसरो की सफलता की हर कहानी के पीछे कोड और डेटा का हाथ होगा। आप और हम सभी अपने घर में बैठकर ये देख पाएंगे कि चंद्रयान 7 चंद्रमा के अंधेरे हिस्से में अपना रास्ता चुन रहा होगा। उसमें लगा एआई गड्ढों को पहचानेगा तथा दुर्घटना से बचाएगा। भारत के पास भविष्य में सैकड़ों उपग्रह होंगे जो हर सेकंड टेराबाइट डाटा भेजेंगे। इस विशाल डाटा को प्रोसेस करके किसान को मौसम की सटीक भविष्यवाणी देना, समुद्रों में मछुआरों को मछलियों के झुंड बतलाना और सीमाओं पर दुश्मन की प्रत्येक हरकत पर नजर रखना एआई के कारण रियल टाइम में संभव होगा। किसी भी रॉकेट को लॉन्च करने से पहले उसे वर्चुअल दुनिया में हजारों बार उड़ाया जाता है। आईटी के माध्यम से रॉकेट का डिजिटल ट्विन्स बनाकर उसकी हर कल्पनीय परिस्थिति जैसे कि हवा, तापमान आदि का प्रशिक्षण सुपर कंप्यूटर पर किया जाएगा। इससे मिशन के फेल होने का खतरा 0.1% से भी कम रह जाएगा। यह डेटा भारत की सुरक्षा और अर्थव्यवस्था को अभेद्य बना देगा। इस प्रकार 2047 का भारत केवल जमीन पर ही विकसित नहीं होगा, बल्कि अंतरिक्ष में भी हमारी डिजिटल पदचाप मजबूती से अंकित होगी। आईटी ने अंतरिक्ष को हमसे दूर नहीं, बल्कि उसे हमारे टैबलेट और फोन की स्क्रीन पर ला खड़ा किया है। इसके अलावा कृषि में भी आईटी का महत्वपूर्ण योगदान है। चूंकि हम जानते हैं कि भारत कृषि प्रधान देश है और 2047 तक लक्ष्य स्मार्ट और टिकाऊ कृषि होगा। फसलों की निगरानी, कीटनाशकों का छिड़काव और मिट्टी की गुणवत्ता जांचने के लिए ड्रोन तकनीक का बड़े पैमाने पर उपयोग होगा। एआई और डेटा एनालिटिक्स का उपयोग करके किसान मौसम और बाजार की मांग का पहले से अनुमान लगा सकेंगे। शहरों में छत पर या घर के अंदर खेती करने के लिए आईटी सक्षम सिस्टम का उपयोग किया जाएगा।
अब हम बात करेंगे ग्रीन

टेक और सस्टेनेबिलिटी के बारे में कि किस तरह तकनीक का उपयोग कर हम पर्यावरण को भी सुरक्षित कर सकते हैं। 2047 का भारत नेट जीरो उत्सर्जन की दिशा में दुनिया का नेतृत्व करेगा। आईटी और एआई दोनों मिलकर संसाधनों की बर्बादी को रोकेंगे और पृथ्वी को हरा भरा रखने में मदद करेंगे। अगर हम बात करें बिजली उत्पादन और ऊर्जा प्रबंधन के बारे में तो 2047 तक भारत में बिजली की बर्बादी लगभग शून्य हो जाएगी। बिजली का उत्पादन करना ही काफी नहीं है बल्कि उसे बचाना और सही ढंग से बांटना भी जरूरी है। इसके लिए आजकल छतों पर लगने वाले सोलर पैनल अब एआई आधारित स्मार्ट ग्रिड से जुड़े हैं। जब हमारे घरों में बिजली की खपत कम होती है तो यह स्मार्ट सिस्टम अतिरिक्त बिजली की खुद ही पास के सरकारी ग्रिड को बेच देता है। इसके अलावा शुद्ध खेती, जल संरक्षण, ड्रिप इरिगेशन सिस्टम आदि क्षेत्रों में भी आईटी का महत्वपूर्ण योगदान है। 2047 के शहर सेंसर और डेटा से लैस होंगे। स्मार्ट कचरा डिब्बे खुद ही नगर निगम को सूचित करेंगे कि वे भर चुके हैं। एआई कचरे के पृथक्करण में मदद करेगा ताकि रिसाइकलिंग को बढ़ावा मिल सके। हर उत्पाद के साथ उसका डिजिटल फुटप्रिंट जुड़ा होगा जिससे उपभोक्ता को पता चलेगा कि उस उत्पाद को बनाने में कितना कार्बन उत्सर्जन हुआ है। इसके साथ साथ 2047 के भारत में इलेक्ट्रॉनिक कारों के साथ साथ एआई तकनीक पर आधारित कार भी देखने को मिलेगी जो सबसे छोटे तथा कम ट्रैफिक वाले रास्ते से ले जाएगी। सूचना प्रौद्योगिकी ने कागज की जरूरत को भी कम कर दिया है। डिजिटल लॉकर और डिजिटल सिग्नेचर के कारण हर साल लाखों पेड़ों को काटने से बचाया जा रहा है। इसी क्रम में हम कुछ तथ्यों पर नजर डालते हैं। एआई के उपयोग से वैश्विक कार्बन उत्सर्जन को 2030 तक ही 4% कम किया जा सकता है जो 2047 तक और बढ़ेगा। भारत का स्मार्ट सिटी मिशन पूरी तरह से आईटी आधारित सस्टेनेबिलिटी पर टिका है। 2047 तक भारत की 50% से अधिक ऊर्जा जरूरतें ग्रीन टेक और नवीकरणीय स्रोतों से पूरी होगी जिसका प्रबंधन स्मार्ट सॉफ्टवेयर द्वारा होगा। 2047 तक भारत में ड्रोन टैक्सी आम बात होगी जो एआई द्वारा नियंत्रित ट्रैफिक सिस्टम पर चलेगी। भारत दुनिया के सबसे बड़े एआई टैलेंट पूल का घर होगा और दुनिया का हर चौथा एआई एक्सपर्ट भारतीय होगा। भाषा की दीवार पूरी तरह खत्म हो जाएगी। रियल टाइम एआई अनुवादक के जरिए एक तमिल भाषीय व्यक्ति एक कश्मीरी व्यक्ति से अपनी भाषा में बात कर सकेगा। 2047 का भारत 5G से बहुत आगे निकलकर 6G और सैटेलाइट इंटरनेट के युग में होगा। 6G की गति इतनी तेज होगी कि लंदन में बैठा एक डॉक्टर भारत की किसी सुदूर गांव में रोबोटिक सर्जरी कर सकेगा जैसे कि वह वहीं मौजूद है। अब हम सूचना प्रौद्योगिकी की चुनौतियों और सुरक्षा कवच पर चर्चा करेंगे। विकसित भारत @ 2047 के निर्माण में जहां सूचना प्रौद्योगिकी एक महाशक्ति है वहीं इस डिजिटल किले की सुरक्षा करना सबसे बड़ी चुनौती है। जैसे जैसे हम पूरी तरह से डिजिटल होंगे हमारी चुनौतियां भी भौतिक से बदलकर आभासी हो जाएंगी। सूचना प्रौद्योगिकी की इस तेज रफ्तार में दो मुख्य चुनौतियां हैं, डिजिटल डिवाइड यानी तकनीकी खाई और साइबर सुरक्षा। पहले हम बात करते हैं डिजिटल डिवाइड की, अर्थात कोई पीछे ना छूटे। विकसित भारत का सपना तब तक अधूरा है जब तक तकनीक का लाभ अंतिम छोर पर बैठे व्यक्ति तक ना पहुंचे। हमारे सामने यह चुनौती होगी कि गांव के बुजुर्ग और कम पढ़े लिखे लोग भी एआई का उपयोग कर सकेंगे। इस समस्या का समाधान है भारत सरकार का भाषिणी एआई प्रोजेक्ट। यह भाषा की दीवार को तोड़ता है। अगर किसी व्यक्ति को टाइप करना नहीं आता तो वह अपनी स्थानीय भाषा में टैबलेट से बात करेगा और एआई उन्हें उनकी भाषा में जवाब देता है। यह वॉइस बेस्ड आईटी की असली डिजिटल समावेशन है। इसके अलावा हमारे सामने एक चुनौती साइबर सुरक्षा भी है, क्योंकि जैसे जैसे हमारा डेटा क्लाउड पर बढ़ेगा साइबर हमले, डेटा चोरी

पास ऐसे एल्गोरिदम होंगे जो पलक झपकते ही आसानी और असली और नकली सूचना के बीच फर्क बता देंगे। श्रोताओं, आज हमने रामस्वरूप जी के खेत से लेकर नव्या की वर्चुअल क्लास तक और मंगल ग्रह के मिशन से लेकर साइबर सुरक्षा के कवच तक की यात्रा की, विकसित भारत एट द रेट ऑफ 2047 का सपना केवल सुपर कंप्यूटरों तथा तेज इंटरनेट में नहीं, बल्कि उन 140 करोड़ भारतीयों के जीवन में आने वाले सुख और सुविधा में छुपा है। सूचना प्रौद्योगिकी वह सेतु है जिसने भारत के गौरवशाली इतिहास को उसके उज्जवल भविष्य से जोड़ दिया है। आज का हमारा एक क्लिक, एक कोड और एक नवाचार हमें 2047 के उस स्वर्ण युग की ओर ले जा रहा है जहां भारत फिर से विश्व गुरु कहलाएगा। अंत में मैं कुछ पंक्तियों से अपनी वाणी को विराम दूंगा। कलम वही है पर स्याही अब डिजिटल हो चली है। कलम वही है पर स्याही अब डिजिटल हो चली है। प्रगति की नई गाथा अब कोड में ढली है। 2047 की दहलीज पर खड़ा ये न्यू इंडिया कहता है, हमारी रंगों में, हमारी रगों में अब बस डेटा और जज्बा बहता है। चुनौतियां हैं, मुश्किलें हैं, पर संकल्प हमारा भारी है। चुनौतियां हैं, मुश्किलें हैं, पर संकल्प हमारा भारी है। सत्यमेव जयते के साथ अब जय अनुसंधान की बारी है। मिट्टी की तो खुशबू अब कोड के साथ महकेगी, विकसित भारत की है ज्योति पूरी दुनिया में चमकेगी। न कोई बिचौलिया होगा, न भ्रष्टाचार का साया होगा, डिजिटल इंडिया ने हर एक सीधे हाथ पहुंचाया होगा। साइबर के उस कवच से हम अपनी साख बचाएंगे और 2047 की सुबह हम विश्व गुरु कहलाएंगे। जय हिंद, जय विज्ञान, जय भारत, जय तिरंगा।

युवा दोस्तों, आप बार सुन रहे था विकसित भारत में सूचना प्रौद्योगिकी। योगदान वार्ताकार थे अंकित तिवारी।

यो दोस्तों, आप अबार सुनी वार्ता और हमें आप सुनो आप यारो सो मीठो सो गीत।

युवा दोस्तों, आप बार सुन रहा था सीमा मिश्रा री आवाज में आप यार सु गीत। और इन गीत सु पहला आप बात कर रहा था पेट्रोलियम पदार्थों रो करे सीमित उपयोग, इन बारे में आप बात करा। तो आपने बतावा कि पेट्रोलियम पदार्थों ने सीमित उपयोग करने वास्ते कहो जा रहे है, क्योंकि पेट्रोल डीजल आदि रो सीमित उपयोग समय री सबसे बड़ी मांग है। इनसु न केवल अपारे पैसों की बचत हुए है, बल्कि पर्यावरण प्रदूषण भी कम हो जावे है और देश की ऊर्जा सुरक्षा मजबूत हुए है। इनसु कई सारा लाभ है। इन वास्ते कहो जावे है कि पेट्रोलियम पदार्थों रो सीमित उपयोग समय की सबसे बड़ी मांग बोली गई है। सीमित उपयोग रा प्रभावी तरीका किन तरह सु है, तो आपने बतावा कि सार्वजनिक परिवहन रो उपयोग करा, निजी वाहनों रे बजाय बसों ट्रेनों और मेट्रो रो ज्यादा से ज्यादा प्रयोग करा, कारपूल रो उपयोग करें। यदि आप ऑफिस या कॉलेज रो रास्तो एक ही है, तो सहकर्मियों या दोस्तों के साथ में एक ही गाड़ी मथे साझा करके आप ऑफिस या कॉलेज पहुंचने की कोशिश करो। छोटी दूरी वास्ते पैदल या साइकिल रो उपयोग करो, पास री दुकानों या जगहों पर थे जाउन वास्ते साइकिल रो इस्तेमाल करा, या पैदल ही चल के उन स्थान माथे जा सका। हाँ, स्मार्ट ड्राइविंग यानी कि ट्रैफिक सिग्नल माथे गाड़ी रो इंजन बंद कर दा, समय समय माथे गाड़ी री सर्विसिंग और टायर रो प्रेशर सही रखन वास्ते ईंधन री खपत भी कम हुए है। नवीनीकरणीय ऊर्जाओं ने अपनाओ, जाकि दैनिक जीवन में सौर ऊर्जा और इलेक्ट्रिक वाहनों रो अपनाउन रो माथे जोर दियो गयो है। भविष्य री सुरक्षा पेट्रोलियम और अनवीनीकरणीय संसाधन है, जिनसु बन नाला लाखों वर्ष लगे है, और यदि आप इनरी समझदारी से उपयोग ना करो तो आने वाली पीढ़ियों के वास्ते समाप्त हो सके है। पर्यावरण संरक्षण के वास्ते भी पेट्रोलियम पदार्थों री सीमित उपयोग करना जरूरी है, क्योंकि इनरे अत्यधिक दहन सु कार्बन डाइऑक्साइड और अन्य जहरीली गैसों निकले है, जिको कि ग्लोबल वार्मिंग रे कारण बने हैं। सीमित उपयोग सु अपा जलवायु परिवर्तन और गंभीर प्रभावों सु भी बच सका। हाँ, तो दोस्तों आ बात हुई कि किन तरह सु पेट्रोलियम पदार्थों रो कम उपयोग करो और सीमित उपयोग करो, ताकि आपरो पर्यावरण संरक्षण भी बनियो रहे और इनरे साथ में पैसों की भी बचत हो जावे, पर्यावरण प्रदूषण भी नहीं होवे और देश की ऊर्जा भी सुरक्षा और मजबूत हो सके। तो दोस्तों आज ही आप विचार करा कि पेट्रोलियम पदार्थों रो कम से कम उपयोग करो, जितो हो सके आप पैदल चला साइकिल रो उपयोग करो, और पैदल चलन रे वास्ते सुबी अपारे शरीर भी सही रहे है। इन वास्ते दोस्तों कई सारा लाभ अपने पेट्रोलियम पदार्थों ने बचावन सु मिल सके है। आ बात हुई पेट्रोलियम पदार्थों रे करे सीमित उपयोग रे बारे में। आगे आप बातचीत कर सा संगीत और सुकून रे बारे में। तो दोस्तों पहले आप सुनो आ संदेश।

जनगणना के पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके मकान की गणना होगी। आइए आपकी साझेदारी से इसे सफल बनाएं और विकसित भारत 2047 की ओर एक और कदम बढ़ाएं।

जनगणना के पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके मकान की गणना होगी। आइए आपकी साझेदारी से इसे सफल बनाएं और विकसित भारत 2047 की ओर एक और कदम बढ़ाएं।

परसों लया था संदेश, और इन संदेश से पहला आप बात कर रहा था संगीत और सुकून रे रिश्ते रे बारे में। तो आपने बताओ कि संगीत और सुकून रो रिश्तो बहुत ही गहरू है। संगीत भावनाओं रो ओ प्रवाह है जो कि मन ने शांत करे है और आपने सुकून पहुंचावे है। आ केवल ध्वनि को नहीं है बल्कि मानसिक शांति और तनाव में राहत पावन रो एक अचूक माध्यम है। संगीत की है आपने बताओ तो भारतीय संगीत रो इतिहास बेहद ही प्राचीन है और समृद्ध है। इन्होंने सात मूल स्वर जो कि सा रे गा मा पा धा नी सा सु मिलकर एड़ी धुनों बनाई गई है जिसको कि सीधा दिल ने छू जावे है। यानी अगर आप गम में भी हुआ तो अगर संगीत ने सुनियो जावा तो दिल थोड़ो हल्को हो जावे है, और अगर आप खुशी में संगीत ने शामिल करो तो भी दिल थोड़ो और ज़्यादा खुश हो जावे है। तो अगर आप कहवा तो संगीत रो सीधो रिश्तो मन सु हृदय सु और दिल सु है। तो जब आप संगीत मन तक हृदय तक पहुंच सके है तो आपारी हर शरीर रे हर एक अंग में एक स्फूर्ति और उत्साह भर देवे है। अगर कदे भी जीवन में गम आवे दुख आवे और परेशानियों से घिर जावा तो सबसे पहलो काम कि शांत रह के संगीत सुना ताकि आपका दिल आपने सही सलाह दे सके और सही रास्ते मथे ले जा सके। तो दोस्तों सुकून रो एहसास आपने संगीत सु हो जावे है। जब संगीत आपारी पसंद रो और आपारे मूड रे अनुकूल यानी कि आपारे विचारों रे अनुकूल हुए है तो मस्तिष्क में खुशी देव नाला हारमोन्स भी बढ़ जावे है और रोजमर्रा की भागदौड़ चिंता और थकान ने मिटाकर भीतर एक शांति या सुकून ने पहुँचावे है। संगीत और सुकून रो संगम इन तरह से है कि ज्या की आपने बतावा कि शास्त्रीय संगीत रागों माथे आधारित संगीत ज्या की बांसुरी या सितार वादन मन ने एकाग्र और शांत करने वास्ते सबसे उत्तम होनियो जावे है। लोफाई संगीत यानी कि आजकल री धीमी और गुंजनारी धुनों तनाव ने दूर करने वास्ते बहुत ही ज़्यादा लोकप्रिय है। पुराना गीत पुराने दौर रे रोमांटिक और भावपूर्ण गीत मीठी यादों ने ताज़ा सुकून देवे है। तो दोस्तों आ बात हुई संगीत और सुकून के बारे में, आगे आप और बात कर सा। पहले आप सुनो आ प्यारो सो मीठो सो संगीत यानी कि प्यारो सो मीठो सो गीत, क्योंकि बातचीत संगीत री चल रही है तो सुकून और गीत रे साथ में आपने आ प्यारो सो मीठो सो गीत सुनना बहुत जरूरी है।

युवा दोस्तों, आप बार सुन रहा था सीमा मिश्रा री आवाज में आप यारो संगीत और इनकी सुपेला आप बात कर रहा था संगीत और सुकून रे बारे में। तुम्हें आपने बताया कि किन तरह से संगीत रो बहुत ही गहरो रिश्तो है सुकून सु। संगीत और सुकून एक दूसरे रा पूरक कया जावे है। शब्दों सुपर ये सुरीली धुनों और सूफियाना गीत जिको की आपारे दिल ने, मन ने, आत्मा ने और हृदय ने एक तरह से बहुत ही ज़्यादा सुकून प्राप्त करावे है। तो दोस्तों, ने आपने बताया कि किन तरह से संगीत आपारे जीवन में जद भी आवे है एक नयो अनुभव ले आवे है। संगीत और सुकून रो रिश्तो बहुत ही गहरो है। संगीत भावनाओं और रो ओ प्रवाह है जिको कि मन ने शांत कर देवे है और आपाने सुकून पहुंचावे है। ए केवल ध्वनि को नहीं है बल्कि मानसिक शांति और तनाव से राहत पावन रो एक अचूक माध्यम है। तो दोस्तों, इन बात रे साथ में ही समय हो गयो है आप सुविधा लेवन रो। फिर मिलसो नई बातों रे साथ में। तक मौजू करो इंतजार। राम राम।

अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम युववाणी। हम आकाशवाणी जैसलमेर के गोल्डन सिटी चैनल से बोल रहे हैं, एफएम बैंड 101.8 मेगाहर्ट्ज़ पर। प्रस्तुत है कार्यक्रम विवरण।

शाम 7:30 पर आप सुनेंगे शास्त्रीय संगीत का कार्यक्रम। रात्रि 8 बजे आप सुनेंगे फिल्म संगीत।

ये आकाशवाणी जैसलमेर का गोल्डन सिटी चैनल है, एफएम बैंड 101.8 MHz पर। आइए सुनते हैं हमारा दैनिक कार्यक्रम रामचरित मानस।

पूरी अयोध्या नगरी में हर्षोल्लास छाया है। माता के आग्रह पर जगत के स्वामी ने बाल रूप के रुदन से जननी की शंकाएं दूर कर दी हैं। शिशु के रोने की अत्यंत प्रिय ध्वनि सुनकर अन्य रानियां तथा दास दासियां हर्षित हो दौड़ पड़ी। पुत्र जन्म का समाचार सुनकर महाराज दशरथ को परम आनंद हुआ। राजप्रसाद वाद्य यंत्रों की मंगल ध्वनि से गूंजने लगे। जात कर्म संस्कार आदि करके ब्राह्मणों को सोना गौएं मणिमाणिक आदि दान स्वरूप भेंट किए गए। जगह जगह तोरण द्वार आदि बने हैं। आकाश से पुष्प वर्षा हो रही है। स्त्रियां सोने के कलश तथा थाल में मंगल द्रव्य लेकर राजमहल में प्रवेश कर रही हैं। घर घर बधावे बज रहे हैं। कैकेयी तथा सुमित्रा ने भी सुंदर पुत्रों को जन्म दिया है। पूरी नगरी इस प्रकार सजी धजी है जैसे सारे श्रृंगार करके रात्रि स्वामी से मिलने आई हो, किंतु सूर्य का प्रकाश देखकर लजा गई हो। राजमहल वेद पाठ की कोमल ध्वनि से गूंज रहा है।

आकाशवाणी जैसलमेर का ये गोल्डन सिटी चैनल है, एफएम बैंड 101.8 मेगाहर्ट्ज़ पर। आइए सुनते हैं भक्ति संगीत का कार्यक्रम वंदना।

ये आकाशवाणी जैसलमेर का गोल्डन सिटी चैनल है, एफएम बैंड 101.8 MHz पर। श्रोताओं, शाम के 6:30 होने को है। अब से थोड़ी देर में आप सुनेंगे हिंदी में प्रादेशिक समाचार और 6:45 पर राजस्थानी में प्रादेशिक समाचार, जिसका प्रसारण हमारे आकाशवाणी जयपुर अजमेर के केंद्र से करेंगे। कृपया प्रतीक्षा करें।

जयपुर अजमेर से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। मुख्य समाचार। सर्वोच्च न्यायालय ने जाति आधारित जनगणना कराने के केंद्र के फैसले को चुनौती देने वाली याचिका खारिज की। प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी 2.0 के तहत राज्य में 5,000 से अधिक नए आवास बनाए जाएंगे। सहकारी मॉडल पर आधारित देश की पहली भारत टैक्सी सेवा अगले महीने से जयपुर में शुरू होगी और राज्य के अधिकांश भाग भीषण गर्मी और लू की चपेट में, अगले 3 दिन लू से राहत के आसार नहीं।

0: पीठ ने कहा है कि इस तरह के आंकड़े एकत्र करने में कोई बुराई नहीं है और मामले में हस्तक्षेप करने से इनकार कर दिया। देश के अलग अलग हिस्सों में रेलगाड़ियों में लगी आग की हालिया घटनाओं की जांच में कई मामलों में असामाजिक तत्वों की संलिप्तता का पता चला है। सूत्रों ने बताया कि रेलवे ने इन घटनाओं को गंभीरता से लिया है और रेलवे सुरक्षा बल मामले की गहन जांच कर रहा है। इनमें राजस्थान की भी दो घटनाएं शामिल हैं। पाली के अमरपुरा स्टेशन के पास एक घटना में एक अज्ञात व्यक्ति ने एक कोच के अंदर कपड़े में आग लगाने की कोशिश की, जिससे आग लग गई। इसी तरह कोटा में राजधानी एक्सप्रेस में लगी आग की शुरुआत भी बाथरूम क्षेत्र से शुरू हुई बताई जा रही है। भारतीय रेलवे ने आग लगने की हालिया घटनाओं के मद्देनजर यात्रियों की सुरक्षा सुनिश्चित करने की अपनी प्रतिबद्धता दोहराई है। रेलवे ने कहा है कि अमरपुरा जैसी घटनाओं में रेलवे कर्मचारियों की त्वरित कार्रवाई से बड़ी दुर्घटनाओं को टालने में मदद मिली है। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ग्राम विकास चौपाल की कड़ी में आज बांसवाड़ा के चुड़ादा गांव में रात्रि चौपाल में ग्रामीणों के साथ संवाद करेंगे। वहीं कल सुबह गांव का पैदल भ्रमण कर लोगों से बातचीत करेंगे। गौरतलब है कि ग्राम विकास चौपालों के माध्यम से मुख्यमंत्री ग्रामीणों से सीधा संवाद कर रहे हैं, साथ ही सरकार की कल्याणकारी योजनाओं के बारे में फीडबैक भी ले रहे हैं। मुख्यमंत्री का कल डूंगरपुर पहुंचने का कार्यक्रम है। वे 84 क्षेत्र के धम्बोला गांव में ग्राम विकास चौपाल करेंगे। पेट्रोलियम कंपनियों ने कहा है कि प्रदेश में पेट्रोल डीजल और एलपीजी का पर्याप्त स्टॉक उपलब्ध है और किसी भी प्रकार की चिंता की जरूरत नहीं है। मुख्य सचिव वी श्रीनिवास ने आज प्रमुख तेल कंपनियों के प्रतिनिधियों के साथ पेट्रोलियम उत्पादों और एलपीजी की उपलब्धता की समीक्षा बैठक की। कंपनियों के राज्य स्तरीय समन्वयक मनोज गुप्ता ने बताया कि सार्वजनिक क्षेत्र की तेल कंपनियां इंडियन ऑयल, बीपीसीएल और एचपीसीएल वैश्विक अनिश्चितताओं के बावजूद प्रदेश में पेट्रोल और डीजल और एलपीजी की निर्बाध आपूर्ति बनाए हुए हैं। सभी आउटलेट पर ईंधन वितरण सुचारू रूप से चल रहा है। श्री गुप्ता ने नागरिकों से घबराहट में ईंधन का अनावश्यक भंडारण नहीं करने का अनुरोध किया है। साथ ही ईंधन उपलब्धता से संबंधित प्रामाणिक और सत्यापित जानकारी के लिए केवल तेल विपणन कंपनियों द्वारा जारी आधिकारिक सूचनाओं पर ही भरोसा करने को कहा है। बैठक में IOCL, BPCL, HPCL, GOBP और नायरा सहित प्रमुख तेल कंपनियों के अधिकारी मौजूद रहे। इस बीच राज्यसभा सांसद और भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौर ने आज प्रेस वार्ता में कहा कि अन्य देशों की तुलना में हमारे यहाँ हालात बेहतर और नियंत्रण में है। श्री राठौर ने आमजन से अपील की कि वे पेट्रोल और डीजल का आवश्यकता के अनुसार सोच समझकर उपयोग करें।
1: कोई स्टॉक खत्म नहीं है, बराबर मिल रहा है, वितरण व्यवस्था भी बराबर है, पेट्रोल पंप्स पर भी उपलब्ध है। फिजूल खर्ची नहीं होना चाहिए और आपके माध्यम से मैं देश की जनता का भी आह्वान करना चाहूंगा कि इन परिस्थितियों में संयमित तरीका अपनाएं, व्यवस्थित रूप से उपयोग में लें, आवश्यक काम सभी करें, कोई दिक्कत की बात नहीं है, जो जरूरी है वो सब काम करें, लेकिन व्यर्थ एक्सपेंसेस से बचें, फालतू अपव्यय से बचें, इसका जरूर ध्यान रखने की जरूरत है।
0: प्रदेश के आंगनबाड़ियों में अब बच्चों को उपमा की जगह पौष्टिक न्यूट्री पुलाव परोसा जाएगा। उप मुख्यमंत्री और महिला एवं बाल विकास मंत्री दिया कुमारी ने आज शासन सचिवालय में इस नए न्यूट्री पुलाव के सैंपल का स्वाद चखा। उन्होंने कहा कि ये पुलाव बच्चों के स्वाद के ज्यादा अनुकूल है। उप मुख्यमंत्री ने विभाग को इसे जल्द आंगनबाड़ियों में उपलब्ध करवाने को कहा है। इसके साथ ही उन्होंने नाश्ते में दिए जा रहे मुरमुरे के स्थान पर भी समान दरों में कोई अन्य बेहतर और पौष्टिक विकल्प तैयार करने के निर्देश दिए हैं। ये समाचार आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रसारित किए जा रहे हैं। प्रादेशिक समाचार बुलेटिन आप हमारे एक्स हैंडल @AIRNews_Jaipur, यूट्यूब चैनल राजस्थान AIR न्यूज और फेसबुक AIR न्यूज राजस्थान पर भी सुन सकते हैं। राज्य में प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी 2.0 के तहत विभिन्न नगरीय निकायों में करीब 5,000 नए आवास बनाए जाएंगे।

0: इसके लिए हरेक लाभार्थी को स्वयं का पक्का आवास बनाने के लिए 2.5 लाख रुपए की अनुदान राशि दी जाएगी। मुख्य सचिव वी श्रीनिवास ने आज जयपुर में प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी 2.0 के लिए गठित राज्य स्तरीय सैंक्शनिंग और मॉनिटरिंग कमेटी की बैठक ली। बैठक में बताया गया कि योजना के तहत केंद्र सरकार की ओर से 1.5 लाख रुपए और राज्य सरकार की ओर से 1 लाख रुपए की अनुदान राशि दी जाएगी। इसके तहत कुल 125 करोड़ 60 लाख की सब्सिडी प्रदान की जाएगी। इन आवासों के लिए अंतिम मंजूरी केंद्र सरकार की 26 मई को होने वाली CSMC बैठक में मिलेगी। प्रदेश में स्वच्छ सर्वेक्षण 2025-26 की तैयारियों के तहत विभिन्न शहरों में विशेष स्वच्छता अभियान चलाए जा रहे हैं। जोधपुर नगर निगम द्वारा मुख्य मार्गों और सार्वजनिक स्थलों पर वॉल पेंटिंग की जा रही है। इसके तहत राजस्थानी संस्कृति और पर्यावरण संरक्षण पर आधारित कलाकृतियों के माध्यम से स्वच्छता का संदेश दिया जा रहा है, जिससे पुराने कचरा पॉइंट अब आकर्षक सेल्फी पॉइंट में बदल गए हैं। पाली नगर निगम द्वारा शहर को सुंदर बनाने के लिए सिटीजन फीडबैक अभियान चलाया जा रहा है। निगम आयुक्त नवीन भारद्वाज ने नागरिकों से QR कोड स्कैन कर फीडबैक देने और शहर को बेहतर रैंक दिलाने में सहयोग की अपील की है। सहकारी मॉडल पर आधारित देश की पहली भारत टैक्सी सेवा अगले महीने से जयपुर में भी उपलब्ध होगी। सहकारिता राज्य मंत्री गौतम कुमार दत्त ने आज जयपुर में आयोजित सारथी संवाद कार्यक्रम में ये जानकारी दी। उन्होंने बताया कि दिल्ली, मुंबई और लखनऊ के बाद अब जयपुर में भी ये अनूठी सेवा शुरू होने जा रही है। ये आमजन को किफायती और सुरक्षित सफर का विकल्प देगी। श्री दत्त ने कहा कि इस सहकारी सेवा में कोई बाहरी कंपनी मालिक नहीं होगी, बल्कि टैक्सी चलाने वाले चालक यानी सारथी ही इसके वास्तविक मालिक होंगे। इससे चालकों को निजी कंपनियों की मनमानी और हिडन चार्जेस से मुक्ति मिलेगी। इस अवसर पर मौजूद टैक्सी चालकों ने भी इस स्वदेशी सहकारी पहल की सराहना की। पश्चिम मध्य रेलवे मुख्यालय ने कोटा मंडल के 3 रेलवे स्टेशनों को जंक्शन स्टेशन घोषित किया है। रेल प्रशासन की इस घोषणा के बाद अब गंगापुर सिटी, रामगंज मंडी और गुडला स्टेशनों को जंक्शन के नाम से जाना जाएगा। नई रेल लाइनों और कॉर्ड तथा बाईपास के लाइन से शुरू होने से इन स्टेशनों का दर्जा बढ़ाया गया है। रेलवे अधिकारियों ने बताया कि इन स्टेशनों के वर्तमान अल्फाबेटिकल और न्यूमेरिकल कोड पहले की तरह यथावत रहेंगे, केवल उनके नाम के आगे जंक्शन शब्द जोड़ा गया है। राज्य में अधिकांश भाग भीषण गर्मी और लू की चपेट में है, इससे जनजीवन प्रभावित हो रहा है। दोपहर के समय सड़कें सूनी नजर आ रही हैं, वहीं बाजारों में सन्नाटा पसरा हुआ है। प्रशासन की ओर से गर्मी से बचाव के लिए विभिन्न स्थानों पर छाया के प्रबंध किए गए हैं और सड़कों पर पानी का छिड़काव किया जा रहा है। लोगों के साथ साथ पशु और पक्षियों को गर्मी से बचाने के लिए जगह जगह पीने के पानी की व्यवस्था की गई है। मौसम विभाग ने आने वाले दिनों में कई जिलों के लिए हीट वेव का अलर्ट जारी किया है। बीते 24 घंटों में 46.5 डिग्री सेल्सियस अधिकतम तापमान के साथ श्रीगंगानगर सबसे गर्म दिन रहा। वहीं बीकानेर में सबसे गर्म रात दर्ज की गई, जहां पारा 31.1 डिग्री सेल्सियस पर पहुंच गया। अलवर, कोटा, चित्तौड़गढ़, फलौदी, बीकानेर और चूरू में अधिकतम तापमान 44 डिग्री सेल्सियस से ऊपर मापा गया। वहीं राजधानी जयपुर में तापमान 42.5 डिग्री रिकॉर्ड हुआ। और ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
1: प्रदेश में भीषण गर्मी और गर्म हवाएं लोगों को परेशान कर रही हैं। ज्यादातर जिलों में दिन का पारा 42 से 46 डिग्री, वहीं रात का तापमान 46 से 31 डिग्री सेल्सियस के बीच दर्ज किया जा रहा है। इस बीच चिकित्सा मंत्री गजेंद्र सिंह खींवसर ने अस्पतालों में हीट वेव प्रबंधन को लेकर सभी जरूरी इंतजाम करने के निर्देश दिए हैं। अस्पतालों में हीट स्ट्रोक के मरीजों के लिए अलग से बेड आरक्षित रखने, जरूरी दवाइयां उपलब्ध कराने के साथ छाया और पेयजल का प्रबंध करने को कहा गया है। जितेंद्र द्विवेदी, आकाशवाणी समाचार, जयपुर।
0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 31 मई को आकाशवाणी के मन की बात कार्यक्रम में अपने विचार साझा करेंगे। ये इस मासिक रेडियो कार्यक्रम की 134वीं कड़ी होगी। इसके लिए श्रोता अपने सुझाव टोल फ्री नंबर 1800-11-7800 पर भेज सकते हैं। नरेंद्र मोदी ऐप और MyGov ओपन फोरम के

माध्यम से भी विचार भेजे जा सकते हैं। ये सुझाव 29 मई तक स्वीकार किए जाएंगे। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। सर्वोच्च न्यायालय ने जाति आधारित जनगणना कराने के केंद्र के फैसले को चुनौती देने वाली याचिका खारिज की। प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी 2.0 के तहत राज्य में 5,000 से अधिक नए आवास बनाए जाएंगे। सहकारी मॉडल पर आधारित देश की पहली भारत टैक्सी सेवा अगले महीने से जयपुर में शुरू होगी और राज्य के अधिकांश भाग भीषण गर्मी और लू की चपेट में, अगले 3 दिन लू से राहत के आसार नहीं। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।

ये आकाशवाणी जयपुर अजमेर है। अब आप रितिका गुप्ता से चूरू जिले की चिट्ठी सुनिए। इसका आलेख श्रवण कुमार शर्मा ने तैयार किया है। चूरू जिले के तालछापर अभयारण्य और उसके आसपास के करीब 22 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र को इको सेंसिटिव जोन घोषित किया गया है। केंद्रीय वन और पर्यावरण मंत्रालय की ओर से इस बारे में अधिसूचना जारी की गई है। ये ESZ चाडवास, देवानी, रामपुर, सूरवास और छापर कस्बे में स्थित है। अभयारण्य में काले हिरणों और प्रवासी पक्षियों के कुदरती रहवास को खनन और प्रदूषण से बचाने के लिए ये अधिसूचना जारी की गई है। इसके अनुसार क्षेत्र में व्यावसायिक खनन, प्रदूषण फैलाने वाले उद्योगों और भारी निर्माण कार्यों पर प्रतिबंध रहेगा। जिला कलेक्टर अभिषेक सुराणा की अध्यक्षता में अभयारण्य इको सेंसिटिव जोन मॉनिटरिंग कमेटी की बैठक हुई। श्री सुराणा ने बताया कि संरक्षित क्षेत्र की सीमा से 1 किलोमीटर के अंतर तक किसी नए होटल रिसोर्ट बनाने और व्यावसायिक निर्माण की अनुमति नहीं होगी। उन्होंने सभी विभागों से आपसी तालमेल के साथ काम करते हुए अभयारण्य क्षेत्र की जैव विविधता और कुदरती वातावरण के संरक्षण के लिए प्रभावी कदम उठाने को कहा। जिले में इन दिनों मकान सूचीकरण और गणना का काम चल रहा है। जनगणना 2027 के तहत जिले के 21 क्षेत्रों में प्रगणक घर घर पहुंचकर मकानों से संबंधित जरूरी जानकारियां इकट्ठा कर रहे हैं। जनगणना के दौरान प्रगणकों को लोगों का भरपूर सहयोग मिल रहा है। जिला कलेक्टर ने भी नागरिकों से जनगणना कर्मियों को आवश्यक सहयोग देने और मांगी गई जानकारी सटीक तरीके से उपलब्ध कराने की अपील की है। प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत जिले के 2000 से अधिक परिवारों को मकान बनाने के लिए सरकार की ओर से आर्थिक सहयोग दिया गया है। जिन लोगों के पास खुद का आशियाना नहीं था, उन्हें इस योजना से काफी मदद मिली है। गौरतलब है कि इस योजना के तहत पात्र लाभार्थियों को शहरी क्षेत्र में आवास निर्माण के लिए विभिन्न किस्तों में 2.5 लाख रुपए तक की, वहीं ग्रामीण क्षेत्रों में 1.25 लाख रुपए तक की वित्तीय सहायता उनके बैंक खातों में दी जाती है। ग्रामीण क्षेत्रों में इस योजना का लक्ष्य 2028-2029 तक बढ़ाया गया है। जिले में सुकन्या योजना बालिकाओं के लिए लाभदायक साबित हो रही है। इसके तहत नवजात से लेकर 10 साल तक की बालिकाओं का बैंक खाता खोला जाता है। इसमें कम से कम 250 रुपए और अधिकतम 1.5 लाख रुपए सालाना तक का निवेश किया जा सकता है, जो पूरी तरह टैक्स फ्री होता है। खाता खोलने की तारीख से 21 साल या बेटी की शादी के समय मैच्योरिटी राशि ली जा सकती है। जिले में 853 से अधिक बालिकाओं के खाते पोस्ट ऑफिस में खोले जा चुके हैं। मुख्यमंत्री विश्वकर्मा पेंशन योजना के तहत जिले में 21 मई को आवेदन शिविर लगाया जाएगा। रतन नगर नगर पालिका सभागार में ये शिविर लगेगा। राज्य बीमा और प्रावधायी निधि विभाग के सहायक निदेशक गणपत राम चौधरी ने बताया कि योजना के तहत पात्र आवेदकों को 3000 रुपए महीने का लाभ मिल सकता है। वित्त विभाग ने श्रमिकों, रेहड़ी पटरी पर सामान बेचने वालों और लोक कलाकारों को संबल प्रदान करने के लिए ये योजना शुरू की थी। चूरू में पिछले दिनों प्रतिबंधित प्लास्टिक के खिलाफ नगर परिषद की ओर से बड़ी कार्रवाई की गई। नगर परिषद आयुक्त अभिलाषा सिंह ने बताया कि शहर के अलग अलग व्यावसायिक क्षेत्रों में औचक निरीक्षण कर करीब 600 किलो प्रतिबंधित प्लास्टिक कैरी बैग्स जब्त किए गए। उन्होंने व्यापारियों, थोक विक्रेताओं और आम नागरिकों से सिंगल यूज प्लास्टिक कैरी बैग का उपयोग पूरी तरह बंद करने की अपील की। इसके स्थान पर कपड़े, जूट और पेपर बैग के इस्तेमाल पर जोर दिया। चूरू में पिछले दिनों इनोवेटिव बूट कैंप आयोजित किया गया। राजकीय लोहिया महाविद्यालय

0: के आई स्टार्ट इंक्यूबेशन सेंटर में इस आयोजन में जिले भर के 50 विद्यार्थियों ने हिस्सा लिया। इस दौरान विभिन्न सत्रों में विद्यार्थियों को तकनीकी ज्ञान के साथ साथ अंग्रेजी भाषा का दक्षता कोर्स करवाया गया। भीषण गर्मी और लू के दौर से जिले भर में आम जनजीवन बुरी तरह प्रभावित हो रहा है। कई स्थानों पर पानी के परंपरागत स्रोत टाकी, जोहड़ और तालाब सूखने से पानी की समस्या हो रही है। इसे देखते हुए जिला प्रशासन की ओर से टैंकरों से पानी की आपूर्ति की जा रही है। इसके साथ ही चूरू जिले की चिट्ठी समाप्त हुई।
1: नमस्कार, आकाशवाणी जयपुर अजमेर हूँ, पेश है प्रादेशिक समाचार। खास समाचार, सुप्रीम कोर्ट जाति आधारित जनगणना रा केंद्र रा फैसला न चुनौती देवन वाली अर्जी खारिज की। प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी 2.0 रातेत राज्य में 5,000 बत्ता नुआ मकान बनाया जावेला। सहकारी मॉडल माथे आधारित देश की पहली भारत टैक्सी सेवा आवता महीना जयपुर में आई शुरू भेला। और प्रदेश राघवन खर हल्का माए लूरा हालात, आवता 3 दिन लूरा थपेड़ा लागता रहवन री शंका। समाचार सागे मैं सुदर्शन नाहर, अरब समाचार विगतवार। सुप्रीम कोर्ट जनगणना 2027 रा तहत जातिगत गणना करावन रा केंद्र सरकार रा फैसला ने चुनौती देवन वाली अर्जी खारिज कर दीनी है। मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति सूर्यकांत री सदारत वाली पीठ कहो के पिछाड़ी तबकारी जनता रा भला सारू जतन करण बाबत सरकार ने वारी तादाद री जानकारी भेवनो जरूरी है। पीठ कहो के ओ मुद्दो सरकार रो नीतिगत अधिकार क्षेत्र में आवे है। इ विचे प्रदेश में जनगणना 2027 रा तहत मकाना री लिस्ट बनावन रो काम चाल रियो है। पाली जिला रा दूर दराज हलका और ढाणिया माए प्रगणक घर घर जार HLO ऐप रे जरिए जानकारी भेड़ी कर रिया है। ई डिजिटल सर्वे रा तहत हर मकान री असली लोकेशन दर्ज करी जा रही है और जनताओं 33 सवाल रा जवाब लिया जा रहा है। प्रशासन जनताओं प्रगणका ने सही और पूरी जानकारी मुहैया करावन री अर्ज कीनी है। देश रा न्यारा न्यारा हलका माए लाडला दिना रेलगाड़ियां माए लाई लागण रा वाकया माए सामाजिक तत्वों रा शामिल भेवन रीठा पड़ी है। आमाए राजस्थान री 2 घटनावां शामिल है। पाली रा अमरपुरा स्टेशन के नही एक घटना माए एक अनजान जना रे एक डिब्बा माए कपड़ो बाड़बारी कोशिश करण रीठा पड़ी है, जिन कारण वहां डिब्बा माए लाई लागी ही। कोटा माए राजधानी एक्सप्रेस माए लागी लाई रेल रा गुसलखाना शुरू भेवन री शंका है। रेलवे मुसाफिरा ने सावचेत रहता थका शंका लायक हरकत री जानकारी रेलवे रा हेल्पलाइन नंबर 139 माथे संपर्क करण री राय दीनी है। मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा ग्राम विकास चौपाल रा तेत आज बांसवाड़ा रा चुड़ादा गांव माए रात्रि चौपाल लगार गांव वाला सागे बातचीत कर रहा है। मारो काल समारे गांव रो पैदल दौरो कर लोगों बातचीत करण रो कार्यक्रम है। ध्यान जोग है कि ग्राम विकास चौपाल रे जरिए मुख्यमंत्री गांव वाला सागर सीधी बातचीत कर सरकार कानियों जनता रा भला सारू चलाई जा रही योजनावां रो फायदो मिलन रे बारे में जानकारी हासिल कर रिया है। वारो काल डूंगरपुर जिला रा 84 हलका रा धम्बोला गांव माए ग्राम विकास चौपाल लगावन रो कार्यक्रम है। पेट्रोलियम कंपनियां रे मुजब प्रदेश में पेट्रोल डीजल और रसोई गैस रो जरूरी स्टॉक मौजूद है। मुख्य सचिव वी श्रीनिवास आज तेल कंपनियां रा नुमाइंदा सागे पेट्रोलियम उत्पादों और LPG री उपलब्धता रे बारे में मीटिंग कीनी। कंपनियां रा राज्य स्तर रा समन्वयक मनोज गुप्ता बतायो कि सरकारी तेल कंपनियां प्रदेश में पेट्रोल डीजल और रसोई गैस री लगातार पूर्ति कर रही है। श्री गुप्ता जनताओं घबराहट माए गैर जरूरी ईंधन भेड़ो नी करण री अरज कीनी। इन बीच प्रदेश में राज्यसभा सदस्य और भारतीय जनता पार्टी रा प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़ कहो है कि दूजा देशों की तुलना में भारत माए हालात बेहतर और काबू माए है। वह जनताओं जरूरत

0: ऊर्जा तेल री खरीदी करण री अरज कीनी।
1: कोई स्टॉक खत्म नहीं है, बराबर मिल रहा है, वितरण व्यवस्था भी बराबर है, पेट्रोल पंप्स पर भी उपलब्ध है। फिजूल खर्ची नहीं होना चाहिए। और मैं आपके माध्यम से मैं देश की जनता का भी आह्वान करना चाहूंगा कि इन परिस्थितियों में संयमित तरीका अपनाएं, व्यवस्थित रूप से उपयोग में लें, आवश्यक काम सभी करें, कोई दिक्कत की बात नहीं है, जो जरूरी है वो सब काम करें, लेकिन व्यर्थ एक्सपेंसेस से बचें, फालतू अपव्यय से बचें, इसका जरूर ध्यान रखने की जरूरत है।
0: प्रदेश रा आंगनबाड़ी केंद्र में अब बच्चा ने उपमारी ठोड़ पौष्टिक न्यूट्री पुलाव खिलायो चावेला। उप मुख्यमंत्री और महिला और बाल विकास मंत्री दिया कुमारी आज जयपुर में नुआ न्यूट्री पुलाव रो नमूनो चाख्यो। वे कहो कि प्रदेश रा बच्चा सारू ओ पुलाव स्वाद रे मुजब है। उप मुख्यमंत्री इन बेगोई आंगनबाड़िया माए बच्चा न दिया जावन वाला भोजन माए शामिल करण बाबत कहो। दिया कुमारी बच्चा ने नाश्ता माई मुरमुरा रिठौड़ी समान दर वाला दूजा बेहतर और पौष्टिक आहार रो विकल्प तैयार करन रा हुकम ही दीना। ऐ समाचार आप आकाशवाणी जयपुर अजमेर सुन रहा हो। प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी 2.0 रातेत राज्य में करीब 5,000 नुआ मकान बनाया जावेला। इन रातेत हर पात्र जना ने खुदरो पक्को मकान बनावन सारू केंद्र सरकार री ओर 1.5 लाख और राज्य सरकार री ओर 1 लाख रुपया री सब्सिडी दी जावे है। मुख्य सचिव वी श्रीनिवास आज जयपुर माए प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी 2.0 सारू बनाई जी राज्य स्तर री सैंक्शनिंग एंड मॉनिटरिंग कमेटी री मीटिंग माए अहलकारों जानकारी लीनी। ई योजना रा तहत 125,60,00,000 रुपया री सब्सिडी दी जावेला। प्रदेश में स्वच्छ सर्वेक्षण रा तहत न्यारी न्यारी ठोड़ा साफ सफाई रा खास अभियान चलाया जा रहा है। जोधपुर में नगर निगम री ओर खास गेला और जनता रे आवन जावन रे ठोड़ा भीता माथे राजस्थानी संस्कृति और पर्यावरण ने बचावन रा संदेश में जुड़ी चित्रकारी करी जा रही है। पाली माई शहर ने रूपाड़ो बनावन सारू नगर निगम री ओर सिटीजन फीडबैक अभियान चलायो जा रो है। निगम रा कमिश्नर नवीन भारद्वाज जनताओं QR कोड स्कैन कर फीडबैक देवन री अपील कीनी है। जयपुर माए सहकारी मॉडल माथे आधारित भारत टैक्सी सेवा री शुरुआत आवता महीना रा पहला सप्ताह माए करण रो प्रस्ताव है। सहकारिता राज्य मंत्री गौतम कुमार दक आज जयपुर रा अपेक्स बैंक माए राखी जिया सारथी संवाद कार्यक्रम माए आ जानकारी दीनी। दिल्ली मुंबई और लखनऊ पाछे अब जयपुर माई जनता ने किफायती और सुरक्षित सफर रो सुबितो मुहैया करावन सारू आ सेवा शुरू करी जावेला। श्री दक कहो के ई सेवा माई कोई बाहरी कंपनी मालिक नहीं वेला जिनू ड्राइवरा ने गैर सरकारी कंपनिया री मनमानी छुट्टी मिलेला। पश्चिम मध्य रेलवे कोटा मंडल रा गंगापुर सिटी रामगंज मंडी और गुड़ला टेसना रे जंक्शन भेवन रो ऐलान कीनो है। रेलवे रा अहलकारा ने मुजब अब 8 टेसना रा नाम सागे जंक्शन जोड़ियो चावेला। ई सारू जरूरी बदलाव रा हुकम जारी कर किया चिया है। अरब मौसम प्रदेश माए पड़ रही जबरदस्त गर्मी बीचे घनखट होना दिन री बगत पारो 42-46 डिग्री सेल्सियस बीचे जबकि रात री बगत 26-31 डिग्री सेल्सियस बीचे दर्ज करियो जा रियो है। जनता सागे जिनावरा और परिंदा नई गर्मियों बचावन सारू न्यारी न्यारी ठोड़ा पीवन रा पानी री व्यवस्था करी ची है। मौसम विभाग आवता दिना कई ठोड़ा लू बाजन सारू चेतायो है। ई विचे लाडला 24 घंटा माए श्री गंगानगर 46.5 डिग्री सेल्सियस अधिकतम तापमान सागे राज्य माए सब गर्म ठोड़ रहो। बीकानेर माए रात्रि बगत सब बत्तो 31.1 डिग्री सेल्सियस तापमान दर्ज करी चियो। अलवर कोटा चित्तौड़गढ़ फलौदी बीकानेर और चूरू माए बत्तों बत्तों तापमान 44 डिग्री सेल्सियस ने पार कर कियो। राजधानी जयपुर माए 42.5 डिग्री सेल्सियस अधिकतम तापमान नापी चियो। इ बीच गर्मियों बचाव सारू प्रशासन री ओर न्यारी न्यारी ठोड़ा छाया रा प्रबंध करी चिया है और सड़क माथे पानी रो छिड़काव करियो जा रियो है। और ब्यूरो माणा खबरनवीसों।
2: प्रदेश में भीषण गर्मी और गर्म हवाएं लोगों को परेशान कर रही हैं। ज्यादातर जिलों में दिन का पारा 42 से 46 डिग्री वहीं रात का तापमान 46 से 31 डिग्री सेल्सियस के बीच दर्ज किया जा रहा है। इस बीच चिकित्सा मंत्री गजेंद्र सिंह खींवसर ने अस्पतालों में हीट वेव प्रबंधन को लेकर सभी जरूरी इंतजाम करने के निर्देश दिए हैं। अस्पतालों में हीट स्ट्रोक के मरीजों के लिए अलग से बेड आरक्षित रखने, जरूरी दवाइयां उपलब्ध कराने के साथ छाया और पेयजल का प्रबंध करने को कहा गया है। जितेंद्र द्विवेदी, आकाशवाणी समाचार, जयपुर।
0: चिकित्सा मंत्री गजेंद्र सिंह खींवसर अस्पताल में लूरा मरीजों का इलाज जुड़िया सगला जरूरी इंतजाम करन रा हुक्म दीना है। भरतपुर जिला में सेवर रा सरसों अनुसंधान संस्थान री ओर मेरा गांव मेरा गौरव अभियान रा तहत रणधीरपुर गांव में किसान संगोष्ठी राखी जी। इनमाए कृषि वैज्ञानिक किसाना ने खेती बाड़ी रा बेहतर तरीका, प्राकृतिक खेती और मिट्टी रो स्वास्थ्य बेहतर बनावन रे बारा में जानकारी दीनी। खेतीबाड़ी रा जानकार किसाना ने मिट्टी री ताकत बचार राखन सारू जैविक खाद, गोबर री खाद और ढेंचा सरीखी हरी खाद काम लेवन बाबत कहो। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आकाशवाणी हर महीना प्रसारित किया जावन वाला खास कार्यक्रम मन की बात माय 31 मई ने विचार बतावेला। ई कार्यक्रम री 134वीं कड़ी फैला। इसारू आप ही मुफ्त नंबर 1800117800 माथे 29 मई ताई राय दे सको हो। नंबर ओजू सुन ली राव सा 1800117800। नरेंद्र मोदी ऐप और माई जीओवी ओपन फोरम रे जरिए ही विचार भेजा जा सके है। संस्कृति मंत्रालय वंदे मातरम फ्रेम्स राष्ट्रीय फिल्म निर्माण प्रतियोगिता सारू प्रविष्टियां जमा करावन री आखिरी तारीख 31 मई ताई बता दीनी है। आहोर फिल्मा बनावन वाला रचनाकारा और जनता ने समकालीन प्रारूपां रे जरिए वंदे मातरम री भावना ने नुआ सिराऊ पेश करन री प्रेरणा देवे है। होर रील्स एआई आधारित फिल्मा और नानी फिल्मा री श्रेणियां माए फैला। हनुमानगढ़ जिला में तलवाड़ा कने भूरानपुरा गांव में स्वास्थ्य विभाग नकली दूध बनावन रो कारखानो पकड़ियो है। मुख्य चिकित्सा स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर नवनीत शर्मा बतायो के मौकाओं मोटी तादाद में नकली दूध और अमानक सामग्री नष्ट कराई ची। आखिर में खास समाचार एक फिर सुन ली रहो। सुप्रीम कोर्ट जाति आधारित जनगणना रा केंद्र रा फैसला ने चुनौती देवन वाली अर्जी खारिज कीनी। प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी 2.0 रा तहत राज्य में 5000 बत्ता नुआ मकान बनाया जावेला। सहकारी मॉडल माथे आधारित देश की पहली भारत टैक्सी सेवा आवता महीना जयपुर में आई शुरू हैला। और प्रदेश का घनखर हलका में लू रा हालात, आवता 3 दिन लू रा थपेड़ा लागता रहवन रा आसार। इस आगे प्रादेशिक समाचार बुलेटिन पूरो थियो। नमस्कार।
3: आकाशवाणी जैसलमेर का ये गोल्डन सिटी चैनल है, एफएम बैंड 101.8 मेगाहर्ट्ज पर। श्रोताओं, शाम के 7 बजे हैं, आइए सुनते हैं ग्रामीण जनों का कार्यक्रम ग्राम जगह।

0: ग्राम जगत कार्यक्रम सुनो भाई ना, अरुण भाई ना, गणान गणा, राम राम।
1: तो आज आपो किसान भाइयों से पाछी बंतल कर रहा हूँ, और जब बंतल करो तो अलग अलग विषय मत ग्राम जगत कार्यक्रम से बात करो, और हमेशा अलग अलग विषय मत बात करो। आज रो विषय भी अपो

बहुत अलग है। और जैसलमेर गर्मियों से जुड़ो है कि भाई जैसलमेर गर्मियों में जो को अपना खेत में जो को अपना किसान भाई काम करे हुए ना कई तरीके से काम रो जो को तरीको है वो उचित समय की है वो की है। और उसके साथ साथ में आज एक विश्व मधुमक्खी दिवस भी है। मधुमक्खी जो को आज की तारीख में देश है प्रधानमंत्री जी सोच बहुत बढ़िया एक व्यापार बन चुकी है उसके बारे में भी चर्चा कर सो। लेकिन चर्चा सबसे पहले जो है वो चर्चा का विषय है अपरो भाई गर्मियों में जो खेत में जो कार्य करना उचित उपाय किए। सबसे पहले तो गर्मियों में अगर आपको खेत में काम करे हो किसान भाइयों तो विशेषकर आप उन्होंने कार्यक्रम के माध्यम से है कि सुबह ठंडी बेड़ा में करना है। ठंडी बेड़ा मतलब सुबह हाडी छे हाँ तो लगा हाडी 9-10 बजे तक आप करना है उर बाद ही तवड़ो तपे हुए में अपने घर रहो है छाया में रहना है या खेजरी नीचे छाया रहो रहना है। हो सके तो आप छाव रो अपना शनियों रो कोई झोपड़ो है या वो तरीके रो है आप कोई ठंडी जगह है जिसके तरीके से जो हवा ज़्यादा है वाता मतलब जो कोई हवा पानी है वो बिल्कुल सही हुए वो जगह अपने रात या दोपहर में अपना सेवन करके पाची ठंडी बेड़ा हाडी छे हाडी पौन हाडी छे जन सूर्य अस्त होने टाइम में हुए जिदे अपन कार्य अपने खेतों में करना है। क्योंकि नहीं तो आजकल जो लू है गर्मी है ये सो आपको खेत ज़्यादा प्रभावित हो जाओ। आजकल गर्मी सो ज़्यादा सीधो आदमी रे दिमाग मत है आदमी हार्ड मत है आदमी शरीर मत है के भी प्रभाव कर सके क्योंकि तापमान जो को है वो 45 और 50 से आसपास तक पहुंच जाया करे। तो मारो ये किसान भाइयों से कार्यक्रम के माध्यम से यही निवेदन है कि आप समय मत है उचित समय मत है देखते हुए करो और समय समय मत है आप और घर ही छाछ है खाटो जिकन आपको क्या करें वो है नींबू पानी है खैरी पानी है कोई भी शीतल पेय समय समय मत आप और सेवन करना चाहिए जिके से आप शरीर में पानी की कमी नहीं हुए और पानी की कमी से उनसे कई तरीके का रोग जो है हो जावे और पानी जब पूरा हुए तो कौन ही हुए पूरे साथ में आप और आज जो पशुधन है उनरे भी व्यवस्था है कि भाई खेलियों भरोड़ी हुए खेलियों खाली नहीं रहे भरोड़ी रहे क्योंकि पशुधन वास्ते भी पानी पीना उन्होंने लिए भी बहुत है और पशुओं रहने वास्ते भी जो है वो केतन के पशुओं ठंडी चीज जो वो कहने के ठंडी ऐसी व्यवस्था कर रहा है कि भाई झोपड़ो है बीजू है भी जगह के भी पशुधन भी आप रह सके क्योंकि पशुधन है जो अपनो शरीर है वो भी शरीर है। तो कहने मतलब ये चीजों विशेष कर आपको ध्यान रखना चाहिए और चर्चा ना आप रखना जारी राजस्थानी लोकगीत सुनो पर चर्चा रखना जारी।

0: ya ale aki mote aki re tale ni yote piru piru jaure aki re tale ni yote piru piru jaure.
1: तो किशन भाइयों आप राजस्थानी जब लोकगीत सुनियो और बात लोकगीत साथ साथ में जब आपको चर्चा रोज विषय हुई तो आज आपको गर्मियों में खेत में कई तरीके से लोग अपना किशन भाई काम करे कई तरीके सूर्य क्योंकि गर्मी ज्यादा है और गर्मी के साथ साथ में अपनो बचाव ही उपचार है क्योंकि पुराने जमाने में जो कौंदे और रोटी जैसे आपको खाता ज्यादा कहने अगर गर्मी लग जाओ तो कौंदे के रूप में वहाँ पगथड़ियों में आपको बिना मसल के आपको गर्मी ने कम कर सको ज्यादा से ज्यादा गर्मी रो कई तरीके से आपको उपचार कर सको हो सके तो अड़ो कपड़ो है जो को माथे ढाल रखो मोंडो बंद रखो जिके सुखी गर्मी रो अब जो को असर है अपने मतलब माथे माथे नहीं गर्मी में ज्यादा पड़े और अपना ठंडो महसूस है तो अपना उपचार ही हीरो इलाज है जब विषय अलग अलग मथे आवे तो कोई ना कोई दिन मथे बात करें तो आज जैसे 20 मई है 20 मई एक विश्व मधुमक्खी दिवस है तो देखियो सो आज देश का प्रधानमंत्री जी हमेशा है कही कि भाई आपकी जो आमदनी दो गुनी कौकर हुए तो कम जमीन में भी आपको मधुमक्खी पालन जो शहद जो शहद जो आजकल चलन है क्योंकि आजकल लोग भी शहद रहे ज्यादा चलन है साथ साथ आप धंधो भी खोलियो है तो उसके साथ साथ में जब ईरो भी एक विश्व में मधुमक्खी दिवस को वर्ल्ड में 20 महीना मना हुए ये दिन मुख्य उद्देश्य यही है भी पारिस्थितिक तंत्र खाद्य सुरक्षा और जैव विविधता माते मधुमक्खियों और अन्य प्रगणनों जैसे जिकेन आपको क्या प्रगण पॉलिनेटर्स ने महत्वपूर्ण योगदान महत्वपूर्ण कौकर बढ़ावा मिल सके ये बात ज्यादा चर्चा हुई तो एक बात कर रहा हूँ संयुक्त राष्ट्र संघ जिकेन आपको यूएन यूएन ने 2017 में सोलिया में एक प्रस्ताव लियो गयो कि भाई क्यों नहीं ये 20 महीना मधुमक्खी दिवस रूप में आप इन्हें अपनाओ और पहलो एक आधिकारिक देश बनियो जिके 20 मई 2018 इन्हें मनाओ गयो हमें ये महत्व की है भाई 20 महीना आपको क्यों मनाओ विशेषकर अड़ी बात है कि भाई आधुनिक मधुमक्खी रो जो पालन जो है उनमें तकनीक में जनक जो होया है कि भाई कई तरीके से आपको कोई नहीं कि एक जनक कह उन्होंने शुरुआत करी तो एंटोन जानसा करके होया जो जन्मदिन उम्र वो जन्मदिन वो दिन हुई तो एंटोन जानसा का जन्म जो 20 मई 1734 में हो उरो भी जन्म जो स्वलो वेनिया में हो ये वास्ते चीज आपको करें विशेषकर अगर आप मधुमक्खी और महत्व की बात करो तो विश्व

लाड़ी लगभग एक तिहाई जो फसलों 90% जंगली फूल पौधों परागण हुई जिके में मधुमक्खी और अन्य कीटों पर निर्भर हुई। मतलब तो देखी हो मधुमक्खियों दोनों पेड़ पौधों रे फूलों मथे बीजों मथे तो देखी हो। खाद्य सुरक्षा में अगर बात करो तो जब आपको भोजन करो तो बड़ो बड़ो हिस्सों सीधे तौर मधुमक्खियों द्वारा एक परागण निर्भर करी। उत्पाद की अगर बात करो तो आप हनी जो लोग आजकल जिके शहद कही मोम जो मूल्यवान प्राकृतिक उत्पादन है मतलब एकदम पौणीदायी मोमदायी है और बहुत मतलब हजारों रुपये तक किले तक है बिकिया करें। मधुमक्खी पालन भारत रे में मधुमक्खी पालन वास्ते जो है कृषि और किसान मंत्रालय हमेशा समय समय और कदम कदम हर जगह आप अलग अलग कार्यक्रम चलावे। किसान केसीसी जो किसान केंद्र है और भी बात करी राष्ट्रीय मधुमक्खी पालन और शहद मिशन भी चलाए जा रहे हैं। उद्देश्य यही है किसान और आय कौकर बटे वैज्ञानिक तरीके से शहद उत्पादन रो प्रोत्साहित कौकर हुए ये वास्ते मधुमक्खियों संरक्षण वास्ते कृषि वास्ते उपयोग वास्ते और योगदान वास्ते मधुमक्खियों पालन की जावे। प्रधानमंत्री जी है कही कि जो अपना किसान जो है वो खेती तो करे लेकिन साथ साथ में ये तरीके का मछली पालन मधुमक्खी पालन और भी तरीके का हमेशा कोई कार्यक्रम करता रहे इस तरीके का काम करता रहे समय समय मत किसान जो है किसान केंद्र मत जावे उसके बारे में बात करें वो फसलों की जानकारी लें फसल वास्ते मधुमक्खी और अगर आपको कार्य करना तो वास्ते सब्सिडी भी सरकार दिया करे भी आप अगर आपने पालन करना होती तरीके रो जैसे बकरी पालन है मधुमक्खी पालन है मत्स्य पालन है ये ऐडा कई तरीके का भारत सरकार का कार्यक्रम है और समय समय भारत सरकार ये ना आयोजित भी करा करे और एडी ग्राम सभाओं भी आयोजित करे कदे कदे संवाद के अंदर भी आयोजित करे तो समय समय मत आप ये कार्यक्रम के माध्यम से किसान भाइयों ने बात कहनी चाहो क्यों नहीं आपों भी मधुमक्खी पालन करो जिके सू शहद जो है आप हनी जो कह सको आप जो हनी जैसलमेर हनी वो बाड़मेर जैसलमेर है पूरे राजस्थान में एक हनी जो पूरे विश्व में प्रसिद्ध है पूरी डिमांड हुए आप ज्यादा से ज्यादा लोगों ने रोजगार मिले। सुन सो राजस्थानी लोकगीत और सुन सो तरता रक्षण जारी।

Mano que el serio, hasta le quiero la

वाह, केसरियो हजारी गुलरो फूल और राजस्थानी लोकगीत जो को हमेशा जैसलमेर में पर्यटकों ने लुभाव ना लोकगीत और बिल्कुल है जो को लोकगीत हमारा अपना लोक कलाकार अपना मंगनियार कलाकार जो को देश और विदेश में जब ये गाने ना गावे तो एक आवे छटा अलग ही जैसलमेरी बात जब तो विदेशों तक पहुंचे तो एक अलग ही पहचान जैसलमेरी आपकी जगह एक अच्छे प्लेटफॉर्म मत रखी। और जब आप आज बात करी मधुमखीरी दिवसरी और अगर बात करी गर्मियों में खेत में कार्य करने उचित समय री तो बिल्कुल आप ये कार्यक्रम के माध्यम से जो यदि कार्यक्रम में अपना किसान भाई सुने तो जब सुने भी है तो ये बारे में संज्ञान भी ली और आप मथे भी गई कि भाई हमें अपन गर्मी में विशेषकर ठंडी बेड़ा में काम करना है पूरे साथ साथ में आज आप बात करी विश्व मधुमेह दिवस री वो ये कार्यक्रम के माध्यम से किसान भाइयों से अर्ज करनी चाहूंगी कि आप जैसे हणा कोई कार्य नहीं है खेतरों में तो विश्व मधुमक्खी दिवस के रूप में आज मधुमक्खी पालन की एक योजना और लाभ ये कार्यक्रम के माध्यम से सुनने में बाद में किसान सेवा केंद्र में जाए या गूगल में जाए आपके मोबाइल के माध्यम से जाए या कॉल सेंटर के माध्यम से ये बारे में सोचो समझो देखो और हो सके तो प्रशिक्षण भी लो। बिना प्रशिक्षण कोई कार्य को नहीं हुए प्रशिक्षण लेने बाद में हनी जो एक अंग्रेजी शब्द है जिन्हें आप सेहत कह सको पूरा बहुत ज्यादा मात्रा में लोग जो क्या करे कि देसी यानी बहुत लोग लेनो चाहिए जो को आजकल दवाई के रूप में भी काम आवे लोग कई तरीके का पर्यटक जो है देसी और विदेशी सैलानी जब आवे तो वो रुपये अगर दाम है तो वो 3 रुपया दे मतलब 200 नहीं 3 गुना मतलब पैसा मिले तो देसी चीज रो बहुत ज्यादा फायदा है जिके ना लोग ऑर्गेनिक क्या करी आज की तारीख में ऑर्गेनिक चीजों में बहुत ज्यादा नवाचार है। हर आदमी अगर एक जगह कोई चीज पड़ी है रुपये फर्क है तो सबसे पहले वो हाथ एक ऑर्गेनिक में गाती कि भाई ये में कोई भी केमिकल रुज को है युक्त कोनी। ये तरीके से ये कार्यक्रम के माध्यम से ज्यादा कार्य मतलब लोगों ने कहें मधुमक्खी रो पालन करो पूरे साथ साथ में एक रोजगार अवसर भी मत प्रदान हुई कई लोगों ने रोजगार भी मिले और ये रोजगार है साथ साथ में कई लोग ये तरीके रो कार्य भी करे। और आप आज मौसम की बात करी तो मौसम बिल्कुल गर्मी नुमा है दिल में सुबह उठते ही 10 बजे ताप सूर्य हीट वेज के नापो कहीं रहा करी वो यही जे के मुंडे ने ढक रखे आपने चेहरे ने ढक रखे समय अगर कम है तो घर से बाहर निकले नहीं तो घर से बाहर नहीं निकले शीतल पेरो ध्यान रखे पूरे साथ में बुजुर्ग और बच्चों को विशेष कर ध्यान रखे वे साथ ही आज आप किसान भाइयों एक विषय है तो कि गर्मियों में आप खेत्र में खेतरों में कई तरीके से आपको काम करें वही विशेष करें तो हमें समय की घड़ी हो रही है तो समय घड़ी के साथ किसान भाइयों करना पड़ सकना राम राम।

अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम ग्राम जगत। हम आकाशवाणी जैसलमेर के गोल्डन सिटी चैनल से बोल रहे हैं, एफएम बैंड 101.8 मेगाहर्ट्ज पर। श्रोताओं, शाम के 7:30 हुए हैं, आइए सुनते हैं शास्त्रीय संगीत का यह कार्यक्रम।

अभी आप सुन रहे थे राग मालकों में उस्ताद सुल्तान खान का सारंगी वादन। ये आकाशवाणी जैसलमेर का गोल्डन सिटी चैनल है, FM बैंड 101.8 MHz पर। आइए सुनते हैं फिल्म संगीत।

कोई पतसंग पतंगा नाचे, दीपक संग पतंगा नाचे, कोई मेरे संग ना। आन मिलो सजना, आन मिलो सजना।

मिली थी तुमसे सब पनहारियां, दूर दूर रह के जीने से मैं आ जाऊं तंग ना, अब आन मिलो सजना, आन मिलो सजना।

अभी आप सुन रहे थे फिल्म आन मिलो सजना सिंह गीत। आवाज थी लता मंगेशकर और मोहम्मद रफी की, गीत के बोल थे आनंद बख्शी के, और जी इस गीत को संगीत से सजाया था लक्ष्मीकांत करेलाल ने। आइए सुनते हैं ये गीत।

अभी आप सुन रहे थे फिल्म अवतार से गीत। आवाज़ थी लता मंगेशकर और किशोर कुमार की, गीत के बोल थे आनंद बख्शी के, और इस गीत को संगीत से सजाया था लक्ष्मीकांत करेलाल ने। आइए सुनते हैं ये गीत।

करती जवानी मेरी जान मस्तानी, तूने कदर ना जानी राम।

उड़क में तुझसे बढ़ के कहीं तेरी तू है जवां तो मैं भी सजीला कुछ कम नहीं हो जे जाहिर मैं हूँ सूरत में तुझसे बढ़ के कहीं तेरी तू है जवां तो मैं भी सजीला

उसके कदम चूमे तेरी जवानी, वो है शहर की रानी रामा। चंटे जवानी मेरी चाल मस्तानी, तूने कदर ना जानी रामा। हाय रामा।

अभी आप सुन रहे थे कारवां फिल्म से ये गीत। आवाज थी लता मंगेशकर और मोहम्मद रफी की, गीत के बोल थे मजरूह सुल्तानपुरी के, और इस गीत को संगीत से सजाया था आर डी बर्मन ने। आइए सुनते हैं ये गीत।

हो तो ये लगता है कि जहां मिल गया कि जहां मिल गया।

आता है होता है ये भी के जमी से भी कभी आसमान मिल गया।

आता है, होता है ये भी के जमीन से भी कभी आसमान मिल गया।

गए हो जाने न दूंगा के मुझे एक हंसी मेहरबान मिल गया के यहाँ

जा पुजा था अजनबी जमाना अपना कोई न था, था अजनबी जमाना अपना कोई न था। दिल को जो मिल गया है तेरा सहारा, एक नई जिंदगी का निशान मिल गया। तुम जो मिल गए हो तो ये लगता है कि यहाँ मिल गया। एक भटके हुए राही

0: गए हो तो ये लगता है कि यहाँ मिल गया, कि यहाँ
1: अभी आप सुन रहे थे फिल्म हंसते जख्म से ये गीत। आवाज थी मोहम्मद रफी की, गीत के बोल थे कैफी आजमी के, और इस गीत को संगीत से सजाया था मदन मोहन ने। इसी के साथ फिल्म संगीत का हमारा कार्यक्रम यहीं पर समाप्त होता है। ये आकाशवाणी जैसलमेर का गोल्डन सिटी चैनल है, FM बैंड 101.8 मेगा हर्ट्ज पर। आइए सुनते हैं सुगम संगीत।

आकाशवाणी जैसलमेर का ये गोल्डन सिटी चैनल है, एफएम बैंड 101.8 MHz पर। श्रोताओं, रात्रि के 8:45 होने को हैं। अब से थोड़ी देर में आप सुनेंगे समाचार संध्या और रात्रि 9 बजे इवनिंग न्यूज, जिसका प्रसारण हमारे आकाशवाणी दिल्ली के केंद्र से करेंगे। कृपया प्रतीक्षा करें।

0: आकाशवाणी से समाचार संध्या के साथ मैं लवली निगम। भारत और इटली अपने संबंधों को विशेष रणनीतिक साझेदारी के स्तर तक बढ़ाने पर सहमत। दोनों पक्षों ने दुर्लभ खनिजों, रक्षा, कृषि सहित प्रमुख क्षेत्रों में द्विपक्षीय सहयोग को बढ़ावा देने के लिए 15 समझौते किए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को संयुक्त राष्ट्र खाद्य कृषि संगठन का सर्वोच्च सम्मान एग्रीकोला मेडल दिया गया। उन्होंने ये पुरस्कार भारत के किसानों को समर्पित किया। पश्चिम बंगाल सरकार ने नागरिकता संशोधन अधिनियम के अंतर्गत अवैध बांग्लादेशी घुसपैठियों को तत्काल वापस भेजने की कार्यवाही शुरू करने की घोषणा की। संयुक्त राष्ट्र की एक रिपोर्ट के अनुसार पश्चिम एशिया संघर्ष के बावजूद भारत इस वर्ष 6.4% की वृद्धि के साथ विश्व की सबसे तेजी से बढ़ती प्रमुख अर्थव्यवस्था बना रहेगा। मौसम विभाग ने उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और विदर्भ में अगले 2 से 3 दिन में भीषण गर्मी का रेड अलर्ट जारी किया। और आईपीएल क्रिकेट में मेजबान कोलकाता नाइट राइडर्स और मुंबई इंडियंस के बीच मैच जारी। अब समाचार विस्तार से। भारत और इटली ने आज कृषि, दुर्लभ खनिजों, आयुर्वेद, विज्ञान और प्रौद्योगिकी, समुद्री परिवहन और बंदरगाह के क्षेत्र में सहयोग को और बढ़ाने के लिए 15 महत्वपूर्ण समझौते किए। इन समझौतों पर आज रोम में प्रधानमंत्री मोदी और इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी के बीच प्रतिनिधिमंडल स्तर की बातचीत के बाद हस्ताक्षर किए गए। दोनों देशों ने भारतीय नर्सों के इटली आने जाने को आसान बनाने के लिए भी एक समझौता किया। एक अन्य समझौता लोथल में राष्ट्रीय समुद्री विरासत परिसर के विकास पर केंद्रित है। दोनों देशों ने कर से जुड़े अपराधों, धन शोधन और आतंकवाद के लिए पैसे जुटाने के खिलाफ तालमेल को मजबूत करने पर भी सहमति व्यक्त की। वार्ता के बाद संयुक्त संवाददाता सम्मेलन में श्री मोदी ने घोषणा की कि भारत और इटली ने संबंधों को विशेष रणनीतिक साझेदारी के स्तर तक ले जाने का फैसला किया है।
1: हमने हमारी भावी साझेदारी को और सशक्त बनाने के लिए विस्तृत रूप से चर्चा की। भारत इटली ज्वाइंट स्ट्रेटेजिक एक्शन प्लान 2025-2029 हमारी साझेदारी को एक प्रैक्टिकल और फ्यूचरिस्टिक ढांचा प्रदान करता है। हम इस पर समयबद्ध तरीके से आगे बढ़ रहे हैं। हमारे साझा प्रयासों में

0: द्विपक्षीय व्यापार 20 बिलियन यूरो के लक्ष्य की ओर तेजी से बढ़ रहा है।
1: श्री मोदी ने कहा कि दोनों देश भारत इटली नवाचार केंद्र स्थापित करने पर काम कर रहे हैं।
0: दोनों देशों के स्टार्टअप, रिसर्च सेंटर्स और उद्योगों को आपस में जोड़ने के लिए हम इंडिया इटली इनोवेशन सेंटर पर काम कर रहे हैं। हमारी सेनाओं के साथ साथ दोनों देशों के रक्षा उद्योगों के बीच भी सहयोग बढ़ रहा है। मैरिटाइम पावर्स के रूप में भारत और इटली के बीच करीबी सहयोग स्वाभाविक है। हम मिलकर शिपिंग, पोर्ट्स, मॉडर्नाइजेशन, लॉजिस्टिक और ब्लू इकोनॉमी पर काम करेंगे।
1: प्रधानमंत्री ने बताया कि दोनों देश जहाजरानी, बंदरगाहों के आधुनिकीकरण, लॉजिस्टिक्स और समुद्री अर्थव्यवस्था के क्षेत्रों में भी मिलकर काम करेंगे। श्री मोदी ने कहा कि दोनों देश आतंकवाद को मानवता के लिए गंभीर खतरा मानते हैं।
0: भारत और इटली एकमत है कि आतंकवाद मानवता के लिए गंभीर चुनौती है। टेरर फाइनेंसिंग के खिलाफ हमारी साझा पहल ने पूरे विश्व के सामने एक महत्वपूर्ण उदाहरण प्रस्तुत किया है। यूक्रेन, पश्चिम एशिया तथा अन्य तनावों को लेकर हम लगातार संपर्क में रहे हैं। भारत का मत स्पष्ट है कि सभी समस्याओं का समाधान डायलॉग और डिप्लोमेसी के माध्यम से होना चाहिए।
1: सुश्री जॉर्जिया मेलोनी ने कहा कि दोनों देशों के बीच की दोस्ती सम्मान और आपसी विश्वास पर आधारित है। इसके बाद रोम में प्रधानमंत्री मोदी को संयुक्त राष्ट्र खाद्य कृषि संगठन का सर्वोच्च सम्मान एग्रीकोला मेडल से सम्मानित किया गया। उन्होंने इस सम्मान को भारत के लाखों किसानों, पशुपालकों, मछली पालकों, कृषि वैज्ञानिकों और श्रमिकों को समर्पित किया।
0: ये भारत के करोड़ों किसानों, पशुपालकों, मत्स्य पालकों, कृषि वैज्ञानिकों और हमारे श्रमिकों का सम्मान है। यह भारत की उस अटूट प्रतिबद्धता का भी सम्मान है जिसके केंद्र में मानव कल्याण, खाद्य सुरक्षा और सस्टेनेबल डेवलपमेंट है। मैं इस मेडल को अत्यंत विनम्रता के साथ स्वीकार करते हुए भारत के अन्नदाताओं को यह मेडल समर्पित करता हूँ।
1: रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने ऑपरेशन सिंदूर को भारत के एक मजबूत, आत्मविश्वासी और सक्षम राष्ट्र में परिवर्तन का प्रमाण बताया है। दक्षिण कोरिया में प्रवासी भारतीयों से बातचीत में रक्षा मंत्री ने कहा कि ऑपरेशन इस बात का प्रमाण है कि भारत किसी भी रूप में आतंकवाद को कतई बर्दाश्त नहीं करेगा। श्री सिंह ने रक्षा विनिर्माण में आत्मनिर्भरता हासिल करने के लिए सरकार की प्रतिबद्धता दोहराई।
2: 12 वर्षों के अंदर हम 40,000 करोड़ से ज्यादा का इस समय हम एक्सपोर्ट कर रहे हैं, नहीं तो 2 साल के अंदर 50,000 करोड़ के एक्सपोर्ट, डिफेंस आइटम्स के एक्सपोर्ट की जानकारी आपको मिल जाएगी। और हमारी गवर्नमेंट के रहते डिफेंस सेक्टर में एक मेजर चेंज आया है। भारत की पॉलिसी आज रिएक्टिव नहीं बल्कि प्रोएक्टिव है। और मेरा भी ये व्यक्तिगत रूप से मानना है कि राष्ट्रीय सुरक्षा की किसी कीमत पर किसी भी सूरत में समझौता नहीं किया जाएगा। और इसी सोच के साथ भारत इंडिजिनस डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग को तेजी के साथ बढ़ावा दे रहा है।
1: रक्षा मंत्री ने सोल में भारत दक्षिण कोरिया रक्षा उद्योग व्यापार गोलमेज सम्मेलन की अध्यक्षता भी की। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।

0: सुरक्षा स्कीम के टेलीलॉ न्याय बंधु कानूनी साक्षरता एवं जागरूकता कार्यक्रम से जुड़े कानूनी सहायता टेलीलॉ के टोल फ्री नंबर 1454 और वेबसाइट www.tele-law.in से प्राप्त की जा सकती है।
1: विकसित भारत की तैयारी है अपना प्रयास, जनगणना में पहली पारी आपका घर आवास, घर घर की गणना हो सुविधाओं के लेंगे, बिजली पानी हाउसिंग पहला चरण इसका, यह जनगणना का साल, यह जनगणना का साल।
2: जनगणना के पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके मकान की गणना होगी। आइए आपकी साझेदारी से इसे सफल बनाएं और विकसित भारत 2047 की ओर एक और कदम बढ़ाएं।
3: समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने नागरिकता संशोधन अधिनियम CAA के अंतर्गत अवैध बांग्लादेशी घुसपैठियों को देश से निकालने की प्रक्रिया तुरंत शुरू करने की घोषणा की है। सीमा पर बाड़ लगाने के लिए सीमा सुरक्षा बल को जमीन सौंपने के एक समारोह के दौरान

0: नवन्ना में उन्होंने कहा कि अब घुसपैठियों को सीधे सीमा सुरक्षा बल के हवाले कर दिया जाएगा, वहां से उन्हें देश से निकालने के लिए बीडीआर के साथ इंतजाम किए जाएंगे। उन्होंने इसे नए तरीके को पहचानो हटाओ और देश से निकालो बताया। गुजरात सरकार ने एक राष्ट्र एक चुनाव विधेयक का समर्थन किया है। एक राष्ट्र एक चुनाव पर बने संयुक्त संसदीय समिति ने आज गुजरात के गांधीनगर में विभिन्न राजनीतिक दलों के प्रतिनिधिमंडल के साथ चर्चा की। उप मुख्यमंत्री हर्ष संघवी ने कहा कि विधेयक को जल्द से जल्द लागू करना चाहिए।
1: हमने आज जेपीसी को गुजरात सरकार की ओर से खास तौर पे ये नम्र निवेदन किया है कि वन नेशन वन इलेक्शन जल्द से पास हो, सभी राज्य के नागरिकों को एक समान हित मिले, सभी लोगों के काम जल्द हो पाए, मशीनरी सरकारी जो है उसका कम से कम समय बिगड़े, वही हित में आज हमने वन नेशन वन इलेक्शन को हमने हमारा सहयोग दिया है और हमने ये खास तौर पे विनती की है इसको जल्द से जल्द लागू किया जाए।
0: इस बीच कांग्रेस सहित अन्य राजनीतिक दलों ने एक राष्ट्र एक चुनाव का विरोध किया। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने नीट यूजी पुनर्परीक्षा के सुरक्षित निष्पक्ष और सुचारू संचालन के लिए कड़ी निगरानी और पुख्ता सुरक्षा व्यवस्था की आवश्यकता पर बल दिया है। श्री प्रधान ने आज नई दिल्ली में केंद्रीय सुरक्षा खुफिया एजेंसियों के साथ उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक में ये बात कही। इस दौरान गुमनाम ऑनलाइन समूहों के माध्यम से प्रतियोगी परीक्षाओं से संबंधित गलत सूचनाओं के बढ़ते प्रसार पर चिंता व्यक्त की गई। इस बीच दिल्ली की एक अदालत ने नीट परीक्षा के प्रश्न पत्र लीक मामले में 5 आरोपियों को 2 जून तक न्यायिक हिरासत में भेज दिया है। अदालत ने एक अन्य आरोपी की सीबीआई हिरासत भी बढ़ा दी है। नीति आयोग के अटल इनोवेशन मिशन ने जम्मू कश्मीर में एक सशक्त नवाचार इकोसिस्टम के निर्माण के लिए 500 नई अटल टिंकरिंग लैब स्थापित करने के लिए आवेदन प्रक्रिया शुरू कर दी है। नई लैब अटल नवाचार मिशन के व्यापक सीमावर्ती क्षेत्र कार्यक्रम का एक प्रमुख घटक है। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन एआईआर ऐप पर भी उपलब्ध हैं।

0: जनगणना के पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके मकान की गणना होगी। आइए आपकी साझेदारी से इसे सफल बनाएं और विकसित भारत 2047 की ओर एक और कदम बढ़ाएं।
1: ये आकाशवाणी है। ईरान संघर्ष के कारण वैश्विक अनिश्चितता के बावजूद संयुक्त राष्ट्र ने इस वर्ष भारत की विकास दर 6.4% रहने का अनुमान लगाया है। इससे भारत विश्व की सबसे तेजी से बढ़ती प्रमुख अर्थव्यवस्था बना रहेगा। संयुक्त राष्ट्र के वरिष्ठ अर्थशास्त्री इंगो पिटले ने कहा कि भारत की मजबूत उपभोक्ता मांग, सार्वजनिक निवेश और सेवा निर्यात में वृद्धि इसकी अर्थव्यवस्था को सहारा दे रही है। और अब आर्थिक जगत की खबरों के साथ हैं प्राची प्रिया।
2: बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का सेंसेक्स 118 अंक बढ़कर 75,318 पर बंद हुआ, जबकि नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का निफ्टी 41 अंक की बढ़त के साथ 23,659 पर आ गया। अंतर बैंकिंग विदेशी मुद्रा बाजार में रुपया $1 के मुकाबले 30 पैसे कमजोर होकर अपने सबसे निचले स्तर यानी ₹96.83 पर बंद हुआ।
1: और अब जानकारी मौसम की। मौसम विभाग ने अगले 2 से 3 दिन के लिए उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और विदर्भ में भीषण लू की स्थिति के लिए रेड अलर्ट जारी किया है। हरियाणा, चंडीगढ़, दिल्ली, पंजाब, बिहार, छत्तीसगढ़, तटीय आंध्र प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, ओडिशा, राजस्थान, तेलंगाना और उत्तराखंड में भी कल तक ऐसी ही स्थिति रहने की संभावना है। विभाग ने अगले 2 दिन के लिए पश्चिम बंगाल के गांगेय क्षेत्र, तमिलनाडु, पुदुचेरी और कराईकल में भी गर्म और उमस भरे मौसम का अनुमान व्यक्त किया है। विभाग ने कल राजधानी में लू की स्थिति के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। एक रिपोर्ट।
3: मौसम विभाग के अनुसार कल दिल्ली में अधिकतम तापमान 45 से 47 डिग्री सेल्सियस के बीच रहने की संभावना है, जबकि न्यूनतम तापमान 29 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहेगा। पिछले 24 घंटों में राष्ट्रीय राजधानी में अधिकतम तापमान 44.5 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 28 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया है। मौसम विभाग ने बताया कि कल दिन के समय राष्ट्रीय राजधानी में 15 से 20 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से दक्षिण पश्चिमी हवाएं चलने की संभावना है। सौम्य के साथ शिवांग मिश्रा, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
1: इस बीच विभाग ने कल अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, केरलम, माहेर, दक्षिण आंतरिक कर्नाटक, पश्चिम बंगाल के तराई वाले क्षेत्रों और सिक्किम में भारी वर्षा का पूर्वानुमान लगाया है। सर्वोच्च न्यायालय ने जनगणना 2027 के अंतर्गत जाति गणना कराने के केंद्र सरकार के फैसले को चुनौती देने वाली याचिका को खारिज कर दिया है। अदालत ने कहा है कि ये मुद्दा सरकार के नीतिगत अधिकार क्षेत्र में आता है। मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत की अध्यक्षता वाली पीठ ने कहा है कि पिछड़े वर्गों के लिए कल्याणकारी उपाय तैयार करने के लिए सरकार को उनकी संख्या जानना जरूरी है। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने आज नई दिल्ली में मंत्रालय की हिंदी सलाहकार समिति की बैठक की अध्यक्षता की। श्री गडकरी ने कहा कि हिंदी केवल एक भाषा नहीं बल्कि ये राष्ट्र को एकजुट करने का सशक्त माध्यम है। आईपीएल क्रिकेट में कोलकाता के ईडन गार्डन्स में कोलकाता नाइट राइडर्स का मुकाबला मुंबई इंडियंस से हो रहा है। फिलहाल बारिश के कारण मैच रुका हुआ है। मैच रुकने तक मुंबई इंडियंस ने 8 ओवर में 4 विकेट पर 57 रन बना लिए थे। उधर मलेशिया मास्टर्स बैडमिंटन सुपर 500 में आज अश्मिता चलिहा, देविका सिहाग और मालविका बंसोड महिला सिंगल्स के प्री क्वार्टर फाइनल में पहुंच गए हैं। संस्कृति मंत्रालय ने वंदे मातरम फिल्म्स राष्ट्रीय फिल्म निर्माण प्रतियोगिता के लिए प्रविष्टियां जमा करने की अंतिम तिथि 7 मई से बढ़ाकर 31 मई कर दी है। प्रतियोगिता 3 श्रेणियों में आयोजित की जा रही है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। भारत और इटली अपने संबंधों को विशेष रणनीतिक साझेदारी के स्तर तक बढ़ाने पर सहमत। दोनों पक्षों ने महत्वपूर्ण खनिजों, रक्षा, कृषि सहित प्रमुख क्षेत्रों में द्विपक्षीय सहयोग को बढ़ावा देने के लिए 15 समझौते किए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को संयुक्त राष्ट्र खाद्य कृषि संगठन का सर्वोच्च सम्मान एग्रीकोला मेडल दिया गया। उन्होंने ये पुरस्कार भारत के किसानों को समर्पित किया। पश्चिम बंगाल सरकार ने नागरिकता संशोधन अधिनियम के अंतर्गत अवैध बांग्लादेशी घुसपैठियों को तत्काल वापस भेजने की कार्यवाही शुरू करने की घोषणा की। संयुक्त राष्ट्र की एक रिपोर्ट के अनुसार पश्चिम एशिया संघर्ष के बावजूद भारत इस वर्ष 6.4% की वृद्धि के साथ विश्व की सबसे तेजी से बढ़ती प्रमुख अर्थव्यवस्था बना रहेगा। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
4: गुड इवनिंग, दिस इज आकाशवाणी एंड आई एम वीसी प्रमोद विद द न्यूज एट 9। द हेडलाइंस। India and Italy agree to elevate ties to special strategic partnership. Both sides ink 15 agreements to boost bilateral cooperation in key areas including critical minerals, defense and agriculture. Prime Minister Narendra Modi receives FAO's highest honor, Agricola Medal, dedicates award to farmers of India. West Bengal government announces immediate start of deportation proceedings against illegal Bangladeshi infiltrators under Citizenship Amendment Act. India to remain world's first growing major economy with 6.4% growth this year despite West Asia conflict, says UN report. IMD issues red alert for severe heat wave conditions over Uttar Pradesh, Madhya Pradesh and Vidarbha for the next 2 to 3 days. And in IPL cricket, match between hosts Kolkata Knight Riders and Mumbai Indians underway at Eden Gardens. India and Italy today finalized 15 outcomes across diverse sectors. The agreements were signed following delegation-level talks between Prime Minister Narendra Modi and his Italian counterpart Giorgia Meloni in Rome today. The outcomes mark the elevation of bilateral relations to a special strategic partnership. Both sides also inked several memorandums of understanding to deepen cooperation in key areas including critical minerals, defense, agriculture, Ayurveda, science and technology, maritime transport and ports. India and Italy also agreed to strengthen coordination against tax crimes, money laundering and terror financing. In a press statement after the talks, Prime Minister Modi said the two sides deliberated extensively on enhancing bilateral ties.
5: पिछले लगभग 3.5 वर्षों में मुझे कई बार प्राइम मिनिस्टर मेलोनी से मिलने का अवसर मिला है। यह भारत और इटली के बीच करीबी सहयोग और सामंजस्य को दर्शाता है। उनके नेतृत्व में हमारे संबंधों को नई गति, नई दिशा और नया आत्मविश्वास मिला है। मुझे खुशी है कि हम अपने संबंधों को अपग्रेड करते हुए स्पेशल स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप की घोषणा कर रहे हैं।
4: मिस्टर मोदी सेड इंडिया इटली जॉइंट स्ट्रेटेजिक एक्शन प्लान 2020

0: 2025-29 will provide the practical and futuristic framework for bilateral ties. He said both sides are working towards establishing an India-Italy Innovation Center and noted that the India-Italy Defense Industrial Roadmap has opened new avenues for co-development and co-production in the defense sector.
1: दोनों देशों के स्टार्टअप रिसर्च सेंटर्स और उद्योगों को आपस में जोड़ने के लिए हम इंडिया इटली इनोवेशन सेंटर पर काम कर रहे हैं। हमारी सेनाओं के साथ साथ दोनों देशों के रक्षा उद्योगों के बीच भी सहयोग बढ़ रहा है। मैरिटाइम पावर्स के रूप में भारत और इटली के बीच करीबी सहयोग स्वाभाविक है। हम मिलकर शिपिंग पोर्ट्स मॉडर्नाइजेशन लॉजिस्टिक और ब्लू इकोनॉमी पर काम करेंगे।
0: Mr. Modi stressed that India and Italy are united in viewing terrorism as a serious threat to humanity and underlined the need for strong action against terror financing networks.
1: भारत और इटली एकमत है कि आतंकवाद मानवता के लिए गंभीर चुनौती है। टेरर फाइनेंसिंग के खिलाफ हमारी साझा पहल ने पूरे विश्व के सामने एक महत्वपूर्ण उदाहरण प्रस्तुत किया है। यूक्रेन, पश्चिम एशिया तथा अन्य तनावों को लेकर हम लगातार संपर्क में रहे हैं। भारत का मत स्पष्ट है कि सभी समस्याओं का समाधान डायलॉग और डिप्लोमेसी के माध्यम से होना चाहिए।
0: स्पीकिंग ऑन द ओकेजन, इटालियन प्राइम मिनिस्टर मेलानी एम्फसाइज्ड द इंपॉर्टेंस ऑफ एंश्योरिंग फ्रीडम ऑफ नेविगेशन इन द इंडो पैसिफिक एंड स्ट्रेंथनिंग कोऑपरेशन अक्रॉस की सेक्टर्स।
2: Italy and India share a joint vision on many of the huge challenges of our times, including rules, economic security, the resilience of the value chains, the promotion of peace, inclusive development. It is extremely important to have freedom of navigation in the Indo-Pacific sector is where we share the same vision of a free, inclusive and open Indo-Pacific.
0: Prime Minister Modi also called on Italian President Sergio Mattarella and held discussions on further expanding the bilateral partnership in areas such as trade, technology, clean energy and culture. Later in the day, Prime Minister Modi was conferred the prestigious Agricola Medal by the Food and Agriculture Organization FAO at its headquarters in Rome. The medal was presented by FAO Director General Chu Dongyu. Receiving the award, Mr. Modi dedicated the honor to India's millions of farmers, livestock rearers, fish farmers, agricultural scientists and workers. Speaking on the occasion, the Prime Minister said the award reflects India's unwavering commitment to food security, sustainable development and human welfare.
1: ये भारत के करोड़ों किसानों, पशुपालकों, मत्स्य पालकों, कृषि वैज्ञानिकों और हमारे श्रमिकों का सम्मान है। यह भारत की उस अटूट प्रतिबद्धता का भी सम्मान है जिसके केंद्र में मानव कल्याण, खाद्य सुरक्षा और सस्टेनेबल डेवलपमेंट है। मैं इस मेडल को अत्यंत विनम्रता के साथ स्वीकार करते हुए भारत के अन्नदाताओं को यह मेडल समर्पित करता हूं।
0: The Agricola Medal is the highest honor conferred by the Director General of the FAO. It is awarded to distinguished world leaders and individuals for exceptional and long-term contributions to global food security, sustainable agriculture, poverty reduction and improved nutrition. Mr. Modi reached Italy yesterday on the fifth and final leg of his five-nation tour after concluding his visits to Norway, Sweden, the Netherlands and UAE. Defense Minister Rajnath Singh has termed Operation Sindoor as a testament to India's transformation into a strong, confident and capable nation. Interacting with the Indian diaspora of South Korea in Seoul, the Defense Minister said the operation was proof that India will not tolerate terrorism in any form.
3: भारत की पॉलिसी आज रिएक्टिव नहीं।
4: India's policy today is not reactive but proactive. Personally, I also believe that national security will not be compromised at any cost. With this vision, India is rapidly promoting indigenous defense manufacturing. Before 2014, our total defense production used to be approximately worth 44,000-55,000 crores. Today, it has increased to 1,54,000 crores and within the next month, it is expected to reach nearly 1,75,000 crores.
3: 1,75,000 crore aap dekhne ko milega.
0: The Defense Minister also chaired the India-South Korea Defense Industry Business Roundtable in Seoul. Speaking the occasion, Mr.

जनगणना के पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके मकान की गणना होगी। आइए आपकी साझेदारी से इसे सफल बनाएं और विकसित भारत 2047 की ओर एक और कदम बढ़ाएं।

तेरे होंठों से लिपट जाऊं सजनी, मैं सुर्खी का रंग बन के है। तेरे होंठों से लिपट जाऊं सजनी, मैं सुर्खी।

रंग न किसी का होए, गोरा रंग न किसी का होए, के सारा जग पैरी हो जाए, के सारा जग पैरी हो जाए।

छोड़ो ठकरे मिला लो दिल को न रहो ऐसे तन तन के हाय न रहो ऐसे तन तन के तेरे

अभी आप सुन रहे थे जानी दुश्मन फिल्म से ये गीत। आवाज थी आशा भोसले और मोहम्मद रफ़ी की, गीत के बोल थे वर्मा मलिक के, और इस गीत को संगीत से सजाया था लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने। आइए सुनते हैं ये संदेश।

अभी आप सुन रहे थे क्रांति फिल्म से ये गीत, आवाज थी लता मंगेशकर और नितिन मुकेश की, गीत के बोल थे संतोष आनंद के और इस गीत को संगीत से लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने। आइए सुनते हैं ये संदेश।

0: जनगणना के पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके मकान की गणना होगी। आइए आपकी साझेदारी से इसे सफल बनाएं और विकसित भारत 2047 की ओर एक और कदम बढ़ाएं।
1: आकाशवाणी जैसलमेर का ये गोल्डन सिटी चैनल है एफएम बैंड 101.8 मेगाहर्ट्ज पर। कृपया हमारे अगले प्रोग्राम की प्रतीक्षा करें।

0: शुरुआत करते हैं बिल्कुल हालिया और ऐतिहासिक लम्हे से। वही 2026 का महीना भारत के राजनीतिक इतिहास में सुनहरे अक्षरों में दर्ज हो गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नॉर्डिक देशों की यात्रा करके तारीख थी 17 मई 2026 और जगह थी स्वीडन का गोथेनबर्ग शहर। स्वीडन के प्रधानमंत्री उल्फ क्रिस्टेंसन की उपस्थिति में प्रधानमंत्री मोदी को स्वीडन के सर्वोच्च नागरिक सम्मान रॉयल ऑर्डर ऑफ द गोल्ड स्टार से नवाजा गया। साल 1748 में प्राप्त हुआ ये ऐतिहासिक सम्मान किसी विदेशी शासन अध्यक्ष को माना ये दर्शाता है कि आज यूरोप की नजरों में भारत का स्थान क्या है। ये प्रधानमंत्री मोदी का 31वां अंतर्राष्ट्रीय सम्मान था।
1: कुछ समय पहले मुझे स्वीडन के रॉयल ऑर्डर ऑफ द पोलर स्टार के सर्वोच्च सम्मान से सम्मानित किया गया। ये सिर्फ मेरा सम्मान नहीं है, यह 140 करोड़ भारतवासियों का सम्मान है। यह स्वीडन के हमारे उन सभी साथियों का भी सम्मान है जिन्होंने भारत स्वीडन संबंधों को समृद्ध किया, एक मजबूत

你很难的地方都要最新鲜的不对的呀，就是说在南北方有三个和三十六米他那边是个三十他的四十多米一个人要开出来所以你不可能去摩地国阿波舍罗进来的什么 Order of King Abdul Aziz Shah Srinivasa 这是谁 Policy Bush of Afghanistan 我也 State Order of Ghazi Amir Abdullah Khan 不敢去啊还是就是为了他的一盘子把两个人的名字和表示表现秘密这可以给他说三年प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी को पर्यावरण के क्षेत्र के सबसे बड़े पुरस्कार चैंपियंस ऑफ द अर्थ को सम्मानित किया इसी साल फिलिस्तीन ने उन्हें ग्रैंड कलर ऑफ द स्टेट ऑफ फिलिस्तीन दिया दक्षिण कोरिया ने वैश्विक शांति और आर्थिक विकास के लिए सियोल शांति पुरस्कार को प्रदान किया वर्ष 2019 को जैसे वैश्विक पुरस्कारों का वर्ष हो गया दुनिया के नक्शे पर भारत की दोस्ती का दायरा कितना बड़ा था ये इन पुरस्कारों की सूची देख कर समझ आता है संयुक्त अरब अमीरात का सर्वोच्च सम्मान ऑर्डर ऑफ तालब रूस का सबसे प्रतिष्ठित ऑर्डर ऑफ सेंट एंजियो द अपोस्टल मालदीव का ऑर्डर ऑफ द डिस्टिंग्विश्ड इमाम ऑफ इज्जुद्दीन और बहरीन का किंग अहमद ऑर्डर ऑफ द रेनेसा शामिल रहा 2019 में ही बिल एंड मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन ने स्वच्छ भारत अभियान की सफलता के लिए उन्हें ग्लोबल गोलकीपर अवार्ड से सम्मानित किया जब साल 2020 में पूरी दुनिया कभी की सबसे बड़ी महामारी कोरोना से जूझ रहे थे तो भारत के डॉक्टर मैथ्यू ने दुनिया का दिल जीता इसी दौरान अमेरिका ने प्रधानमंत्री मोदी को अपने बेहद प्रतिष्ठित सैन्य सम्मान लेजन ऑफ मेरिट से सम्मानित किया 2021 में हमारे पड़ोसी देश भूटान ने अपने सर्वोच्च नागरिक सम्मान ऑर्डर ऑफ द ड्रैगन किंग से भारत के प्रति अपनी अपूर्व निष्ठा व्यक्त की साल 2023 में जब भारत G20 की मेजबानी कर रहा था और उसी वर्ष जब प्रधानमंत्री मोदी पापुआ न्यू गिनी पहुंचे भारत के प्रधानमंत्री ने प्रोटोकॉल तोड़कर पैर छूकर उनका स्वागत किया और उन्हें ऑर्डर ऑफ नोबेल से नवाजा उसी तरह फिजी ने हरियाणा ऑफ द ऑर्डर ऑफ फिजी और भोसरी अपने ऐतिहासिक ऑर्डर ऑफ द लाइन प्रधानमंत्री मोदी को प्रदान किया वर्ष 2023 में ही फ्रांस के राष्ट्रीय दिवस पर प्रधानमंत्री मोदी को फ्रांस के सर्वोच्च नागरिक और सैन्य सम्मान ग्रैंड क्रॉस ऑफ द लीजन ऑफ ऑनर से सम्मानित किया गया जिसके बाद देश ने भी उन्हें ग्रैंड क्रॉस ऑफ द ऑर्डर ऑफ ऑनर दिया साल 2024 और 25 में तो ये फहरिस्त और लंबी होगी नाइजीरिया का ग्रैंड कमांडर ऑफ द ऑर्डर ऑफ द नाइजर गयाना का ऑर्डर ऑफ एक्सलेंस जमैका का सर्वोच्च सम्मान और कुवैत का ऑर्डर ऑफ मुबारक अल कबीर और प्रदान किया गया उसके बाद साल 2025 में बारबाडोस श्रीलंका का मित्र विभूषण मॉरिशस का सर्वोच्च राष्ट्रीय सम्मान ग्रैंड कमांडर ऑफ द ऑर्डर ऑफ द स्टार एंड की ऑफ द इंडियन ओशन को प्रदान किया गया घाना में द ऑफिसर ऑफ द ऑर्डर ऑफ द स्टार ऑफ घाना साइप्रस का सर्वोच्च सम्मान ग्रैंड क्रॉस ऑफ द ऑर्डर ऑफ मोकारियस नाइजीरिया का सर्वोच्च नागरिक सम्मान ऑर्डर ऑफ द मोस्ट एशियंट बाय बुचिया मोराबोस त्रिनिदाद और टोबैगो ने द ऑर्डर ऑफ द रिपब्लिक ऑफ त्रिनिदाद एंड टोबैगो और बुचिया ने द ग्रैंड कलर ऑफ द नेशनल अवार्ड ऑफ द सेवन क्रॉस से भारत के प्रस्तुत पदवी का स्वागत किया इसके अलावा ओमान की तरफ से फर्स्ट क्लास ऑफ द ऑर्डर ऑफ ओमान और इथियोपिया की तरफ से एक ऑनर निशान ऑफ इथियोपिया भी प्रधानमंत्री मोदी को प्रदान किया गया साल 2026 की शुरुआत में ही इसराइल ने भी उन्हें मेडल ऑफ द नेसेट को सम्मानित किया इन 32 अंतर्राष्ट्रीय सम्मानों की फहरिस्त सिर्फ कागजी आंकड़े नहीं है ये इस बात का सीधा प्रमाण है कि आज का भारत सिर्फ अपनी सीमाओं की रक्षा नहीं कर रहा बल्कि दुनिया को वैसे भेद अमेरिकन यानी पूरी पृथ्वी ही मेरा परिवार है का संदेश दे रहा है चाहे वो पर्यावरण संकट हो वैश्विक शांति की बात हो या आपदा के समय मदद का हाथ बढ़ाना हो दुनिया आज भारत के नेतृत्व की ओर उन्हीं भरों नजरों से देखती है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को वर्ष दर वर्ष होने ये सम्मान असल में भारत की 140 करोड़ जनता के पर परिश्रम हमारे प्राचीन संस्कृति और हमारे बढ़ते आर्थिक और सामरिक सामर्थ्य का वैश्विक उत्सव है

0: 1914 के बाद भारत में विशेष फसल किया है, जिसे भारत अब दुनिया के मानचित्र में और एक मजबूत स्तंभ बन गया है। इस पर खास चर्चा के लिए हमारे साथ हैं दो बेहद खास मेहमान, पूर्व राजदूत अशोक सचिन हार और वरिष्ठ पत्रकार मोहन चेरा। कार्यक्रम में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत जी। धन्यवाद आइए अशोक जी, सबसे पहले आपसे शुरू करते हैं। प्रधानमंत्री मोदी की जो यात्रा चल रही है, इसमें मोलदोवा में, नेदरलैंड्स, कतर, लाटविया और इटली के 5 देशों की यात्रा पर है। नॉर्वे में हुए तीसरे कोरोना नॉर्डिक समिट में भारत और नॉर्डिक देशों के बीच ग्रो टेक्नोलॉजी एंड इनोवेशन स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप पर सहमति बनी है। आपको क्या लगता है कि इस यात्रा के चलते जो वैश्विक परिदृश्य है और वैश्विक परिदृश्य में भारत की जो नॉर्थ वेस्ट तैर है यानी उत्तर की ओर जो रुख है, उस लिहाज से कितना अहम मानते हैं इस यात्रा का? हम अभी देख रहे हैं कि ये जो यात्रा है वो जो कि नॉर्डिक देशों में है, तो उसमें कहा गया जो मार्क्स पर जो ये तो हम जानते हैं जो भारत को एक जिसे कहा गया वर्ल्ड ऑफ द बॉर्डर साइट है, हमने वर्ल्ड ऑफ द बॉर्डर साइट समिट किए हैं जब भारत जीतने की पीछे हुई सुनाई थी 2023 में। परंतु उसको छोड़ते हुए मैं कहूंगा जो भारत की एक कूटनीति है, अगर हम 2014 की बात से देखें तो हमारी कूटनीति पूरे विश्व के साथ अपने संगठन को आगे ले जाने में पूरी है और हम इसमें बहुत ही तेज गति से काम कर रहे हैं। परंतु जहां तक नॉर्डिक देशों का संबंध है, आपने ठीक कहा है, इसको अभी करीब 8 साल हुए हैं 2018 में, जिसे कहा गया पहला नॉर्डिक समिट हुआ था स्वीडन में, दूसरा डेनमार्क का हुआ 2022 में कोपेनहेगन में, और तीसरा पिछले साल होने वाला था परंतु हरिद्वार के इंसान को होते हुए तो ये नहीं हुआ और अब हो रहा है। तो अभी जो हालात है पूरे विश्व में, विश्व की जो चुनौतियां हैं, तो चाहे हम जियो पॉलिटिकल स्तर पर देखें, रूस यूक्रेन का युद्ध चल रहा है, पश्चिम एशिया का युद्ध चल रहा है, तो उसमें वर्ल्ड बेस्ड इंटरनेशनल एनर्जी को आगे कैसे ले जाया जाए, और जो ग्रीन एनर्जी है, ग्रीन ट्रांजिशन है, इनोवेशन है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, रोबोटिक्स है, इन सभी जो नई टेक्नोलॉजीज आए हैं उनके साथ कैसे संबंध बनाया जाए और देशों के साथ मिलकर सहयोग किया जाए, ये बहुत महत्वपूर्ण विषय था और इस पर बातचीत हुई। और जो बताता है जो प्रधानमंत्री मोदी की और भारत की विश्वसनीयता कितनी बढ़ रही है पूरे विश्व में, चर्चा कर रहे हैं 2014 से लेकर अब तक भारत की विदेशी प्रतियोग के आंकड़ा बहुत ही और उसके जो सबसे बड़ा मोमेंट था राजा जी वो G20 का जो होने लगा था। साल 2023 में भारत की अध्यक्षता में हुआ G20 समिट नैदानिक इनोवेशन की वजह से बड़ा भारत सराहा गया। आपको क्या लगता है कि भारत ने जिस तरह विकसित और विकासशील देशों के बीच एक पुल का काम किया, उसमें वैश्विक कूटनीति में भारत का कब किस तरह रहा है? तो हम G20 की बात करें, एक तो बहुत बड़ा सफल आयोजन था, ये तो निश्चित रूप से था। दूसरी सबसे बड़ी बात इसमें हुई कि 2007 के आयाम में भारत ने मजबूती के साथ बना था, जो अफ्रीका यूनियन है, अफ्रीकी देश है, उनको G20 को सफलता बनाने में सफलता हासिल की। भारत लगाते 2007 के आयाम से उठा रहा था, दुनिया में एकमात्र देश है जो भारत 2007 के आयाम से उठा रहा था, उसमें सोच भी ज्यादा देश आते हैं, पूरा अफ्रीका रीजन से आया था, नॉर्थ अमेरिका का कंट्री में हुआ जाता है, इसके अलावा और भी कई छोटे छोटे कंट्री हैं जो मतलब साथ में आते हैं, तो किसी समय के हिस्से नहीं है, लेकिन उनके हालात पहले सुना है। अगर हम G20 के आयोजन की बात करें और भारत की प्रगति की बात करें, तो ग्लोबल साउथ के आयोजन को उठाना और अफ्रीकी यूनियन को जी देश में सदस्यता बनाना, तो ये लगता है कि भारत की सबसे बड़ी उपलब्धि को और इससे भारत की जो प्रगति है उसको पूरी दुनिया ने स्वीकार किया। और पूरी दुनिया ने स्वीकार किया कि वो भारत एक ऐसे देशों की आधारित है जिसके हमें बहुत पहले उठाने जाने की जरूरत है। और ये पहले पहले से देखा जाए तो जो विकसित कंट्री है उनको इसकी शुरुआत करना चाहिए, क्योंकि भारत है जो तेजी से बढ़ता अर्थव्यवस्था है, उसने इन देशों की आवाज को उठा था, वो दुनिया को एक मैसेज दिया जो वसुधा कुटुंबकम और इससे G20 सम्मेलन का थीम रहा था, तो वसुधा कुटुंबकम का जो संदेश दिया उसको पूरी दुनिया ने स्वीकार किया और भारत के नेतृत्व में विश्वास बताया।
1: Dr. Nkrumah had said, and I quote, "I love Africa because I was born in Africa, but because Africa was born in Rwanda." In the same way, India carries Africa in its heart. India and Africa share a dream. A dream where every child gets opportunities, where every voice is heard, the nations rise together, not apart. Let us build a partnership, not only for today, but for generations to come.
0: अशोक जी, अगर इस चर्चा को

0: We will discuss regulatory issues and promote common standards. We will attract investment in the solar sector, encourage joint ventures and develop innovative financing mechanisms. We will partner with other international initiatives on renewable energy. There is already a revolution in solar energy. Technology is evolving. Costs are coming down and grid connectivity is improving. It is making the dream of universal access to clean energy become more real.
1: जब बात हो रही वैक्सीन डिप्लोमेसी की बात करते हैं तो कोविड 19 और वैक्सीन यात्रा की भी चर्चा काफी ज्यादा जब कोविड 19 महामारी के दौरान भारत ने वैक्सीन यात्रा के तहत दुनिया के 60 से अधिक देशों को मेड इन इंडिया वैक्सीन पहुंचाई। वो भी दौर था जब दुनिया के कई देश अपने वैक्सीन जमा कर रहे थे तब भारत की इस मानवतावादी कूटनीति ने वैश्विक स्तर पर भारत के प्रति जो विश्वास पैदा किया उसका लॉन्ग टर्म लाभ आप कैसे देखते हैं? जब कोविड कहा चल रहा था तो 100 से ज्यादा देशों को वैक्सीन की सप्लाई की थी और 100 वैक्सीन की खुराक आरम्भ कर दी थी। हम दूसरे कंट्री से कुछ और इनिशिएटिव लेने का वैक्सीन ले भी रहे थे लेकिन इसके बावजूद हम वैक्सीन दूसरे कंट्री पर रहे थे। 100 से ज्यादा देशों को वैक्सीन की सप्लाई की थी और उसमें से ज्यादा देश अगर हमारे पड़ोस देश था या फिर हमारे भारत के देश से उनको और वैक्सीन की आपूर्ति की थी। तो इस इनिशिएटिव से भारत का किसान लगा कि एक सहयोगी देशों को अपने मित्र देशों को किसी प्रकार की मदद करते हैं तो ये भी एक डिप्लोमेसी का ही एक पार्ट है और इससे कुछ दूर होने पर भारत पर भरोसा बढ़ा है। चाहे वो छोटे कंट्री हो चाहे वो उत्तर अफ्रीका का प्रदेश हो भारत पर लोगों को भरोसा बढ़ता रहा है और लॉन्ग टर्म अगर इसकी बात की है तो एक बार भरोसा बढ़ता है और लगातार भारत मतलब किसी न किसी रूप में मदद करता है या आवाज को बुलंद करता है। या जिसने ने बताया कि पहले सात की आवाज भारत पर उठाई उसके बाद पुराना भारत वहां पर हो रहा है तो इसका एक फायदा दूसरे देशों को होने वाला भारत का प्रभाव नहीं होगा दूसरे देशों को ज्यादा होने जा रहा है सुधार होते हैं। ऐसा नहीं कि भारत पर दूसरे देशों का भरोसा है वो लगातार बढ़ रहा है और जब भी भरोसा बढ़ता है और दूसरे में कह रहे कि जो दुनिया धीरे धीरे बढ़ रही है वो मल्टी पॉलर में दुनिया हो रही है बहुत बड़ी दुनिया हो रही है तो भारत उसमें मजबूत धुएं के रूप में उभर रहा है एक मजबूत पक्ष के रूप में उभर रहा है। अशोक जी एक और इम्पोर्टेंट पहलू में काफी अहम पक्ष रहा है 2014 के बाद भारत के विदेश को अपने तथा मोहर अंतर्राष्ट्रीय संस्कृति थी। भारत हाल में यूएई ऑस्ट्रेलिया और यूरोपियन फ्री ट्रेड एसोसिएशन देशों के साथ ऐतिहासिक मुक्त व्यापार समझौते की जिसे हम सब एफटीए के नाम से जानते हैं। आपको क्या लगता है कि ये समझौते भारत को ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग और ट्रेड हब बनाने में मददगार साबित हो रहे हैं? जी बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। मुख्य प्रश्नों के शीर्षों में भारत ने बहुत से जो फ्यूचर अग्रीमेंट या मुक्त व्यापार समझौते जो थे वो किए हैं और इतने महत्वपूर्ण जो साझेदार हैं जो व्यापारिक साझेदार थे जिनके साथ हमारा व्यापारिक सहयोग जो आर्थिक सहयोग बड़ा अच्छा है उनके साथ किए हैं। अगर इन्हीं के बारे में यूरोप से देखा जाए तो वो हमारा दूसरा सबसे बड़ा ऐसा डेस्टिनेशन है जहाँ हमारे एक्सपोर्ट जाते हैं जहाँ हमारे निर्यात जाते हैं और तीसरे ऑर्डर पर है जो कि सबसे बड़ा हमारा आर्थिक साझेदार का सहयोगी है। और इसके अलावा हमने यूनाइटेड किंगडम के साथ भी किया है वो बहुत ही महत्वपूर्ण आर्थिक व्यवस्था है और आर्थिक सहयोग उनके साथ हमारा बहुत बड़ा है। यूरोपियन यूनियन को जिनके साथ 2007 में ये बातचीत शुरू हुई थी मुझे याद है जब बसों हुआ था तब हमने ये बातचीत शुरू की थी रूसी से शुरू किया था और ये 17-18 साल के बाद हम देखते हैं जो इस साल के शुरू में पहले है हमने देखा 19 साल के बाद बड़ा समझौता हुआ था और उसको वहां के जो यूरोपियन कमीशन के कार्यदार थे अक्षर उन्होंने उसको मदर ऑफ ऑल डील्स करार दिया था। इसका इतना व्यापक रूप है। ऐसे ही हमने एफ्टा के साथ जो चार देश यूरोपियन फ्यूचर एसोसिएशन का जिसमें पहले भी रहा था जो आइसलैंड और नॉर्वे तो उसके सदस्य नहीं है और ये एफ्टा के सदस्य थे और उसके अलावा स्विट्जरलैंड और लिखटेनस्टाइन उनके साथ भी बहुत महत्वपूर्ण ये एक सहयोग किया है जिसमें 100 बिलियन डॉलर भारत में वो निवेश करेंगे अगले 15 साल में जिससे 10 लाख जॉब यहाँ पर क्रिएट होंगे। उसके अलावा हम देखें तो ऑस्ट्रेलिया के साथ न्यूजीलैंड के साथ पोलैंड के साथ ये सब हमने ट्रेड अग्रीमेंट्स किए हैं जो कि मेरे विचार से बोल्ड अग्रीमेंट्स होंगे ये इन सभी देशों के लिए और भारत के लिए।
0: आज भारत ने अपने इतिहास का अब तक का सबसे बड़ा फ्री ट्रेड एग्रीमेंट संपन्न किया है। यह एक

0: ऐतिहासिक समझौता हमारे किसानों, हमारे छोटे उद्योगों, इसकी यूरोपियन मार्केट तक पहुंच आसान बनाएगा, मैन्युफैक्चरिंग में नए अवसर पैदा करेगा और हमारे सर्विसेज सेक्टर के बीच सहयोग को और प्रबल करेगा। इतना ही नहीं, यह एफटीए भारत और यूरोपियन यूनियन के बीच इन्वेस्टमेंट को बूस्ट करेगा, नई इनोवेशन पार्टनरशिप बनाएगा और वैश्विक स्तर पर सप्लाई चेन को मजबूत करेगा। यानी यह सिर्फ ट्रेड एग्रीमेंट नहीं है, यह साझा समृद्धि का नया ब्लूप्रिंट है।
1: अशोक जी, बड़े डिप्लोमेसी के क्षेत्र में रूस एफए युद्ध पर भारत का स्टार भी काफी चर्चा हो रहा है। रूस एफए युद्ध पर प्रधानमंत्री मोदी का बयान तो वो युद्ध का युद्ध नहीं है, पूरी दुनिया में युद्ध होगा। बिना किसी दबाव में आए भारत का अपने स्वतंत्र विदेश नीति पर टिके रहे और दोनों पक्षों से बातचीत की वकालत करना भारत की परिपक्व होते कूटनीत का कितना बड़ा कारण रहा। डिप्लोमेटिक का पहला इसमें कहें तो इसको हम स्ट्रेटेजिक अटॉर्नी कहते हैं, जो जिससे कि हम अपने हितों की रक्षा स्वयं करेंगे, हम किसी और को नजरअंदाजी नहीं करेंगे। जो वो हमें बताया भारत को बताया आपके लिए क्या अच्छा है, आपके लिए क्या ठीक है, आपका सोचा के लिए। तो ऐसे में जब रूस यूक्रेन का युद्ध हुआ तो बहुत दबाव पड़ा था भारत के ऊपर, जो आप तीन युद्ध खरीदे रूस से, परंतु भारत ने बता दिया भारत करीब अपने जो जरूरतों का 80-85% तेल है वो आयात करता है, तो उसको हम जहां से भी हमारी कंपनियों को सभी ठीक दाम में तेल मिलेगा हम वहां से वो लेंगे। तो हमने अपने संबंध भी बना रखे और ये भी बना रखे, परंतु ऐसे नहीं कि अगर हमने अपना संबंध और जो पश्चिमी देश है उनके साथ खराब कर दिए और उन देशों को भी फिर बाद में समझ आ गया कि अगर रूस का तेल वैश्विक बाजार में नहीं आता तो तेल के दाम बहुत ही ज्यादा बढ़ जाते हैं, जो कि सभी अर्थव्यवस्थाओं के लिए बहुत ही हानिकारक सिद्ध हो सकता था। तो इसलिए भारत ने यह बता दिया है, भारत वैश्विक फायदे के लिए ग्लोबल गुड के लिए काम करेगा सबके साथ, परंतु अपने हितों को वो सैक्रीफाइस नहीं करेगा और हमारे जो स्ट्रेटेजिक कटौती नीति है वो केवल वो ट्रांजेक्शन नहीं है जो केवल अपने हितों की हम रक्षा करें, हम और देशों के हितों के लिए भी हम उनके साथ बराबर परस्पर सहयोग बनाते रहेंगे और काम करते रहेंगे।
0: विद यूक्रेन कॉन्फ्लिक्ट वॉर हैज रिटर्न टू यूरोप, it is causing great pain in the region. Since it involves major powers, the outcomes are severe. Countries of the global south have been particularly affected. The global order is based on the respect for the principle of the UN Charter. Peaceful resolution of disputes and respect for sovereignty and territorial integrity. As I have said directly and publicly, this is not an era of war, but it is one of dialogue and diplomacy, and we all must do what we can to stop the bloodshed and human suffering.
1: अशोक जी, कार्यक्रम के अंत में एक आखिरी सवाल आपसे जानना चाहेंगे कि 2047 तक भारत का लक्ष्य है विकसित भारत बनने का, हमारी विदेश नीति और विदेश कूटनीति इस लक्ष्य को हासिल करने में किस तरह की भूमिका निभा रहे हैं, कैसे देखते हैं? भारत की जो कूटनीति है बहुत ही एक महत्वपूर्ण इसमें योगदान कर रही है, भारत को अपने लक्ष्य की तरफ पहुंचाने में, विकसित भारत 2047 तक पहुंचाते हैं, क्योंकि सामने हमारी चुनौतियां बहुत ज्यादा है। तो इसीलिए हमको देखना है कि क्या देशों के साथ हमको अपने परस्पर सहयोग बढ़ाना है और अपने संबंधों को और भी तेज करना है, और यही हम कर रहे हैं, चाहे पहले हमारे अमेरिका के साथ जिसे हम कहते हैं कॉम्प्रिहेंसिव ग्लोबल स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप, परंतु अब हम देखते हैं कि अमेरिका का रवैया काफी ट्रांजेक्शन हो गया है, परंतु फिर हमारे संबंध चाहे रक्षा क्षेत्र में हो, व्यापार क्षेत्र में हो, उनके साथ बड़े अच्छे रहेंगे, परंतु फिर हम डाइवर्सिफाई करेंगे। तो हर तरीके से लेकर अपनी आर्थिक समृद्धि को बढ़ाने के लिए और अपनी सुरक्षा को बढ़ाने के लिए, जिससे कि अपनी संप्रभुता की हम रक्षा कर सके, इस मार्ग पर अग्रसर होते हुए भारतीय कूटनीति उसमें एक बहुत ही अहम योगदान करेगी।
0: एक तो हमारा लक्ष्य है 2047 हिंदुस्तान विकसित होना ही चाहिए, नो कॉम्प्रोमाइज। आजादी के 100 साल हम ऐसे ही नहीं बताएंगे, आजादी के 100 साल ऐसे मनाएंगे, ऐसे बनाएंगे कि दुनिया में विकसित भारत का झंडा फहरता होगा।
2: कभी दुनिया के मंच पर भारत को

0: एक बड़ा देश माना जाता था, लेकिन आज भारत एक बड़ी सोच बन चुका है। चाहे G20 की मेज हो या संकट में फंसे देशों तक मदद पहुंचाने का संकल्प, भारत ने हर बार यह साबित किया है कि नई सदी की कूटनीति केवल ताकत से नहीं विश्वास से चलती है। आज जब दुनिया नए संतुलन की तलाश में है, तो उसकी निगाहें हिंद महासागर के उस किनारे पर टिकती हैं जहां एक लोकतंत्र 140 करोड़ सपनों के साथ विश्व मंच पर आत्मविश्वास से कह रहा है, ये नया भारत है जो मित्रता भी निभाना जानता है और नेतृत्व करना भी जानता है। इसी विश्वास, इसी बढ़ते वैश्विक सम्मान और इसी नई कूटनीतिक यात्रा के साथ मदन जी आपका और अशोक जी आपका कार्यक्रम के साथ जुड़ने के लिए और विशेषज्ञ राय साझा करने के लिए आभार। श्रोताओं, ये कार्यक्रम आप हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR और यूट्यूब चैनल न्यूज ऑन AIR ऑफिशियल पर भी सुन सकते हैं।
1: आकाशवाणी जैसलमेर का ये गोल्डन सिटी चैनल है, FM बैंड 101.8 MHz पर। श्रोताओं, रात्रि के 10 बजे हैं, आइए सुनते हैं राजस्थानी लोक संगीत का यह कार्यक्रम।

मारी हाले बाती रे रे रे गुरु जो तेरी हाले

मारे कोई ने इधर कर जा।

मारो भाइयों पे नीचे जो ना बनी होई हो भाइयों पे नीचे जो ना बनी होई ये तो चोकोरी रे ये तो चोकोरी रे जाने जाने जोर जोर रे मारी मेरी में दंगिला को चोरिया पाना की में चिंतिला को मारी में दंगिला को चोरिया पाना की में चिंतिला को मारी में दंगिला को

为了我们，哦，你的白兔的白鸽的，你没有把思念的过夜嘞。

मने वारे देव तो हरे के मिठी बोली कोयल री बागरी मन राज कोयल री हरे की धीमी बोली कोयल मजी।

अभी आप सुन रहे थे राजस्थानी लोक संगीत का कार्यक्रम। ये आकाशवाणी जैसलमेर का गोल्डन सिटी चैनल है, एफएम बैंड 101.8 मेगाहर्ट्ज पर। श्रोताओं, रात्रि के 10:30 हुए हैं, आइए सुनते हैं फिल्म संगीत।

ओ मन चली कहाँ चली, ओ मन चली कहाँ चली, एक एक एक मुझसे न शर्मा।

अब तक हम आह भरेंगे, आजा तो बात करेंगे, छुप के मुलाकात करेंगे, ये सच है हे हे हो, हे हे हो, ये सच है मैं हूँ एक दीवाना, ये माना न जाना, तू कहाँ चली तू मन चली।

रुद ऐसी आई हुई है, बदली भी छाई हुई है, तू तो घबराई हुई है, मुझसे शर्माई हुई है, प्यार में याद से आके चुरा के सता के जला के तू कहाँ चली ओ मन चली कहाँ चली ओ मन चली कहाँ चली देख देख देख मुझसे न शर्मा एक एक एक मैं हूँ एक भौरा हो और तू चली।

अभी आप सुन रहे थे मंचली फिल्म से ये गीत, आवाज थी किशोर कुमार की, गीत के बोल थे आनंद बख्शी के, और इस गीत को संगीत से सहायता लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने। आइए सुनते हैं ये गीत।

बाद में जाने क्या हुआ, ओ बाद में जाने क्या हुआ, हाय बाद में जाने क्या हुआ, ना जाने क्या बात हुई, बाद में जाने क्या

क्या होगा जब रात हुई, दिन तो गुजर जाएगा, क्या होगा जब रात हुई, इतना तो याद।

0: इतना तो याद है मुझे,
1: इतना तो याद है मुझे,
0: इतना तो याद है मुझे,
1: इतना तो याद है मुझे।
2: अभी आप सुन रहे थे महबूब की मेहंदी फिल्म से ये गीत, आवाज थी लता मंगेशकर और मोहम्मद रफी की, गीत के बोल थे आनंद बख्शी के और इस गीत को संगीत से सजाया था रश्मिकांत प्यारेलाल ने। आइए सुनते हैं ये गीत।

अभी आप सुन रहे थे फिल्म राजपूत से ये गीत। आवाज़ थी किशोर कुमार की, गीत के बोल थे आनंद बख्शी के, और इस गीत को संगीत से ज़्यादा लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने। आइए सुनते हैं ये गीत।

अभी आप सुन रहे थे फिल्म लोफर से ये गीत। आवाज़ थी मोहम्मद रफ़ी की, गीत के बोल थे आनंद बख्शी के, और इस गीत को संगीत से सजाया था लक्ष्मीकांत प्यारेलाल। इसी के साथ फिल्म संगीत का हमारा आज का कार्यक्रम यहीं पर समाप्त होता है। आकाशवाणी जैसलमेर का ये गोल्डन सिटी चैनल है, FM बैंड 101.8 MHz पर। श्रोताओं, रात्रि के 11 बजने वाले हैं। अब से थोड़ी देर में आप सुनेंगे हिंदी में समाचार और 11:05 पर अंग्रेजी में समाचार, जिसका प्रसारण हमारे आकाशवाणी दिल्ली के केंद्र से करेंगे। कृपया प्रतीक्षा करें।

0: आकाशवाणी समाचार के साथ मैं सरफिरोजी। भारत और इटली ने आज कृषि, दुर्लभ खनिजों, आयुर्वेद, विज्ञान तथा प्रौद्योगिकी, समुद्री परिवहन और बंदरगाह के क्षेत्र में सहयोग को और बढ़ाने के लिए 15 महत्वपूर्ण समझौते किए। इन समझौतों पर आज रोम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और इटली के प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी के बीच प्रतिनिधि मंडल स्तर की बातचीत के बाद हस्ताक्षर किए गए। दोनों देशों ने भारतीय नर्सों के इटली आने जाने को आसान बनाने के लिए भी एक समझौता किया। एक अन्य समझौता लोथल में राष्ट्रीय समुद्री विरासत परिसर के विकास पर केंद्रित है। दोनों देशों ने कर से जुड़े अपराधों, धन शोधन और आतंकवाद के लिए पैसे जुटाने के खिलाफ तालमेल को मजबूत करने पर भी सहमति व्यक्त की है। वार्ता के बाद संयुक्त संवाददाता सम्मेलन में श्री मोदी ने घोषणा की कि भारत और इटली ने संबंधों को विशेष रणनीतिक साझेदारी के स्तर तक ले जाने का फैसला किया है।
1: हमने हमारी भावी साझेदारी को और सशक्त बनाने के लिए विस्तृत रूप से चर्चा की। भारत इटली ज्वाइंट स्ट्रेटेजिक एक्शन प्लान 2025-2029 हमारी साझेदारी को एक प्रैक्टिकल और फ्यूचरिस्टिक ढांचा प्रदान करता है। हम इस पर समयबद्ध तरीके से आगे बढ़ रहे हैं। हमारे साझा प्रयासों में द्विपक्षीय व्यापार 20 बिलियन यूरो के लक्ष्य की ओर तेजी से बढ़ रहा है।
0: श्री मोदी ने कहा कि दोनों देश भारत इटली नवाचार केंद्र स्थापित करने पर काम कर रहे हैं। उन्होंने बताया कि दोनों देश जहाजरानी, बंदरगाहों के आधुनिकीकरण, लॉजिस्टिक्स और समुद्री अर्थव्यवस्था के क्षेत्रों में भी मिलकर काम करेंगे। श्री मोदी ने कहा कि दोनों देश आतंकवाद को मानवता के लिए गंभीर खतरा मानते हैं।
1: भारत और इटली एकमत है कि आतंकवाद मानवता के लिए गंभीर चुनौती है। टेरर फाइनेंसिंग के खिलाफ हमारी साझा पहल ने पूरे विश्व के सामने एक महत्वपूर्ण उदाहरण प्रस्तुत किया है। यूक्रेन, पश्चिम एशिया तथा अन्य तनावों को लेकर हम लगातार संपर्क में रहे हैं। भारत का मत स्पष्ट है कि सभी समस्याओं का समाधान डायलॉग और डिप्लोमेसी के माध्यम से होना चाहिए।
0: इटली के प्रधानमंत्री ने कहा कि दोनों देशों के बीच की दोस्ती सम्मान और आपसी विश्वास पर आधारित है। इसके बाद रोम में प्रधानमंत्री मोदी को संयुक्त राष्ट्र खाद्य और कृषि संगठन का सर्वोच्च सम्मान एग्रीकोला मेडल से सम्मानित किया गया। उन्होंने इस सम्मान को भारत के लाखों किसानों, पशुपालकों, मछली पालकों, कृषि वैज्ञानिकों और श्रमिकों को समर्पित किया। वाणिज्य उद्योग मंत्री पीयूष गोयल और वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को एग्रीकोला पदक से सम्मानित किए जाने पर बधाई दी। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री गोयल ने कहा कि ये सम्मान भारत के किसानों, मछुआरों, वैज्ञानिकों और कृषि क्षेत्र से जुड़े अन्य कर्मियों के योगदान की पहचान है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने कहा कि मोदी सरकार ने कृषि और इससे जुड़े क्षेत्रों के विकास के लिए कई महत्वपूर्ण कदम उठाए हैं। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने ऑपरेशन सिंदूर को भारत के एक मजबूत, आत्मविश्वासी और सक्षम राष्ट्र में परिवर्तन का प्रमाण बताया है। दक्षिण कोरिया में प्रवासी भारतीयों से बातचीत में रक्षा मंत्री ने कहा कि यह ऑपरेशन इस बात का प्रमाण है कि भारत किसी भी रूप में आतंकवाद को कतई बर्दाश्त नहीं करेगा। रक्षा मंत्री ने सोल में भारत दक्षिण कोरिया रक्षा उद्योग व्यापार गोलमेज सम्मेलन की अध्यक्षता भी की। पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने नागरिकता संशोधन अधिनियम के अंतर्गत अवैध बांग्लादेशी घुसपैठियों को देश से निकालने की प्रक्रिया तुरंत शुरू करने की घोषणा की है। सीमा पर बाड़ लगाने के लिए सीमा सुरक्षा बल को जमीन सौंपने के एक समारोह के दौरान नाबन्ना में उन्होंने कहा कि अब घुसपैठियों को सीधे सीमा सुरक्षा बल के हवाले कर दिया जाएगा। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने आज नई दिल्ली में असम में 4000 किलोमीटर से अधिक राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजना की गुणवत्ता और रखरखाव कार्यों की समीक्षा की। आईपीएल क्रिकेट में आज कोलकाता नाइट राइडर्स और मुंबई इंडियंस के बीच मुकाबला जारी है। कोलकाता ने टॉस जीतकर गेंदबाजी का फैसला किया था। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: This is Akashvani, the news read by Aparajita Nair. India and Italy today finalized 15 outcomes across diverse sectors. The agreements were signed following delegation-level talks between Prime Minister Narendra Modi and his Italian counterpart Giorgia Meloni in Rome today. The outcomes mark the elevation of bilateral relations to a special strategic partnership. Both sides also inked several memorandums of understanding to deepen cooperation in key areas including critical minerals, defense, agriculture, Ayurveda, science and technology, maritime transport and ports. India and Italy also agreed to strengthen coordination against tax crimes, money laundering and terror financing. In a press statement after the talks, Prime Minister Modi said, India-Italy Joint Strategic Action Plan 2025-2029 will provide a practical and futuristic framework for bilateral ties. He said, both sides are working towards establishing an India-Italy Innovation Center and noted that the India-Italy Defense Industrial Roadmap has opened new avenues for co-development and co-production in the defense sector. Later in the day, Prime Minister Modi was conferred the prestigious Agricola Medal by the Food and Agriculture Organization at its headquarters in Rome. The medal was presented by FAO Director General Ki Bongiu. Speaking on the occasion, the Prime Minister said the award reflects India's unwavering commitment to food security, sustainable development and human welfare.
1: ये भारत के करोड़ों किसानों, पशुपालकों, मत्स्यपालकों, कृषि वैज्ञानिकों और हमारे श्रमिकों का सम्मान है। यह भारत की उस अटूट प्रतिबद्धता का भी सम्मान है जिसके केंद्र में मानव कल्याण, खाद्य सुरक्षा और सस्टेनेबल डेवलपमेंट है। मैं इस मेडल को अत्यंत विनम्रता के साथ स्वीकार करते हुए भारत के अन्नदाताओं को यह मेडल समर्पित करता हूँ।
2: Union Minister for Commerce and Industry Piyush Goyal has congratulated Prime Minister Narendra Modi for being honored with the Food and Agriculture Organization's Agricola Medal. In a social media post, Mr. Goyal said, "This is an acknowledgement of the immense contributions of India's farmers, fisherfolk, scientists and other workers in the agriculture sector." Union Finance Minister Nirmala Sitharaman has also expressed happiness over the conferment of FAO's honor to Prime Minister Modi. West Bengal Chief Minister Suvendu Adhikari today announced immediate initiation of deportation proceedings against illegal Bangladeshi infiltrators under the Citizenship Amendment Act or CAA. The Chief Minister made the announcement at State Secretariat Madanna during a handover ceremony to the Border Security Force for border fencing. He said infiltrators identified in the state would now be directly handed over to the BSF for further action and coordination with the Border Guards Bangladesh. Mr. Adhikari clarified that no action would be taken against members of the seven communities protected under the CAA, provided they had entered India before 31st of December 2024. India is set to remain the world's fastest growing major economy as the United Nations in its report projected a growth rate of 6.4% this year for the country despite global uncertainty caused by the West Asia conflict. UN senior economist Ingo Pitelli briefing reporters on the mid-year update to the World Economic Situation and Prospects report yesterday said, India's strong consumer demand, public investment and growth in services exports continue to support its economy. Cyprus President Nikos Christodoulidis, along with a high-level delegation, arrived in Mumbai this evening for a three-day official visit to the country. He was warmly received the airport by Maharashtra Governor Jishnu Dev Verma.